FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संबत 1948 के ज्येष्ठ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 मई सन 2026। प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहलिंग कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं।

0: आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन। सत्य का मार्ग सच्चा मार्ग है। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन ये वही मार्ग है जो हमारी आत्मा को शुद्ध रखता है और मन को शक्ति देता है। असत्य से भले ही कुछ समय के लिए लाभ मिल जाए, परंतु वह सुख स्थायी नहीं होता है। सत्य का साथ न केवल हमें आत्मसम्मान देता है, बल्कि समाज में हमारा विश्वास बढ़ाता है। जब हम सत्य को अपनाते हैं तो हमारे कर्म पवित्र बनते हैं, और इसी तरह सच्चे मन से की गई भक्ति तभी सार्थक होती है जब उसमें छल, पाखंड और स्वार्थ ना हो, और सत्य और भक्ति मिलकर जीवन को दिव्यता की ओर ले जाते हैं।

प्रभु की भक्ति हमें मानवता और प्रेम का संदेश देती है। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, सत्य बोलता है और अच्छे कर्म करता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। ईश्वर केवल शब्दों से नहीं बल्कि हमारे कर्मों और व्यवहार से प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कार्य करते हुए प्रभु का स्मरण करना चाहिए।

सच्ची भक्ति वही है जिसमें स्वार्थ ना हो और मन पूरी श्रद्धा से भगवान का स्मरण करे। जब मनुष्य कठिन समय में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखता है, तब उसकी भक्ति और भी महान बन जाती है और भक्ति से मन को शांति, आत्मा को शक्ति और जीवन को नई प्रेरणा मिलती है।

इसी के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान।

श्री राम के हाथों जब पल भर में शिवजी का धनुष टूट गया तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। पृथ्वी, पाताल तथा स्वर्गलोक में सुयश फैल गया कि श्री राम ने शिव का धनुष भंग करके सीता का वरण कर लिया है। देवलोक भी नृत्य गीत के स्वर से झंकृत होने लगे। सीता जी ने श्री राम के गले में जयमाला पहना दी। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता से ऐसा करते नहीं बनता। उन्हें गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का स्मरण हो आया और वो मानो भयभीत हो गईं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर श्री राम मन ही मन मुस्काने लगे, किंतु उपस्थित राजाओं में से अनेक ईर्ष्या द्वेष से जल उठे। किसी ने कहा कि दोनों कुमारों को बांधकर सीता को छीन लो, हमारे जीते जी सीता को अन्य कैसे ब्याह सकता है। किंतु वास्तविकता तो ये थी कि वे गाल बजा रहे थे। उनका बल, प्रताप, वीरता, तेज सभी तो धनुष भंग होते ही लुप्त हो गए थे। उनकी ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो उनके चेहरों पर कालिक पुत गई। राजाओं के दुर्वचन सुनकर लक्ष्मण के नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं। उसी समय धनुष भंग का निनाद सुनकर क्रोधी परशुराम वहां आ पहुंचे।

अभी आप सुन रही थी श्री रामचरितमानस गान। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात, जिसमें विश्व कछुआ दिवस, प्रसूति फिस्टुला को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और रमणीक स्थल में चूड़धार के बारे में जानकारी साझा की जाएगी और पर्यावरण में उपयोगी पक्षी तोता पर जानकारी साझा की जाएगी। 7:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शुभ प्याग। 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से, जिसमें आज आप सुनेंगे फिल्म जब मी मेट के कुछ चुनिंदा नगमे। प्रातः 9:00 आनंद लीजिएगा कार्यक्रम गीतांजलि का। प्रातः 10:00 आप सुनेंगे सामूहिक चर्चा बेजुबानों की आवाज, जिसमें प्रोफेसर विशाल सूद और प्रोफेसर स्वाति की ज्योति से बातचीत सुनेंगे। पर और 11:05 पर सुनिएगा हिमाचली गीत व लोकगीत। 11:30 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत और दोपहर 12:00 समय रहेगा फौजी भाइयों के कार्यक्रम सैनिकों के लिए का। दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम घर परिवार, विषय रहेगा संस्कृत शिक्षा की समृद्धि समाज का आधार, और साथ ही कपड़ों के रखरखाव के बारे में जानकारी दी जाएगी और खान पान में भरवां मिर्ची का अचार बनाने की विधि की जानकारी दी जाएगी। दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। हमारी सायंकालीन सभा में शाम 5:10 पर सुनिएगा भजन और 5:30 पर कार्यक्रम युवा मंच प्रसारित किया जाएगा। शाम 6:06 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। शाम 6:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम मौजां कराई दिया, जिसमें मधुमक्खी पालन रोजगार का उपयुक्त साधन विषय पर जानकारी दी जाएगी, और शाम 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसानवाणी, जिसमें जल संरक्षण तकनीक के बारे में जानकारी साझा की जाएगी। रात्रि 8:00 सुनिएगा विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस, और 8:30 पर देशगान सुनवाया जाएगा, और रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी शिमला से कार्यक्रम हिम दर्शन रिले किया जाएगा। विज्ञान भारती कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 9:30 पर रिले किया जाएगा, और रात्रि 10:00 आकाशवाणी दिल्ली से ही संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रिले किया जाएगा। आकाशवाणी शिमला से प्रातः 9:20 पर, दोपहर 3:00, शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, और आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाने वाले समाचारों का समय रहेगा सुबह 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 न्यूज़ एट 9, दोपहर 1:00, शाम 5:00, शाम 7:00 और रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार, और दोपहर 1:05 पर, शाम 5:05 पर, शाम 7:05 पर और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: ये थी रूपरेखा आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह की 6:55 होने को है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में, 7:00 हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्येषश्च आतंकवादं निवारणाय बहुपक्षीय प्रयासानां सुदृढ़ीकरणाय तथा संयुक्त राष्ट्र संघस्य संरचनांतर्गतं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादस्य विषये समग्र सम्मेलनं शीघ्रमेव अंतमीकृत्य स्वीकर्तुं आहूतवन्तौ। ह्यः नवदिल्ल्याम् उभयोः नेत्रोः मध्ये वार्तायाः अनन्तरं प्रदत्ते संयुक्त वक्तव्ये उभौ पक्षौ संयुक्तराष्ट्रसङ्घे तथा यूरोपीयसङ्घे च निर्दिष्टानाम् आतङ्कवादिनाम् आतङ्किसङ्घटना

0: जनानां च विरुद्धं अपि च संयुक्त राष्ट्र संघस्य सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समित्याः अंतर्गतं सूचीबद्धानां 67,200+ यावत् आतंकी संघटनानां विरुद्धं प्रबलं समन्वितं च कार्याचरणाय आग्रहं कृतवन्तौ।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: उभौ पक्षौ साइबर सुरक्षायाम् अपि च उदयोन्मुख प्रौद्योगिक्यां विशेषावधानेन सह रक्षा उद्योगयोः मध्ये सहयोगेन सह रक्षा सुरक्षा सहकारं सुदृढीकरणेऽपि सहमतौ अभवताम्। अस्मिन् सन्दर्भे साइप्रस डिफेंस एंड स्पेस इंडस्ट्रीज क्लस्टर तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इत्येतयोः मध्ये संधिपत्रे हस्ताक्षरं जातम्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य 21वें रोजगार मेलायां विविध प्रशासकीय विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तानां यूनां कृते 150,000+ नियुक्तिपत्राणां वितरणं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति आभासीय माध्यमेन करिष्यति। अमेरिका देशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो इत्येषः अद्य भारतस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां कोलकाता नगरं आगमिष्यति। इदं तस्य प्रथमं भारत पर्यटनं भविष्यति। कोलकाता नगरे प्रवासावधौ श्री रूबियो वर्येण मदर टेरेसा वर्यायाः समाधिस्थले श्रद्धांजलिः अर्पणस्य अपेक्षा अस्ति। सः विक्टोरिया स्मारकमपि द्रष्टुं शक्नोति। पश्चात् अमेरिका देशस्य विदेश सचिवः नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मेलनं विधास्यति। श्वः श्री रूबियो राष्ट्रीय राजधान्यां विदेश मंत्रिणा एस जयशंकरेण सह वार्तालापं करिष्यति। सः अमेरिका देशस्य दूतावासस्य स्वातंत्र्य दिवसोपलक्षे आयोजिते कार्यक्रमे विभागं ग्रहीष्यति। सोमवासरे श्री रूबियो वर्यः आगरा जयपुर नगरयोः भ्रमणं करिष्यति। तत्पश्चात् मंगलवासरे भारते आयोजिते क्वाड विदेश मंत्रिणां सभायां भागं ग्रहीतुं नवदिल्ल्यां प्रत्यागमिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य पूर्वीय मध्य प्रदेशे, पूर्वीय उत्तर प्रदेशे, विदर्भे च तीव्रतर उष्ण तरंगस्य स्थित्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। अद्य दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्ण तरंगस्य स्थित्याम् आईएमडी विभागेन नारंगवर्णीया संचेतना प्रदत्ता अस्ति। तटीये आंध्र प्रदेशे, तेलंगानायां, पश्चिम मध्य प्रदेशे, पश्चिम उत्तर प्रदेशे च अद्य दिने तथैव स्थिति भविष्यति। अद्य दिल्ल्यां अधिकतमं तापमानं 45°C यावत्, न्यूनतम तापमानं 27°C यावत् भवितुं शक्नोति। अन्त्यक्रीडा वार्तायां आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलेन हैदराबादे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं 55 धावनांकैः पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ नगरे पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स दलयोः मध्ये क्रीडा भविष्यति। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने तथा अपनाने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। दोनों नेताओं ने उग्रवाद, कट्टरता, आतंकवाद का वित्त पोषण और धन शोधन का मुकाबला करने के लिए अधिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आतंकी गतिविधियों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग रोकने तथा आतंकियों की भर्ती से निपटने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री गैबार्ड ने कहा कि वे 30 जून से अपने पद से हट जाएंगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सुश्री गैबार्ड की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रशासन को उनकी कमी महसूस होगी। सुश्री गैबार्ड के बाद राष्ट्रीय खुफिया प्रधान उपनिदेशक आरुण लुकास कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। मंत्रालय ने कहा कि जिम्मेदारी के साथ उपयोग और जनता का सहयोग ईंधन की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होगा। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में राज्यपाल संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidis have called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and for the early finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. In a joint statement issued after talks between the two leaders in New Delhi,

श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूनम, और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस सुविचार से। सुबह की पहली किरण के साथ एक नई शुरुआत होती है, इसलिए हर दिन हर सुबह उठकर खुद से कहें कि आज का दिन कल से बेहतर होगा। एक छोटी सी मुस्कान और सकारात्मक दृष्टिकोण आपके पूरे दिन की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ देते हैं, इसलिए जो आपके पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। और शुक्रगुजार होने से मन में शांति और सकारात्मकता का संचार होता है। और दोस्तों, सुबह का शांत समय आपके लक्ष्यों की योजना बनाने के लिए भी सबसे अच्छा होता है, इसलिए मन में सकारात्मक विचार लाएं और अपने दिन की शुरुआत करें। और हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: क्या।
1: श्रोता कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में आज यानी 23 मई की प्रमुख घटनाओं के बारे में। 23 मई 1785 को महान वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने द्वारा आविष्कार किए गए बाईफोकल लेंस की घोषणा की थी और वर्ष 1977 में बेनिन ने संविधान को अंगीकार किया था। वर्ष 2008 में भारत में रक्षा के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण भी आज ही के दिन किया गया था। और वर्ष 1949 में नए संविधान को अपनाने के साथ ही पश्चिम जर्मनी आधिकारिक तौर पर अस्तित्व में आया था। साथ ही वर्ष 1995 में सन माइक्रोसिस्टम द्वारा प्रसिद्ध कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा जावा का पहला संस्करण जावा 1.0 जारी किया गया था और जिसने इंटरनेट में क्रांति का रुख जो है वो ही बदल दिया था। साथ ही आज के दिन जन्मी कुछ महान विभूतियों की बात करें तो 23 मई 1919 को जयपुर घराने की राजमाता महारानी गायत्री देवी का भी जन्म हुआ था और राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार अन्ना राम सुदामा का जन्म भी आज ही के दिन वर्ष 1923 में हुआ था। और इसके साथ ही वर्ष 1848 में जर्मनी के मशहूर इंजीनियर ऑटो लिलियनथल का जन्म हुआ था जिन्हें विमान क्षेत्र का जनक भी माना जाता है। उन्होंने राइट बंधुओं से पहले दुनिया का पहला सफल मानव चलित ग्लाइडर बनाकर साबित किया था कि इंसान उड़ भी सकता है। तो श्रोताओं कार्यक्रम में और भी जानकारियाँ साझा करेंगे लेकिन पहले सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के विषयों के बारे में। और आज यानी 23 मई को प्रसूति फिस्टुला को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी हर साल मनाया जाता है और इस दिन का मुख्य उद्देश्य जो है वो प्रसूति फिस्टुला के बारे में जागरूकता फैलाना, रोकथाम के उपायों को बढ़ावा देना और पीड़ित महिलाओं के लिए समर्थन जुटाना है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 दिसंबर 2012 को संकल्प पारित करके इस दिवस की स्थापना की गई थी।

और श्रोताओ, आज ही के दिन विश्व कछुआ दिवस भी मनाया जाता है और प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस जो है वो 23 मई को यानी आज ही के दिन मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य विश्व में कछुओं की कम होती संख्या के प्रति जागरूकता फैलाना और उनके आवास की रक्षा करना, उनके पुनर्वास की व्यवस्था तथा इनका बचाव करना है। ये कार्यक्रम वर्ष 1990 में स्थापित एक अमेरिकी संस्था ATR अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू द्वारा वर्ष 2000 में शुरू किया गया था और तब से दुनिया भर में ये मनाया जाता है। दोस्तों, कछुओं की प्रजाति विश्व में सबसे पुरानी जीवित प्रजातियों में से एक है और आज विश्व में कछुओं की 300 से भी अधिक प्रजातियां जो हैं वो पाई जाती हैं और भारत में 29 से ज़्यादा प्रजातियां जो हैं वो पाई जाती हैं। और कछुओं के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जलीय और स्थलीय वातावरण दोनों को साफ और संतुलित रखने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। और दोस्तों, कछुओं की उम्र जो है ये भी माना जाता है कि बहुत लंबी होती है, तो इंसानों को कछुओं के अस्तित्व को बचाने, उनके आवासों को नष्ट होने से बचाने और उन्हें स्वतंत्र रूप से जीने के लिए जो है वो प्रोत्साहित करना चाहिए।

श्रोता कार्यक्रम में और भी जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिर से रुकते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत अपने श्रोताओं के साथ।

दोस्तों, हमारे हिमाचल प्रदेश में खूबसूरत पहाड़, वादियाँ और हरे भरे मैदान हैं, और ऊंची पर्वतमालाएं इसकी सुंदरता को और भी चार चांद लगा देती हैं। और इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे रमणीक स्थल चूड़धार के बारे में, और जो कि बाह्य हिमालय या शिवालिक पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटी जो है वो चूड़धार है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 11,965 फीट यानी 3,647 मीटर है, और ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर और शिमला ज़िलों की सीमा पर बसा एक बेहद पवित्र और खूबसूरत

धार्मिक और ट्रैकिंग स्थल है। स्थानीय भाषा में इसे चूड़ी चांदनी धार यानी बर्फ की चूड़ियों वाली चोटी भी कहा जाता है, क्योंकि सर्दियों में इसकी ढलानें बर्फ से ढककर चांद की रोशनी में चूड़ियों की तरह चमकती हैं। चोटी के शिखर पर भगवान शिव की एक विशाल सफ़ेद प्रतिमा स्थापित है और चोटी के ठीक नीचे देवदार की लकड़ी से बना प्राचीन शिरगुल महाराज का मंदिर है और शिरगुल देवता को इस क्षेत्र में बहुत श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। और पौराणिक मान्यता और स्थानीय कथाओं के अनुसार महाभारत और रामायण काल से इस स्थान का संबंध जो है वो जोड़ा जाता है और माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए साक्षात प्रकट भी हुए थे। चूड़धार एडवेंचर प्रेमियों और ट्रैकर्स के लिए एक लोकप्रिय वीकेंड डेस्टिनेशन भी है और चूड़धार के आज अद्भुत नज़ारों का आनंद आप सभी ले सकते हैं। और साफ मौसम में चूड़धार चोटी जो है वो उत्तराखंड से वहाँ उत्तराखंड के बद्रीनाथ, केदारनाथ चोटियाँ, सतलुज नदी, शिमला, कुफरी, कसौली, यहाँ तक चंडीगढ़ के मैदानी इलाके भी साफ दिखाई देते हैं। और ये पूरी चोटी लगभग 56 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और इसमें एक वन्य जीव अभयारण्य जो है वो भी है और इससे ये घिरी हुई है। और यहाँ पर हिमालयी देवदार, ओक के घने जंगल और कई दुर्लभ जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं। इस अभयारण्य में हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्य पक्षी मोनाल, कस्तूरी हिरण, लंगूर, हिमालयी काला भालू आदि का भी निवास है। तो श्रोताओं, गर्मियों का मौसम है और आप भी योजना बना सकते हैं इस खूबसूरत स्थान पर जाने की और आनंद लेने की।

श्रोता साथ ही पर्यावरण में जो हमारे खूबसूरत पेड़ पौधे जीव जंतु और पक्षी जो है वो इसके अभिन्न अंग हैं। और इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे पर्यावरण में उपयोगी पक्षी तोता के बारे में, क्योंकि ये दुनिया का सबसे खूबसूरत और बुद्धिमान और लोकप्रिय पक्षी जो है वो माना जाता है और जिसे मानव समाज में प्राचीन काल से ही एक बेहद उपयोगी और प्रिय पालतू पक्षी भी माना गया है। इसकी शारीरिक संरचना की अगर बात करें तो इसका पूरा शरीर जो है वो चमकीले हरे रंग का होता है। इसकी चोंच लाल मुड़ी हुई और बहुत ही मजबूत होती है। इसके गले पर एक काले और लाल रंग का घेरा होता है जिसे कंठ भी कहते हैं। और तोता जो है वो पूरी तरह से शाकाहारी होता है। ये मुख्य रूप से फल, बीज, अनाज, कलियां और हरी मिर्च को चाव से खाता है। तोते की औसत आयु लगभग 15 से 20 वर्ष होती है, लेकिन कुछ प्रजातियों में इससे अधिक समय तक भी ये जीवित रह सकते हैं। और तोते के पास इंसानों की आवाज़ और विभिन्न ध्वनियों की हूबहू नकल करने की गजब की क्षमता होती है। सिखाने पर ये राम राम, नमस्ते और घर के सदस्यों के नाम जो हैं वो भी आसानी से बोल लेता है, जिससे ये मनोरंजन का एक बेहतरीन साधन भी कहलाता है। और श्रोताओं, घरों में तोता पालने से सकारात्मक माहौल भी बनता है। उसकी चंचल हरकतें और मीठी आवाज़ जो है वो इंसानों के अकेलेपन को दूर करने और मानसिक तनाव को कम करने की भी मदद करती है। और प्रकृति के लिए इसकी उपयोगिता की बात करें तो तोते जंगलों और बागों में फल खाते हैं और इनके बीजों को दूर दूर तक फैला देते हैं और इससे नए पेड़ पौधे भी उगते हैं, जो पर्यावरण के संतुलन और वनीकरण के लिए बेहद ज़रूरी है। और ये खाद्य श्रृंखला का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और जंगलों में कीटों की आबादी को नियंत्रण में रखने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से भी ये मदद करते हैं। तो श्रोताओ, आज के सुप्रभात कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला जो है वो यहीं पर थमता है, लेकिन चलते चलते सुनते हैं एक प्यारा सा गीत अपने श्रोताओं के साथ।

सुप्रभात कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सुबह के 7:40 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम शुभ प्याग।

अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम शुभ प्याग। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:55 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं देशगान।

0: आप सुन रहे थे देश गान। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव चयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
5: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
6: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हो रहे हैं। हमारी जांचीपुर की मित्रता आपसे सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
4: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
9: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
4: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
10: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
4: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
11: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी IAS अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है, जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट UG की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे 100% त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम ना करें WFI। लोकसत्ते की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। NCERT की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
4: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए की अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to distribute over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today. RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden 4-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha today. Indian Army officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, hosts Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality.
13: Rozgar Mela is a step towards fulfillment of the Prime Minister's commitment to accord highest priority to employment generation. The Rozgar Mela is playing a significant role in providing meaningful opportunities to the youth for their empowerment and participation in nation building. Since its inception, around 12 lakh recruitment letters have been issued through 18 Rozgar Melas organized across the country. The 19th Rozgar Mela will be held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments, including Ministries of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare, and Department of Higher Education, among others. With Dipendra Kumar, Rishu Jaiswal, Akashwani News, Delhi.
12: The Reserve Bank of India, RBI, has approved a transfer of record 2.86 lakh crore rupees as surplus to the central government for the financial year 2025-26, marking one of the highest dividend payouts by the central bank. The decision was taken during the 623rd meeting of the Central Board of Directors of the RBI, chaired by Governor Sanjay Malhotra in Mumbai yesterday. The RBI in its release said its gross income increased by 26.42% during financial year 2025-26 compared to the previous year, while expenditure before risk provisions rose 27.60%. U.S. Secretary of State Marco Rubio arrived in Kolkata today on a 4-day visit to India. This is his maiden visit to India, marking an important step in strengthening bilateral ties between Washington and New Delhi. The visit is expected to focus on expanding cooperation in trade, defense, energy security, technology and Indo-Pacific strategy. U.S. Ambassador to India Sergio Gore received Mr. Rubio at the airport. The U.S. Department of State said during his stay in Kolkata, Mr. Rubio will visit Mother House, the headquarters of St. Teresa's Missionaries of Charity, and the children's home in the city. Mr. Gore, in a social media post, said later in the day, U.S. Secretary of State will travel to New Delhi and call on Prime Minister Narendra Modi. According to the U.S. ambassador, the upcoming engagements will primarily focus on strengthening cooperation in key strategic sectors, including defense partnerships, advanced technologies, trade ties, and collaboration under the Quadrilateral Security Dialogue, Quad, framework. President Draupadi Murmu has said there is tremendous potential for cooperation between India and Cyprus in new and emerging sectors such as semiconductors, space and artificial intelligence. The president was speaking after hosting a banquet in honor of her Cyprus counterpart, Nikos Christodoulidis, and his delegation at Rashtrapati Bhavan yesterday. She said technology and innovation have emerged as key forward-looking areas of the bilateral relationship.
6: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारी जानचीपुर की मित्रता आपसे सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
12: President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, also highlighted the friendship with India.
2: Cyprus and India appear geographically separated by thousands of miles. They differ slightly in size and population, and yet there is an invisible thread that has woven our countries and our people together and has seamlessly connected our countries for centuries.
12: Indian Army officer Major Abhilasha Barak, serving with the United Nations peacekeeping mission in Lebanon, has been honored with the prestigious United Nations Military Gender Advocate of the Year Award for 2025. We have a report.
14: Major Barak is currently serving with the Indian Battalion as commander of the female engagement team in the United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL. She is also the first woman combat helicopter pilot of the Indian Army. The recipient is selected annually from nominations submitted by force commanders and heads of mission across UN peacekeeping operations worldwide. With this recognition, Major Barak becomes the third Indian peacekeeper to receive the honor. Earlier, Major Suman Gavani was awarded in 2019 for her service with the UN mission in South Sudan, while Major Radhika Sen received the award in 2023 for her work with the UN Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo. India remains one of the largest contributors of troops and police personnel to UN peacekeeping missions across the world. Swati Rukheja, Akashwani News, Delhi.
12: The Indo-Tibetan Border Police, ITBP, has successfully completed its first ever all-women international mountaineering expedition to Mount Everest, marking a historic milestone in the force's mountaineering achievements. We have a report.
15: A 14-member team of ITBP comprising 11 women climbers and 3 technical and support staff summited the world's highest peak on 21st of this month through the South Col route from Nepal side. The expedition was flagged off from the ITBP headquarters on 19th of April. As a part of its Clean Himalaya Save Glacier campaign, the team also carried out environmental awareness activities and collected non-biodegradable waste from the Everest region. Union Home Minister Amit Shah congratulated the team for unfurling the national flag atop Mount Everest. Mr. Shah said that by achieving this remarkable feat in extreme terrain and harsh climatic conditions, the team has upheld ITBP's motto of nation before self. Meanwhile, with this achievement, ITBP has now completed 232 mountaineering expeditions, including 5 successful Everest summits. The force has also scaled 6 of the world's 8,000-meter-plus peaks, including Mount Everest, Mount Kanchenjunga, Mount Makalu, Mount Lahotse, Mount Dholagiri, and Mount Manaslu. Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
12: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. As part of our series, People's Padma on Akashwani, in our upcoming episode, we speak to N. Rajam, a renowned violinist. She will be honored with the prestigious Padma Vibhushan.
16: मुझे कई साल परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, जिसमें मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी सभी ने मेरे साथ काम किया और एक-एक करके हो गई बात। और मुझे संगीत के अलावा मेरी दुनिया में और कोई भी बात नहीं थी।
12: To listen to the conversation, tune in to 100.1 Akashwani Gold today at 9:10 a.m. You can also listen to this conversation on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. Petrol and diesel prices were increased by up to 91 paise per litre today, marking the third hike in less than 10 days. In Delhi, petrol price has been increased by 87 paise to 99 rupees 51 paise per litre, while diesel has gone up by 91 paise to 92 rupees 49 paise per litre. This is the third revision in fuel rates in recent days. The increase comes amid a sharp surge in global crude oil prices following the Iran conflict and disruptions in the Strait of Hormuz. Meanwhile, Ministry of Petroleum and Natural Gas has said that India has adequate availability of petrol and diesel and supplies across the country remain stable. In a social media post, the ministry advised citizens to avoid panic buying and to purchase fuel only as per actual requirement. The ministry further stated that responsible consumption and public cooperation will help ensure smooth fuel availability for all during the ongoing high demand period. The Madhya Pradesh government has taken an important step towards Uniform Civil Code, UCC. Chief Minister Mohan Yadav launched the website ucc.mp.gov.in at the Secretariat yesterday. Through this portal, citizens, political parties and social organizations can share their views and suggestions on the proposed UCC. The last date for submitting feedback is 15th of June this year. The India Meteorological Department, IMD, has issued red colour warning for severe heat wave conditions over East Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. IMD has also issued orange colour warning for heat wave conditions over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Rajasthan, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha during the next 5 days. Meanwhile, Madhya Pradesh continues to reel under intense heat wave conditions. We have a report from our correspondent.
17: The Met Department has issued heat wave warning.

0: श्रीता जेवीमेट एक लोकप्रिय हिंदी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो वर्ष 2007 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म का निर्देशन और लेखन इम्तियाज अली ने किया था और फिल्म का निर्माण ढिलन मेहता ने श्री अष्ट विनायक सिने विजन लिमिटेड के बैनर तले किया था। ये फिल्म अपने अनोखे संवाद, भावनात्मक कहानी और शानदार संगीत के कारण बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी और दर्शकों ने इसे खूब सराहा था। सुनते हैं इस फिल्म से एक और गीत, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
2: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa.

0: inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
0: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
1: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है।
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और हम बात कर रहे हैं फिल्म जब वी मेट की। तो श्रोताओं, इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में शाहिद कपूर और करीना कपूर नज़र आए थे, और शाहिद कपूर ने आदित्य कश्यप नाम के एक बिजनेसमैन की जो भूमिका है वो इस फिल्म में निभाई, और जबकि करीना कपूर ने गीत ढिल्लों का चुलबुला और जीवंत किरदार निभाया था। इसके अलावा तरुण अरोरा, सौम्या टंडन और दारा सिंह और पवन मल्होत्रा ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं जो हैं वो इस फिल्म में निभाई थी, और करीना कपूर के अभिनय को इस फिल्म के लिए विशेष सराहना भी मिली थी, और ये उनके करियर की सबसे यादगार फिल्मों में भी गिनी जाती हैं। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और गीत इसी फिल्म से।

शतम फिल्म जब वी मेट का संगीत प्रीतम ने तैयार किया है, जबकि गीतों के बोल जो हैं वो इरशाद कामिल ने लिखे थे। और फिल्म के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए थे, लेकिन सबसे लोकप्रिय गीत मौजा ही मौजा और ये इश्क है, और साथ में नगाड़ा नगाड़ा जो है वो विशेष रूप से जो थे लोगों की पसंदीदा गीतों में शामिल हैं। और फिल्म की कहानी आदित्य और गीत की अनोखी मुलाकात से शुरू होती है। जो आदित्य जो है वो जीवन से निराश होकर घर छोड़ देता है, और तभी ट्रेन में उसकी मुलाकात खुश मिजाज लड़की गीत से होती है। और गीत की बातें और उसका जीवन के प्रति सकारात्मक नज़रिया आदित्य की ज़िंदगी बदल देता है। और बाद में गीत अपने प्रेमी से मिलने घर को भी छोड़ देती है, और परिस्थितियां जो हैं वो कुछ बदलती हैं, और धीरे धीरे जो है उनके बीच जो है प्रेम भी विकसित होता है। फिल्म में प्यार, परिवार और जीवन की खुशियों को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है। तो एक और गीत सुनते हैं इसी फिल्म से।

0: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for Rs. 10.99 lakh with a battery EMI of just Rs. 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
2: Nexa.
0: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
4: श्रोताओ, फिल्म जब भी मैट ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की और ये उस समय की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल हुई थी। फिल्म को कई पुरस्कार भी मिली, जिनमें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो था वो करीना कपूर को मिला। और इस फिल्म ने इम्तियाज अली को बॉलीवुड के सफल निर्देशकों में भी स्थापित कर दिया। और आज भी ये फिल्म अपनी रोमांटिक कहानी, यादगार संवाद और मधुर संगीत के लिए दर्शकों के दिलों में अपना खास स्थान रखती है। तो आपको इसी फिल्म से एक और खास गीत सुनाते हैं।

आप सुन रही थी कार्यक्रम एक ही फिल्म से। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीतांजलि। सभी श्रोताओं को पूनम का प्यार भरा नमस्कार। और श्रोताओं, आज के गीतांजलि कार्यक्रम में हम बात करेंगे खुशियों की। दोस्तों, खुशियां अनमोल हैं और जिस पल आप खुश होते हैं सिर्फ उसी पल अपनी ज़िंदगी जीते हैं। इसलिए पूरी ज़िंदगी खुशी से जीने के लिए ज़िंदगी का हर पल जिए। खुशी ही केवल एक ऐसी चीज़ है जिसे आप महसूस कर सकते हैं। खुशी बांटने से बढ़ती है और गम जो है वो बांटने से कम हो जाते हैं। इसलिए दोनों को बांटें और खुद को अच्छा महसूस करने दें और फूल बनकर मुस्कुराना ज़िंदगी। मुस्कुरा के ही गम भुलाना है ज़िंदगी। जीत कर तो हर कोई खुश हुआ है, हार कर खुशियां मनाना भी ज़िंदगी। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ शुरुआत करते हैं आज के गीतांजलि कार्यक्रम की और सुनते हैं ये पहला गीत।

आप सुन रहे थे फिल्म अनाड़ी नंबर 1 से सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में गीत, और अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जान तेरे नाम से, और इस गीत को गाया है उदित नारायण और कुमार सानू और साथ में है अलका याग्निक, और गीत लिखा है सुरेंद्र ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। और दोस्तों, इस गीत में संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, गीतांजलि कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। ये कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा 9:30 पर। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व पंचायत चुनाव 2026।
1: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
0: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। प्रदेश में 3 चरणों में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी। पोलिंग पार्टियां 24 व 25 मई को मतदान केंद्रों के लिए होंगी रवाना। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक बुलाकर आदर्श चुनाव आचार संहिता का किया उल्लंघन, चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग। पेट्रोल व डीजल की कीमतों में 91 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि, 10 दिन में तीसरी बार बढ़ी तेल की कीमतें। और प्रदेश में लहसुन की अच्छी पैदावार, बेहतर दाम मिलने पर किसान खुश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। ये रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रदेश में 3 चरणों में हो रहे पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव के पहले चरण में 26 मई, दूसरे चरण में 28 मई और तीसरे व अंतिम चरण में 30 मई को वोट डाले जाएंगे। इन तीनों चरणों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के विभिन्न पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने पूरे प्रदेश में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। इन मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव ड्यूटी पर तैनात पोलिंग पार्टियों को 24 व 25 मई को संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। चुनाव ड्यूटी में करीब 35,000 कर्मचारियों की तैनाती की गई है, जो 3 चरणों में होने वाले मतदान को सफलतापूर्वक संपन्न करवाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बीच लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकार द्वारा करवाई गई मंत्रिमंडल की बैठक को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पंचायत चुनाव को अब कुछ दिन बचे हैं, ऐसे में मतदाताओं को लुभाने के लिए सुक्खू सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई लोक लुभावन फैसले लिए हैं। जयराम ठाकुर ने इस संदर्भ में चुनाव आयोग से तत्काल और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
1: पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बीच में मुख्यमंत्री जी कैबिनेट की बैठक करते हैं और कैबिनेट में फैसले लिए गए कि महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाए। उसके बाद मेडिकल कॉलेजेस में जो प्रोफेसर है उनकी रिटायरमेंट की एज को बढ़ाने का फैसला लिया, और फैसले जो मानदेय बढ़ाने के लिए, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर है, चाहे वो मल्टीटास्क वर्कर है, चाहे वो अलग विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के संदर्भ में कुछ फैसले लिए गए थे, उनको भी अभी अनाउंस किया। पूरी तरह से चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हुआ है। चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो प्रयत्न किया गया है, इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए।
0: केंद्रीय आयुष मंत्रालय का देशव्यापी योग 365 अभियान लोगों की दैनिक दिनचर्या व जीवन शैली का अभिन्न अंग बन गया है। 13 मार्च से शुरू हुआ यह अभियान 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संपन्न होगा। ऊना जिला में योग 365 अभियान को गति दी जा रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता।
2: भारत सरकार के योग 365 अभियान के अंतर्गत ऊना में जिला प्रशासन और आयुष विभाग द्वारा योग के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 13 मार्च से शुरू 100 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में गांव स्तर पर सामाजिक संगठनों, नुक्कड़ नाटकों और आयुष विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा लोगों को नियमित योग अभ्यास से सेहतमंद रहने और जीवन शैली से जुड़े रोगों के अलावा गैर संक्रमित रोगों से बचाव बारे जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा लोगों को आयुष मंत्रालय की अनूठी पहल निःशुल्क ऑनलाइन योग प्रशिक्षण सत्रों के साथ जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा हर रोज प्रसारित की जाने वाली लाइव योग कक्षाओं से लोगों को जोड़ने बारे भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला एक्सेंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। 15 मई को 3 रुपये प्रति लीटर और 19 मई को 90 पैसे की वृद्धि के बाद ईंधन की कीमतों में ये तीसरी बार संशोधन है। हाल ही के दिनों में कीमतों में लगभग 5 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि ईरान संघर्ष और होमोर्स में व्यवधान के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बीच हुई है। प्रदेश में मई माह में एलपीजी की डिजिटल बुकिंग बढ़कर 94% हो गई है, जबकि फरवरी माह तक ये बुकिंग 85% थी। इसके अलावा डिजिटल बुकिंग करने से फर्जी बुकिंग और डुप्लीकेशन भी कम हुई है। कालाबाजारी और हेराफेरी को रोकने के लिए तेल विपणन कंपनियां डिजिटल प्रमाणीकरण कोड को और बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं और वर्तमान में हिमाचल में इन कंपनियों ने 94% प्रमाणीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। प्रदेश में इस बार लहसुन की अच्छी पैदावार हुई है और फसल के बेहतर दाम मिलने से किसान खुश हैं। सोलन की सब्जी मंडी में बड़ी संख्या में किसान इन दिनों लहसुन बेचने के लिए पहुंच रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस बार उन्हें पिछले वर्ष के मुकाबले लहसुन का अच्छा मूल्य मिलने से

वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों से जुड़ी खबरों को जगह दी है। अमर उजाला व दिव्य हिमाचल की एक जैसी सुर्खी है, 2 लाख से कम आय वाली महिलाओं को ही मिलेंगे 1500, 2215 पद भरेंगे। पंजाब केसरी का शीर्षक है, हिमाचल में अब 24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें, इंस्पेक्टरी राज से मिलेगी मुक्ति। जबकि दैनिक भास्कर के शब्द हैं, टूरिस्ट सीजन में 24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें, 2500 पद भरने की मंजूरी। हिमाचल दस्तक लिखता है, विभिन्न विभागों में 1829 नए पद भरने को मंत्रिमंडल की मंजूरी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, रेरा की मंजूरियों ने बढ़ाई सरकार की चिंता, धारा 118 के उल्लंघन पर घिर रहे अधिकारी। मौसम पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, उबला देश, हिमाचल में राहत की बौछारें, 25 मई तक बारिश के आसार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विभिन्न सरकारी विभागों व संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। प्रदेश में 3 चरणों में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी। पोलिंग पार्टियां 24 व 25 मई को मतदान केंद्रों के लिए होंगी रवाना। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक बुलाकर आदर्श चुनाव आचार संहिता का किया उल्लंघन, चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग। पेट्रोल व डीजल की कीमतों में 91 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि, 10 दिन में तीसरी बार बढ़ी तेल की कीमतें। और प्रदेश में लहसुन की अच्छी पैदावार, बेहतर दाम मिलने पर किसान खुश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं गीतांजलि कार्यक्रम के शेष गीत। तुम्हें देखते ही हमें पहली नजर में प्यार हुआ और इस नादान दिल को पहली बार किसी का इंतजार हुआ। धड़कने थम सी गई और जिंदगी में चाहत का इकरार हुआ।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

हम तुमसे मिले और दिल खुशी से भर गया, उदासी का वो मौसम पल भर में गुजर गया। धड़कनों को मिल गई है अब जीने की वजह, तुम्हारी एक मुस्कान से मेरा हर लम्हा समर गया।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतांजलि। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है सामूहिक चर्चा बेजुबानों की आवाज।
1: वे बोल नहीं सकते लेकिन दर्द उन्हें भी होता है। वे शिकायत नहीं कर सकते लेकिन संवेदनाएं उनमें भी होती हैं। सुबह की पहली किरण के साथ वो भी उठते हैं दाने पानी की तलाश में, लेकिन उनके हिस्से आती है उड़ती हुई धूल, सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां और इंसान की बेरुखी। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया में उनके हिस्से की दया और करुणा कितनी है? नमस्कार श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो सिर्फ पशुओं की नहीं बल्कि हमारी मानवता की पहचान से जुड़ा है, बेजुबानों की पुकार। इस विषय पर आगे बढ़ेंगे। आज दुनिया भर में पशु कल्याण, पशु अधिकार और उनके प्रति संवेदनशील व्यवहार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। हमारे आसपास पालतू पशु हों या वन्य जीव, उनकी सुरक्षा, सम्मान और देखभाल हमारी साझा जिम्मेदारी है। इन्हीं पहलुओं पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ दो विशिष्ट विशेषज्ञ उपस्थित हैं। आप हैं डॉक्टर विशाल सूद और आप हैं मिस स्वाति।
2: धन्यवाद। और ये जो चर्चा आज बेजुबानों की पुकार, जिसको आज आयोजित किया जा रहा है, जैसा कि बताया कि बेजुबानों की भी एक जुबान होती है, और बेजुबानों की जुबान जब हम बात करते हैं तो केवल मात्र बेजुबानों में वन्य प्राणी या पालतू पशु ही नहीं आते, हमारे साथ हमारे जो पेड़ पौधे हैं, हमारे साथ जो वनस्पति है, वो भी इसी का, हमारे पूरे के पूरे मानव जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण अंग है। और इन सब का जो है वो एक सह अस्तित्व, चाहे वो वन्य जीव हैं, वन्य प्राणी हैं, पालतू पशु हैं, उनका एक सह अस्तित्व इस पृथ्वी के कल्याण के लिए, इस पृथ्वी के अस्तित्व के लिए बहुत ही आवश्यक है। और हमारा ये बहुत दायित्व बनता है कि हम इन वन्य प्राणियों की, पालतू पशुओं की, या जो वनस्पति हमारे यहाँ उपस्थित है पृथ्वी के ऊपर, हम उसकी रक्षा करें, उसकी सुरक्षा करें। और इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि धर्मशाला आकाशवाणी से ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है, तो इसमें बौद्ध धर्म गुरु महामहिम दलाई लामा जी वो बोलते हैं करुणा, कंपैशन, कि कंपैशन क्या केवल मानव जाति के लिए, या वो करुणा ये जो हमारे प्राणी हैं, वन्य प्राणी, पशु हैं या पक्षी हैं, उनके लिए भी वो करुणा जो है वो मानव जाति में होनी चाहिए, तभी हम सह अस्तित्व की जो है वो बात कर सकते हैं।
3: जी बिल्कुल सही कहा सर ने कि हमें वन्य प्राणियों की, और जो बेजुबान है, क्योंकि उनकी ज्यादा उम्मीदें होती नहीं है हमसे, दे डोंट वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम अस, कि उनको कुछ ऐसा नहीं चाहिए होता है जैसे मनुष्य जाति है, वो कभी उपहारों की उम्मीद लगाए होती है, कभी किन्हीं अलग अलग स्पेशल उनको फील करवाने की उम्मीद होती है। पर बेजुबान ऐसे होते हैं जिनको कोई उपहार नहीं चाहिए होता है हमसे, उनको सिर्फ हमारा प्यार चाहिए होता है। कभी कभी वो बहुत प्यार से हमारी तरफ देखते हैं, और अगर हल्के हाथों से अगर हम उनका सिर सहला दें, अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, तो हमारे विश्वविद्यालय के प्रांगण में भी एक बहुत प्यारी डॉग है, तो कभी हम उसको रोटी दे ना दें, परंतु उसकी बहुत प्यारी तरीके से जो हमारी तरफ वो देख रही होती है, उसको सिर्फ प्यार चाहिए होता है, उसको सिर्फ वो महसूस करती है हमारी चीजों को। दूसरी बात, मैं हमारे बुजुर्गों की बात करूं, तो हमारे बुजुर्ग भी किस तरीके से जो है वो वन्य प्राणियों, जो बेजुबान है, उनके प्रति करुणा भाव रखते हुए कि पहले जब रोटी बनाते थे तो पहले की रोटी जो है वो गाय के लिए और लास्ट की जो है वो कुत्ते के लिए बना के रखनी है, तो वो एक इमोशन थे। जैसे कि अभी हम वर्तमान समय की बात करें तो गर्मियों के दिन चले हुए हैं, तो वो मिट्टी के बर्तन में उनके लिए पानी रखना, तो वो बहुत छोटी छोटी चीजें करके, क्योंकि उनको बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं है जानवरों को हमसे कि हम उनके लिए कोई घर बना दें या कुछ स्पेशल कर दें, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेकर जो है हम उनके लिए छोटे छोटे चीजें करके उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं
1: जी। और इन बेजुबानों की आवाज हम बन सकते हैं, क्योंकि ये बोल नहीं सकते, और जब हम यदि बोल ना पाए, अपनी पीड़ा किसी को ना बता पाए, तो हमें कितना दर्द होता है। लेकिन ये तो ऐसे हैं जो बोल ही नहीं सकते।
2: देखिए, बोल नहीं सकते लेकिन इनकी एक जुबान होती है और इनकी आंखें बोलती हैं।
1: जी बिल्कुल,
2: हाँ,
1: वो भाषा हमें समझनी है।
2: वो भाषा जो है वो हमें समझनी है, उसको समझने के साथ साथ देखिए वो हमारे से चाहते भी हैं और वो प्यार चाहते हैं। वो ममता चाहते हैं कि हम उनको किस तरह से जो है वो उनके साथ व्यवहार करते हैं। और एक और चीज अगर आप देखें तो हम सभी ने देखी होगी, दर्शकों ने भी देखी होगी, अगर हम किसी जानवर को सहलाएं, श्रोताओं को हम ये बताना चाहेंगे कि जानवरों को अगर हम सहलाते हैं तो वो उसके साथ आपके नजदीक आने की कोशिश करते हैं, चाहे वो गाय है चाहे वो और कोई जानवर है। और देखिए मुझे जो लगता है कि मानव का, जानवरों का हमारा जो अस्तित्व आज से नहीं, हमारे पुराने ग्रंथों में अगर हम देखें तो हमने हर वनस्पति को जो है वो पूजने की बात कही है। हर सनातन धर्म में मैं बताना चाहूंगा, सनातन धर्म में जो है जितने देवी देवताओं को हम मानते हैं उनमें हर देवी देवता के साथ किसी न किसी पशु को, किसी न किसी पक्षी को बताया गया है, दिखाया गया है वाहन के रूप में, या वो उसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि वो उनके वाहन है, उसका मुख्य उद्देश्य जो सीख उससे मिलती है कि हमें उनकी रक्षा करनी है। और जैसे मान लीजिए कई बार ये भी होता है, श्रोता ये जानते होंगे कि सांप अगर दिख जाए तो सांप को मारना नहीं है, सर्प दोष लगेगा
1: जी।
2: तो ये जो है ये धर्म से इसलिए जोड़ा गया ताकि हम इनकी रक्षा करें। और जो हम फूड चेन की बात करते हैं या फूड वेब की बात करते हैं, तो अगर कहीं कोई फूड चेन इस पूरे के पूरे संसार से अगर गायब होती है तो उसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो सारा का सारा मानव जाति पे पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत सारा जो है वो हमें ये जरूरत है कि वन्य जीव जो है उनकी भी रक्षा की जाए, जो हमारे पालतू पशु हैं, जो बेसहारा पशु जिनको छोड़ दिया जाता है, उनका एक फायदा लेने के बाद सड़कों के ऊपर हम देखते हैं वो घूम रहे हैं, उनको वैसे छोड़ दिया जाता है, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं मानव के उस अनुचित दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसके ऊपर आज हम सभी को सोचने की आवश्यकता है और उसके ऊपर कुछ ना कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है।
1: और मानवता जो है वो बहुत जरूरी है।
3: कदम उठाने की जैसे सर ने बात की तो मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि उसी के संदर्भ में जो बेजुबान हैं उनके लिए सरकार द्वारा ऐसे बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, ऐसे बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। जैसे कि अगर मैं गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स की बात करूं बेजुबानों के लिए, तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, नेशनल एनिमल वेलफेयर प्रोग्राम है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट है, एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी जो स्पेशल आवारा कुत्तों के लिए बनाया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर है, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स जो हैं वो समय समय पर हमारी सरकार जो है वो चलाती रहती है ताकि इन बेजुबानों के लिए जो है हमारी सरकार कुछ ना कुछ कर सके। इसके साथ ही सरकार तो इनिशिएटिव लेती है, पर नीतियां बनाना तो आसान होता है, पर दूसरी बात उनको लागू करने में उतना ही बड़ा घमासान होता है। इसके लिए मनुष्य जाति को खुद समझना चाहिए, जैसे कि हम ड्राइव कर रहे होते हैं, बहुत सारे लॉ बने हैं तो कभी कभी हम बहुत ओवर स्पीड में चले होते हैं, बीच में कोई गाय आ गई, कुत्ता आ गया, तो हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, जानवर ही तो हैं, क्या हो गया, हमारे गाड़ी के नीचे आ गए, इंसान थोड़ी मर गया,
1: पर मानवता जो है वो लुप्त
3: हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो छोटी छोटी चीजें जो है वो मनुष्य जाति को समझनी चाहिए कि कोई हमारे घर का मेंबर थोड़ी था वो कि चला गया, पर वो बेजुबान है, उनको भी हमें एक घर के सदस्य की तरह, जैसे डॉग्स होते हैं हमने घर पे रखा होता है, तो बहुत ऐसे एक फैमिली मेंबर्स की तरह वो हमारी फीलिंग्स को समझते हैं। अगर हम सैड हैं तो उस चीज को बहुत जल्दी सेंस करते हैं और अपनी दुम हिलाते हुए अचानक से हमारे पास आएंगे। अगर हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो वो हमारी फीलिंग्स को, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मनुष्य समझता है उस हिसाब से जानवर भी हमारी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से संवेदन
1: बिल्कुल समझता है। और आज हमारे देश भारत में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम जैसे कानून मौजूद हैं ये कानून, लेकिन धरातल पर इनकी सख्ती से जो पालन है वे क्यों नहीं हो पा रहा?
2: देखिए जहां तक मुझे लगता है, जैसे स्वाति जी भी बोल रही थी कि बहुत सारे कानून हैं, एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, या इससे पहले कई वन्य जीवों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर था, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम बहुत सारी योजनाएं चली, लेकिन कोई भी सरकारी योजना, कोई भी संरक्षण हेतु जितने भी कदम उठाए जाते हैं वो धरातल पे तभी उतर सकते हैं क्योंकि उन पॉलिसीज को, उन कानूनों को जो उसका क्रियान्वयन करना है वो अंतिम स्तर के ऊपर, ग्राउंड स्तर के ऊपर जो है वो मनुष्य द्वारा किया जाना है। और वहां सबसे बड़ी भूमिका आती है कि जो मनुष्य उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, धरातल पे उसको लेके जाने वाले हैं, क्या उनमें उन पशुओं के प्रति, उन पक्षियों के प्रति, क्या उस पर्यावरण के प्रति संवेदनाएं हैं? अगर वो संवेदनाएं, वो भावनाएं वो नहीं है तो आप कितना अच्छे से अच्छा कानून ले आइए, वो तब तक धरातल पे अपनी उस सही पहचान को या सही क्रियान्वयन को तब तक नहीं पहुंच सकता है जब तक उसको इम्प्लीमेंट करने वाले, लागू करने वालों के मध्य में वो संवेदनाएं ना हो। वो मानवीय मूल्यों का होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैं श्रोताओं से यही जो है वो कहना चाहूंगा कि हमारे जितने ये बेसहारा पशु हैं या हमारे जितने वन्य जीव हैं, हम उनके प्रति अपने अंदर एक संवेदना रखें। होता क्या है, हमारे घर में हम बोलते हैं कितने सदस्य हैं, बाप और माँ और बेटे बेटी जो भी है, चार लोग। लेकिन अगर किसी के घर में मान लीजिए कुत्ता पाला है, या मान लीजिए गाय पाली है, या मान लीजिए मछलियां रखी हैं, तो हम तो ये बोलते हैं कि अगर एक कुत्ता पाला है तो उस घर में अगर बाकी चार हैं तो कुल पांच सदस्य हैं, क्योंकि वो उस घर का सदस्य है।
3: जी।
2: अब मैं अपने घर की अगर श्रोताओं को बात बताऊं तो मैंने अपने घर में एक्वेरियम रखा है जिसमें तीन मछलियां हैं, और मुझे मेरी ये जिम्मेवारी होती है कि सुबह और शाम उनको दाना डालना है, तो वो मैं डालूंगा। चाहे अपनी रोटी जब खाने बैठता हूं तो मुझे याद आती है कि क्या उनको दाना डाला कि नहीं डाला।
3: जी।
2: तो जब तक आप वो ख्याल नहीं रखेंगे, वो मानवीय संवेदना नहीं होगी कि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं।
3: जी।
2: जब तक उनको हम परिवार का सदस्य नहीं मानेंगे, तब तक वो संवेदना, वो मानवीय मूल्य कहीं ना कहीं जो है वो मिस करेंगे। और तब तक ये जो कानूनों की हम बात कर रहे हैं, इन कानूनों को हम धरातल में सही तरीके से फिर इम्प्लीमेंट होने के बारे में सोच नहीं सकते हैं। इसलिए मानवीय संवेदनाएं बहुत जरूरी है।
3: और ये बचपन से ही अगर हम अपने बच्चों में डालेंगे तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या कहते हैं?
2: बिल्कुल।
3: बच्चों में संवेदनाएं बचपन से ही डालने के लिए ही मुझे एक जब मैं स्कूल में थी तो एक कविता याद आ रही है पक्षियों पे ही, कि हम पंछी उड़मुक्त गगन के, पिंजर वन्ना गा पाएंगे, कनक टीलियों से टकरा करके पुलकित टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। तो ये कविताएं मुझे लगता है कि हमें बचपन में, सिर्फ इसलिए नहीं थी कि बहुत अच्छी सुनने में लगती थी, ये कविताएं इसलिए थी ताकि जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत संवेदनशील होते हैं और बचपन से ही उनमें ये सारी संवेदनाएं डाल दी जाएं, ताकि वो घर पे हैं चाहे बाहर हैं, कहीं भी उनको एनिमल्स दिखते हैं तो छोटे बच्चों का आपने खास करके देखा होता होता है कि वो छोटा छोटा पेट्स जो होते हैं, छोटे छोटे डॉगी होते हैं, उनको उठा के ले आते हैं, चाहे वो आवारा है कि मम्मा नहीं नहीं इसको तो रखना है। मैं घर का एग्जाम्पल दूं तो मेरा भाई भी छोटा है, चाची का बेटा, तो वो घर पे एक छोटा सा डॉगी लेके आया कि नहीं नहीं इसको तो रखना, इवन सबसे डांट पड़ा, सबने डांटा उसको कि नहीं नहीं इसको तो नहीं रखेंगे, बट उसने जिद की और बच्चों की जिद को तो मानना ही पड़ता है। तो बच्चों को स्टार्टिंग से ही इसीलिए स्कूल लेवल पे ये सारी कविताएं, ये कहानियां जानवरों से प्रेम, हाथी की, कहीं चिड़िया की, इसीलिए सिखाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, ताकि वो जानवरों को लेकर के, ताकि वो इन बेजुबानों को लेकर के एक अलग संवेदना रख सकें।
2: इसी में एक और चीज है कि अगर हम ये जो संवेदनाओं की बात कर रहे हैं, आज अगर हम देखें बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, समाज सेवी संगठन हैं, जिनकी इस क्षेत्र में बहुत बड़ी एक भूमिका जो है वो देखी जा सकती है। और ऐसे बहुत से संगठन हैं जो इसके लिए काम भी कर रहे हैं। जैसे अभी अगर आप देखें, श्रोता भी जानते होंगे कि अभी अखबारों में ये आया और जो एक चेतावनी दी जा रही है कि भारत बहुत बड़े जो है वो सूखा इससे जो है वो गुजरने वाला है, अलनीनो का जो है वो बहुत बड़ा असर होने वाला है और इस बार बहुत बड़ा सूखा पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति अगर मान लीजिए वहां पे पैदा होती है तो हमारे जो पक्षी हैं, हमारे जो पशु हैं, उनको चारा कहाँ से मिलेगा, उनको पानी की व्यवस्था किस तरह से होगी। तो बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं हैं, संगठन हैं,
3: जो
2: पशु प्रेमी हैं, जो इस तरफ जो है वो काम करते हैं। और अभी एक पिछले साल मैंने एक अभियान देखा था गर्मियों में, एक कटोरा पंछी के नाम, तो वो और वो समाज में लोगों के मध्य, आम जनता के मध्य जाके कि हर दिन हम एक कटोरा अपने घर के बाहर पानी डालकर रखें ताकि जो पंछी हो वो उसमें से जो है वो पानी, अगर उनको जरूरत प्यास लगे तो वहां से वो पिए, उनको दाना डाल के रखें। तो ये चीजें, संवेदनाएं, इनमें स्वयंसेवी संगठनों की और पशु प्रेमियों की और समाज सेवी संगठन जो है उनकी बहुत बड़ी इसमें भूमिका हो सकती है।
3: जी बिल्कुल। और जो तेजी से इस समय या आज के इस दौर में शहरीकरण और कंक्रीट के जंगलों ने पशु पक्षियों के इस प्राकृतिक आवास को बहुत प्रभावित किया है,
2: बिल्कुल,
3: तो इस पर किस तरह जो है वो रोकथाम की जा सकती है?
2: देखिए, मुझे जो लगता है इसमें कि शहरीकरण की वजह से, औद्योगीकरण की वजह से जो है हमारे जंगल सिमटते जा रहे हैं। हालांकि बहुत कठिन कानून या सख्त कानून भी हैं, लेकिन जंगल हमारे सिमटते जा रहे हैं और ये जो कंक्रीटाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, भवन बन रहे हैं, उस वजह से क्या हो रहा है कि उनका जो एक आवास है, जो प्राकृतिक आवास है, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। और उस वजह से होता क्या है कि ये जो वन्य जीव हैं, ये फिर जो आवासीय क्षेत्र होते हैं उनकी तरफ भागते हैं। कई बार सुनने में आता है, श्रोताओं ने भी सुना होगा कि तेंदुआ जो है वो यहाँ घुस आया या यहाँ इसके ऊपर जानवरों पे हमला कर दिया या लोगों के ऊपर हमला कर दिया। उसका सबसे प्रमुख कारण ही ये है कि उनका जो एक प्राकृतिक आवास था, जो जंगल था, जहाँ पे उनको उनके रहने खाने का, उनके जो भोजन की जो व्यवस्था उस जंगल में होती थी, वो जंगल कम होते जा रहे हैं, जंगल सूखते जा रहे हैं, जंगल कटे जा रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है मुझे लगता है कि सरकार को जो है वो बहुत सख्त ढंग से इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। हालांकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हम बात करें, एनजीटी की बात करें, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो बहुत अच्छे ढंग से इसमें जो है वो अपनी भूमिका निभाता है कि जो हमारा वन का परिक्षेत्र है, जो फॉरेस्ट एरिया है, वो कम ना हो। लेकिन फिर भी कई जगह पे सरकार नहीं पहुंच सकती है। जैसे मैं हिमाचल में ही कई ऐसे क्षेत्रों की बात करूं जो बहुत दूर दराज के क्षेत्र है, बहुत पहाड़ी क्षेत्र है, जहां हर जगह फॉरेस्ट गार्ड या फॉरेस्ट की जो ये है वो नहीं पहुंच सकते हैं, वहां आपको जंगल का कटान देखने को मिलता है। पिछले 2 सालों में अगर आप देखें तो जब बाढ़ आई कुल्लू में या और जगह पे, तो ब्यास में इतने वो लकड़ी के गट्ठे जो थे वो बहके आए और वो पूरा का पूरा उस बांध में, पंडो डैम में आपको बांध में वो देखने को मिले। तो वो एक कहीं ना कहीं, इवन चंबा में आपने चमेरा बांध में देखा होगा, तो वहां पे भी वो जो लॉग्स थे बड़े बड़े लकड़ी के, वो कहां से आए? वो कहीं ना कहीं उन जंगलों को काटा जा रहा है, वो जो सरकार की नजर से बाहर है। या ये भी संभव है कि उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई भ्रष्टाचार या उस तरह से मानव की जो संलिप्तता है वो उसमें कहीं ना कहीं है। तो इसके ऊपर फिर बात वही आती है कि क्या मानवीय मूल्य, क्या मानवीय संवेदनाएं और क्या नीड और ग्रीड में क्या अंतर है। हमारी आवश्यकता हो सकती है, लेकिन जब आवश्यकता को लालच में बदल दिया जाए तो उसकी कोई सीमा नहीं है। उसके ऊपर मानव को ही नियंत्रण लाना पड़ेगा, मनुष्य को संवेदनशील होना पड़ेगा।
1: जी हाँ, और महात्मा गांधी जी की यहाँ पर कही हुई बात याद आती है कि इस प्रकृति में वह सब कुछ है जो इंसान की जरूरत को पूरा कर सकता है,
2: बिल्कुल सही,
1: लेकिन उसके लालच को पूरा
2: नहीं किया जा सकता।
3: पेड़ों की महत्वता की सर ने बात की, तो पेड़ों की महत्वता को मनुष्य को समझना चाहिए, जानना चाहिए। इसके लिए मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं कि पेड़ बड़े गुणकारी हैं, सदा सदा उपकारी हैं, इनसे जोड़ो नाता भाई, ये स्वास्थ्य परवाही हैं, नहीं चलाओ इन पर आरी, उल्टा काम मत बनो मरारे, अरे प्रकृति के ये वरदान, इनसे शोभित वसुधा सारी, फल सुंदर से पुष्प सुहाने, पात छाल जड़ औषधि जाने, इसलिए हम भारतवासी जीवन दाता इनको माने। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि छायादार पेड़ सारे जमाने के काम आए, और जब ये सूख जाए तो मरने के बाद हमारे जलाने के काम आए। इसलिए हमें पेड़ों की महत्वता को समझना चाहिए, हरियाली को समझना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। इनको हमने अपना समझ लिया है कि दिस इज फॉर ओनली अस, बट इट इज नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे लिए है, हमें सबका साथ और सबका विकास, सब मतलब हम, जैसे कि मैं भारतीय सनातन धर्म की बात करूं, हम मंत्र उच्चारण करते हैं कि सर्वेन सुखिनः भवन्तु, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यतु, मा कश्चित् दुःखभाक्ता की, और सब सुखी रहें। सब में मनुष्य जाति नहीं आती, केवल सब मतलब सब, जिसमें मनुष्य जाति, बेजुबान जानवर सब आते हैं। तो वो मनुष्य को समझना बहुत जरूरी है।
1: और आए दिन हम जंगलों में आग लगने की जो खबरें हैं वे सुनते और पढ़ते रहते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं इन पशु पक्षियों के बसेरे को जो है वो नष्ट कर रहे हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तो अगर हम बात करें, श्रोता भी इस चीज को जानते होंगे कि आज का जो समय है वो गर्मी का समय है, और अब जो है वो जंगलों में आग लगने की घटनाएं आपको लगभग प्रतिदिन जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र से जो है वो सुनने को मिलेंगी। और इसमें भी अगर मैं फिर उसी बात को दोहराना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो लालच है वो कहीं ना कहीं जो है बीच में आता है, मानव का लालच। और वो इसलिए कि जंगलों को जानबूझ के आग इसलिए लगाई जाएगी क्योंकि आजकल चीड़ के पेड़ों से या देवदार के पेड़ों से जो है वो पत्तियां गिरी होती हैं, वो सूख जाती हैं, और वो गिर के उससे क्या होता है कि जो जमीनी सतह होती है वो ढक जाती है और वहां पे वो जो घास का उगना है वो नहीं हो पाता है। इसलिए लोग क्या करते हैं कि उनको चारे के लिए घास चाहिए और कामों के लिए घास चाहिए, तो इसलिए वो जो नीचे पत्तियां गिरी होती हैं उनको आग लगा देते हैं, जिससे वो पूरा का पूरा जंगल भी जो है वो पूरा का पूरा खाक हो जाता है। और उसके बाद माना ये जाता है कि अब इसके बाद जब बारिश होगी तो वो जो वहां पे राख होगी और जो पानी गिरेगा वो राख से कार्बन और पानी से जो है वो वहां पे H2O, तो उससे जो है वो घास उगेगा और उससे चारा जो है वो ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। वो लालच है, लेकिन उसका ठीक है आपकी तो एक आपूर्ति हो गई, लेकिन दूसरे उसको दृष्टिकोण से देखा जाए तो उससे जो वायु प्रदूषण हुआ, उस वायु प्रदूषण से मानव जाति को भी कष्ट होगा, वन्य जीवों को भी कष्ट होगा, और साथ में उसके कारण जो वहां पे उस जंगल में जानवरों का बसेरा था, जो उनका एक आवास था, प्राकृतिक आवास, पक्षियों के घोंसले थे, वो सारे के सारे जल जाएंगे। और उस चीज को जो है अगर हम ध्यान नहीं देंगे और अपनी जरूरतों को अगर सीमित नहीं करेंगे, तब तक हम जो है वो इस चीज को रोकना, इसलिए मानवीय संवेदनाएं में फिर कहूंगा कि हमें ये सोचना पड़ेगा। और आज मैं इसी में एक और चीज आपके साथ ऐड करना चाहूंगा, श्रोता भी इस चीज को समझते होंगे। आज हम जैन जी की बात करते हैं, जैन जी की जो बात है उसकी एक करैक्टरिस्टिक है कि वो हेल्थ कॉन्शियस बहुत है, उनकी ये करैक्टरिस्टिक है, और वो लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। और शायद जब लाइफ की बात आती है, जीवन की बात आती है, तो वो केवल उसी जीवन को एंजॉय नहीं करना चाहती है जैन जी, उस जीवन का कहीं ना कहीं ये बेजुबान जो है वो हिस्सा है, और यही बेजुबान जो है वो उनकी लाइफ को कहीं ना कहीं जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। उन्हीं की वजह से हमारी जिंदगी है। अगर ये कहीं विलुप्त होते हैं तो कहीं ना कहीं मानवीय जीवन के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा, और मानवीय जीवन भी जो है वो धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार की तरफ जो है वो बढ़ना शुरू होगा।
3: बिल्कुल सही कहा, जो मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए जानवरों का प्रयोग कर रहा है, इन बेजुबानों का प्रयोग कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं, जैसे कि हमने बहुत सारे धार्मिक स्थलों पर भी देखा होगा, मैं माँ वैष्णो देवी की बात करूं, अमरनाथ यात्रा की बात करूं, तो हिस्ट पुष्ट जो मनुष्य होता है वो भी नहीं चलना है हमें, तो वो भी उन बेजुबानों के ऊपर सवार होकर के जाते हैं, और जो उनका मालिक होता है वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जो है जो एक चक्कर लगा सकते हैं, दो चक्कर लगा लेते हैं, वो उनको अफीम या ऐसे कुछ पदार्थ खिला करके जो है उन बेचारे बेजुबानों पे शोषण कर रहे होते हैं, उनसे चार चार छह छह चक्कर लगवाते हैं। तो मनुष्य को इतना भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कहते नहीं पर वो दर्शाते सब कुछ है, तो वो उनकी आवाज तो नहीं सुनाई देती है हमें, पर उनकी आंखें हम पढ़ सकते हैं, उनकी भावनाओं को हम महसूस कर सकते हैं जैसे कि वो हमारी करते हैं। तो श्रोताओं को मैं इतना ही बताना चाहूंगी कि हमें उनकी भावनाओं को समझना जो है वो बहुत जरूरी है
1: जी। और एक आम नागरिक के रूप में हम अपने दैनिक जीवन में पशु पक्षियों की मदद कैसे कर सकते हैं?
2: देखिए, मुझे लगता है पशु पक्षियों को सबसे पहले दैनिक जीवन में, मुझे लगता है हर घर में एक, जैसे पक्षियों की मैं बात करूं तो दाने के लिए एक पात्र उनका जिसमें हम दाना डालें, और एक पानी के लिए बर्तन वो वहां पे रखे। कई हमने ऐसे पशु प्रेमी भी देखे हैं जो अपने घर के अलावा जो उनका आस पड़ोस होता है वो सुबह अपना सारा भोजन लेके आएंगे, आवारा जो या बेसहारा जो कुत्ते या गाय हैं उनके लिए, और उनको सड़क के किनारे हमें सुबह सुबह वो दिखते हैं कि खिलाते हुए। तो ये एक तरीका हो सकता है, और इसमें इस चीज के प्रति जागरूक करने के लिए मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल जो है वो आ सकता है। आजकल सोशल मीडिया की हम बात करते हैं, तो सोशल मीडिया का रोल, आकाशवाणी का रोल, जैसे आपका ये कार्यक्रम है इससे श्रोता लाभान्वित हो सकते हैं, टेलीविजन के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, उससे भी लोगों तक इसके बारे में जो है वो उनको जागरूक किया जा सकता है, और वो अपने घर में चाहे किसी भी प्रकार का जानवर हो, उसको चाहे वो बेसहारा है सड़कों पर घूमने वाला या कोई पालतू है, उस जानवर के लिए उसको उस तरह का वातावरण देना, उसको उस तरह की उसकी जरूरतें पूरी करना, चारा पानी देना, ताकि वो भी हमारे साथ, और वो हमारे बहुत काम आएंगे, बहुत उपयोगी होंगे, उसके ऊपर जो है वो हम अपने दैनिक जीवन में उनको सहायता कर सकते हैं
1: जी। तो दया और करुणा केवल शब्द नहीं बल्कि एक सभ्य समाज की पहचान है। पशु बोल नहीं सकते, लेकिन हमारी संवेदनशीलता उनकी आवाज बन सकती है। आज की चर्चा से यही संदेश निकल कर आता है कि पशुओं के प्रति प्रेम, सम्मान और जिम्मेदारी निभाना हम सभी का कर्तव्य है। हमारे दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने विचारों से हमें नई समझ दी।
2: धन्यवाद श्रोताओं का भी धन्यवाद।
1: और श्रोताओं, आपसे भी यही आग्रह रहेगा, जहाँ भी संभव हो बेजुबानों के प्रति दया दिखाएं, उनकी सहायता करें, क्योंकि धरती सबकी है, जीवन सबका है। यदि आपको कोई घायल पशु या पक्षी दिखे तो पशु कल्याण हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें 1962। जी हाँ, ये नंबर है 1962। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे सामूहिक चर्चा बेजुबानों की आवाज। इसमें प्रोफेसर विशाल सूद डॉक्टर स्वाति से बातचीत कर रही थी ज्योति। तकनीकी सहयोग अंकित धीमान, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह।

0: मोहम्मद रफी का गाया हाथी मेरे साथी फिल्म का गीत अभी श्रोता सुन रहे थे।
1: मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
1: मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। श्रोताओं, अब समय हो रहा है 10:30। आइए अब मिलकर सुनते हैं हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।

0: Drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa. 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं हिमाचली लोकगीत। आइए इस श्रृंखला को अब हम आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं कश्मीरी राम की आवाज़ में ये प्यारा सा लोकगीत।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओं, सुबह के 11 बजने को हैं। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। प्रदेश में तीन चरणों में 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन तीनों चरणों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के विभिन्न पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने पूरे प्रदेश में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। इन मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव ड्यूटी पर तैनात पोलिंग पार्टियों को आज अंतिम चरण का पूर्वाभ्यास करवाया जा रहा है और कल 24 व 25 मई को इन्हें संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। चुनाव ड्यूटी में करीब 35,000 कर्मचारियों की तैनाती की गई है, जो तीन चरणों में होने वाले मतदान को सफलतापूर्वक संपन्न करवाएंगे। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर मतदान दिवस पर संबंधित क्षेत्रों में भुगतान सहित अवकाश घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 26, 28 और 30 मई को संबंधित क्षेत्रों में सरकारी व निजी संस्थान बंद रहेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों और अधिकारियों को उसी दिन छुट्टी मिलेगी जब उनकी पंचायत या संबंधित क्षेत्र में मतदान होगा। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी ये अवकाश मान्य होगा। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बीच लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकार द्वारा करवाई गई मंत्रिमंडल की बैठक को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पंचायत चुनाव को अब कुछ दिन बचे हैं, ऐसे में मतदाताओं को लुभाने के लिए सुक्खू सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई लोक लुभावन फैसले लिए हैं। जयराम ठाकुर ने इस संदर्भ में चुनाव आयोग से तत्काल और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
1: पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बीच में मुख्यमंत्री जी कैबिनेट की बैठक करते हैं और कैबिनेट में फैसले लिए गए कि महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाए। उसके बाद मेडिकल कॉलेजेस में जो प्रोफेसर है उनकी रिटायरमेंट की एज को बढ़ाने का फैसला लिया, और फैसले जो मानदेय बढ़ाने के लिए, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर है, चाहे वो मल्टीटास्क वर्कर है, चाहे वो अलग विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के संदर्भ में कुछ फैसले लिए गए थे, उनको भी अभी अनाउंस किया। पूरी तरह से चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हुआ है। चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो प्रयत्न किया गया है, इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए।
0: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। 15 मई को 3 रुपये प्रति लीटर और 19 मई को 90 पैसे की वृद्धि के बाद ईंधन की कीमतों में ये तीसरी बार संशोधन है। हाल ही के दिनों में कीमतों में लगभग 5 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। प्रदेश में इस बार लहसुन की अच्छी पैदावार हुई है और फसल के बेहतर दाम मिलने से किसान खुश हैं। सोलन की सब्जी मंडी में बड़ी संख्या में किसान इन दिनों लहसुन बेचने के लिए पहुंच रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस बार उन्हें पिछले वर्ष के मुकाबले लहसुन का अच्छा मूल्य मिला है, जिससे उन्हें फायदा हुआ है।
2: जयसिंह ठाकुर बेरगांव से, मेरा लहसुन पिछले 100 रुपये था, इस बार 145 रुपये का।
3: सुरेंद्र कुमार और मेरा गांव जो है बिधाड़ है। पिछले साल के मुताबिक जो इस बार जो है किसानों को अच्छा रेट मिल रहा है, तो बहुत अच्छा जो है फसल इस बार है और थोड़ा सा अच्छा रेट भी मिल रहा है उनको।
4: नाम राकेश कुमार, मैं कुन्हार से आया हूँ, और इस बार पिछले साल से लहसुन के रेट बहुत बढ़िया मिला है जिम्मेदारों को, और जिम्मेदार बहुत खुश है इस बार।
0: कालका शिमला मार्ग में सलोगड़ा के समीप आज एक निजी बस अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गई। ये बस सोलन से शिमला जा रही थी और इसमें करीब 10 लोग सवार थे, जिनमें से चालक सहित 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल सोलन भेजा गया है। दुर्घटना के कारणों की जाँच चल रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
5: ४०३.४ MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं हिमाचली गीत व लोकगीतों का कार्यक्रम।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, इस विज्ञापन से पहले हम सुन रहे थे पूनम शर्मा और सपना कुमारी की आवाज में ये प्यारा सा लोकगीत।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
0: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।
2: मेरे

0: कहानी।
1: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
2: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
3: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
1: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
2: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
1: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
2: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीत व लोकगीत। सुबह के 11:30 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब मिलकर सुनते हैं देशभक्ति गीत।

साथियों, कार्यक्रम का पहला देशभक्ति गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं केसरी फिल्म से, जिसमें आवाज़ दी है बी पराग ने।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों फिल्म का ये गीत, जिसमें आवाज दी है अलका याग्निक, कैलाश खेर, सोनू निगम और उदित नारायण ने।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं श्रोताओं देशभक्ति गीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं लगान फिल्म से ये देशभक्ति गीत, और जिसमें आवाज़ दी है श्रीनिवास और ए आर रहमान ने।

0: कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति सुनिए राजी फिल्म से, जिसमें आवाज दी है अरिजीत सिंह ने।
1: बोल फौजी बोल, पाकिस्तान जिंदाबाद।
2: हिंदुस्तान जिंदाबाद।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों, जय हिंद। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं उदित नारायण के गाए हुए गीत के साथ। फिल्म है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।

सैनिक भाइयों, अब आपको सुनवा रहे हैं अनु मलिक के संगीत से सजा हुआ ये गीत, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। फिल्म है विजय पथ।

0: सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: क्या कहना, इस फिल्म के गीत आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक की आवाज है और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

0: अलका याग्निक और उदित नारायण की मिलीजुली आवाजों में अभी सैनिक भाई सुन रहे थे क्या कहना फिल्म का गीत। संगीतकार थे राजेश रोशन।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

मनप्रीत, अलका याग्निक और उदित नारायण के गाए कुछ कुछ होता है फिल्म के इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सैनिक भाइयों, जय हिंद।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर परिवार।

नमस्कार सखियों, आकाशवाणी के लोकप्रिय और आत्मीय कार्यक्रम घर परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां हर दिन हम उन विषयों को आपके सामने लेकर आते हैं जो हमारे जीवन को बेहतर और हमारे परिवार को सशक्त और हमारे समाज को संस्कारित बनाते हैं। मैं हूं आपकी अपनी साथी प्रवेश और आज फिर हाजिर हूँ कुछ ऐसे विचारों के साथ जो दिल को छू जाएं और सोचने पर मजबूर कर दें। सखियों, इस जीवन की भाग दौड़ में अक्सर बहुत कुछ हासिल करने की हम कोशिश करते हैं, जैसे सुविधाएं, सफलता और आधुनिकता, लेकिन कभी कभी इसी दौड़ में हम अपनी जड़ों से, अपनी परंपराओं से और अपनी असली पहचान से थोड़ा दूर हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी असली ताकत हमारे संस्कारों में है, हमारी संस्कृति में है और उन मूल्यों में है जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिले हैं। सखियों, जब घर में बड़े बुजुर्गों की सीख, बच्चों की मुस्कान और संस्कारों की महक होती है ना, तभी एक परिवार सच में एक पूर्ण घर बनता है। और जब ऐसे घर मिलकर समाज का निर्माण करते हैं, तब तो समाज मजबूत, संवेदनशील और समृद्ध बनता है। हमारी भाषा, हमारी शिक्षा और हमारा ज्ञान इस पूरे ताने बाने को जोड़ने का काम करते हैं। आज हम जब दुनिया तेजी से बदल रही है, तब ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी सांस्कृतिक जड़ों को समझें, उन्हें अपनाएं और आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाएं, क्योंकि यही जड़ें हमें स्थिरता देती है, हमें हमारी पहचान से जोड़ती है और हमें सही दिशा भी दिखाती है। सखियों, घर परिवार कार्यक्रम में हमें एक पल रुककर सोचने, महसूस करने और अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर देते हैं। रेडियो की यही खूबसूरती है कि ये बिना किसी दिखावे के सीधे दिल तक पहुंचता है। आपकी दिनचर्या चाहे कितनी ही व्यस्त क्यों ना हो, रेडियो की मधुर आवाज़ आपको सुकून देती है, आपको जोड़ती है आपके परिवार के साथ, आपकी संस्कृति से और आपके मूल्यों से। और हम उसी जुड़ाव को महसूस यानी कि मजबूत बनाने के लिए फिर से एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारा आज का विषय है सखियों, संस्कृत शिक्षा की समृद्धि, समाज का आधार। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज़, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: सखियों इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के अंक में। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक भाषा या शिक्षा का विषय नहीं है, बल्कि हमारी पहचान, हमारे संस्कार और हमारे समाज की नींव से जुड़ा हुआ विषय है। संस्कृत शिक्षा की समृद्धि, समाज का आधार। जी हाँ श्रोताओं, संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है, ये हमारे ज्ञान, हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति की आत्मा है। हजारों वर्षों से ये भाषा हमारे ऋषियों मुनियों के विचारों, हमारे शास्त्रों और हमारे जीवन मूल्यों को संजोए हुए है। वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, इन सभी महान ग्रंथों का मूल स्वर संस्कृत में ही गूंजता है। सखियों संस्कृत भाषा जो है वो हमें केवल शब्दों का ज्ञान नहीं देती, बल्कि ये हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। इसमें छिपे श्लोक, सूक्तियाँ और विचार हमें सत्य, अहिंसा और धैर्य, सम्मान, साथ ही कर्तव्य जैसे मूल्यों की शिक्षा देते हैं। जब एक बच्चा संस्कृत सीखता है तो केवल भाषा वो नहीं सीखता, बल्कि वो अपनी संस्कृति से जुड़ता है, अपने इतिहास को समझता है और अपने जीवन को एक सही दिशा देता है। और आज के समय में जब हम आधुनिकता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, तब संस्कृत शिक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि आधुनिकता के साथ साथ अगर हम अपनी जड़ों को भी भूल जाएं तो हमारी पहचान अधूरी रह जाती है। संस्कृत हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है, हमें ये याद दिलाती है कि हम कौन हैं और हमारी विरासत क्या है। सखियों एक सशक्त समाज की नींव मजबूत परिवार पर टिकी होती है और मजबूत परिवारों की नींव अच्छे संस्कारों पर। संस्कृत शिक्षा इन संस्कारों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जब घर में बच्चे नमस्ते कहते हैं और जब वे बड़ों का आदर करते हैं और जब वे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना सीखते हैं, जब वे सत्य और धर्म के मार्ग पर सही रूप से चलते हैं, जी हाँ, तो ये सब कहीं ना कहीं हमारी सांस्कृतिक शिक्षा का ही परिणाम होता है। आज जागरूकता इस बात की है कि इन संस्कृत को केवल हम एक विषय या कठिन भाषा समझकर ना छोड़ें, बल्कि हमें इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। बच्चों को संस्कृत के श्लोक सिखाएं, उनके अर्थ समझाएं और उन्हें ये महसूस कराएं कि ये भाषा कितनी समृद्ध और उपयोगी है। सखियों कई संस्थाएं और सरकार जो है वो संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए प्रयास कर रही हैं। आप भी अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय निकालकर संस्कृत के शब्द और श्लोक, ये विचार जो हैं आपस में साझा कीजिए। साथियों अगर स्कूल में संस्कृत को सिर्फ एक सब्जेक्ट मानकर पढ़ाया ना जाए तो कितनी रोचक हो जाएगी ये पढ़ाई। जैसे गीतों, श्लोक, कहानियों और छोटे छोटे संवादों के माध्यम से तो बच्चे इसे खुशी खुशी सीखेंगे ना, और उन्हें पसंद भी आएगा कि हाँ अब हमारा संस्कृत का पीरियड आने वाला है और हमें बहुत मन लगा करके इसको पढ़ना है, क्योंकि इसमें हम पढ़ते तो हैं ही साथ साथ इंजॉय भी करते हैं। सखियों रेडियो, दूरदर्शन और सोशल मीडिया भी संस्कृत के प्रचार प्रसार में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। यदि संस्कृत में छोटे छोटे कार्यक्रम, कविताएं, भजन, समाचार और प्रेरणादायक कथाएं प्रसारित की जाएं तो लोग आसानी से इससे जुड़ेंगे। ये हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम अपनी इस प्राचीन और गौरवशाली भाषा को जीवित रखें। अगर हम हर व्यक्ति जो है अपने स्तर पर थोड़ा सा प्रयास करे तो संस्कृत फिर से जन जन की भाषा बन सकती है। तो श्रोताओं अब आगे अपनी बात बढ़ाने से पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
2: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
5: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: एक बार फिर से आप सभी का सखियों स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम घर परिवार में। सखियों, अब बात करते हैं डेमी के कपड़ों का रखरखाव की। डेमी कपड़े यानी ऐसे कपड़े जिन्हें हम रोजमर्रा में भी पहनते हैं और जो हमारे व्यक्तित्व को खास बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी सफाई की। डेमी कपड़ों को हमेशा सखियों हल्के डिटर्जेंट से धोना चाहिए ताकि कपड़ा और रंग लंबे समय तक बना रहे। ध्यान रखें, हर कपड़े को बार बार धोना जरूरी नहीं होता, जरूरत के अनुसार ही इसे धोएं। इससे कपड़े जल्दी खराब नहीं होते और सखियों कपड़ों को सीधी तेज धूप में ज़्यादा देर ना रखें, बल्कि हल्की धूप या छांव में ही इन्हें सुखाएं ताकि उनका रंग और क्वालिटी बनी रहे। साथ ही इस्त्री यानी प्रेस करते समय भी सावधानी बरतें। हर कपड़े के अनुसार उसका तापमान रखें। और सबसे महत्वपूर्ण रखरखाव, सखियों कपड़ों को साफ सूखी और हवादार जगह पर ही रखें। अलमारी में नमी से बचाव रखें ताकि कपड़ों में बदबू या फिर फंगस ना लगे। अपनी अलमारी को समय समय पर साफ करते रहें। उसमें नीम की पत्तियां, कपूर या लेवेंडर पाउच रखने से कपड़ों में ताजगी बनी रहती है और कीड़े भी नहीं लगते। सखियों, कपड़ों का सही रखरखाव सिर्फ बचत ही नहीं करता बल्कि हमारी पर्सनैलिटी में भी निखार लाता है। तो आइए आज ही हम अपने कपड़ों की देखभाल को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। इसी संदेश के साथ आइए अब मिलकर सुनते हैं ये ब्यूटीफुल ट्रैक।

0: सखियों, अभी आप सुन रहे थे आपकी कसम फिल्म का ये प्यारा सा गीत। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद भी आया होगा। तो सखियों, अब ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद करेंगे आपके साथ जानकारी साझा खान पान की।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: सखियों, इस ब्रेक के बाद पहुंच चुके हैं हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में, जिसमें आपके साथ बात होती है खान पान की। और आज हम रसोई के स्वाद के और भी चटपटा बनाकर लेकर आए हैं एक पारंपरिक और बेहद स्वादिष्ट रेसिपी। जी हाँ, मिर्ची का अचार से। तो आइए जानते हैं इसकी सामग्री और बनाने की आसान विधि। सबसे पहले लीजिए मोटी हरी मिर्च 500 ग्राम, सरसों का दरदरा पिसा मसाला 4 बड़े चम्मच, सौंफ 2 बड़े चम्मच, मेथी दाना 1 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर सखियों आपको 1 छोटा चम्मच लेना है, हींग 1 चुटकी लेना है, नमक आप स्वाद अनुसार ले सकती हैं, आमचूर पाउडर जो है वो भी आपको 2 छोटे चम्मच लेने हैं, सरसों का तेल लगभग 1 कप होना चाहिए। सखियों, आप विधि सुनिए। सबसे पहले मिर्ची को धोकर सुखा लें। ध्यान रहे कि उसमें पानी बिल्कुल ना रहे, क्योंकि नमी अचार को जल्दी ही खराब कर सकती है। अब आप मिर्चियों को जो है ना लंबा चीरा लगाएं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से अलग ना करें। इसके बाद एक बर्तन में सरसों, सौंफ, मेथी, हल्दी, नमक और बाकी मसालों को मिलाकर उसमें थोड़ा गर्म किया हुआ सरसों का तेल डाल दें। फिर इस तैयार मसाले को मिर्ची के अंदर भर दें और सारी मिर्च भरने के बाद इन्हें कांच के साफ और सूखे जार में रखें। अब सखियों, ऊपर से थोड़ा सरसों का तेल और भी डाल दें ताकि अचार अच्छी तरह से सुरक्षित हो जाए। सखियों, 2 से 3 दिन धूप दिखाने के बाद स्वादिष्ट भरवा मिर्ची का अचार तैयार हो जाता है। घर का बना अचार ना सिर्फ स्वाद बढ़ाता है, बल्कि परिवार के प्यार और पारंपरिक स्वाद को भी संजो कर रखता है। तो इस बार अपने हाथों से बनाइए सूखा मिर्ची का अचार। जी हाँ, ये भरवा मिर्ची का अचार जो है ना वो आपको बहुत बहुत बहुत पसंद आएगा और आपका आनंद जो है उसे भी दोगुना कर देगा, जैसे हम आपको अपने कार्यक्रमों में गीत सुनवा कर उसका मज़ा बढ़ा देते हैं।

चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूंगी कि रिश्तों की मिठास, अपनेपन की गर्माहट और परिवार का साथ, यही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। अपने अपनों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए घर परिवार। इसी शुभकामना के साथ मैं प्रवेश लेती हूँ आपसे विदा। फिर मुलाकात होगी घर परिवार के एक नए और उपयोगी विषय के साथ। कार्यक्रम को आप तक पहुँचाने में हमें तकनीकी सहयोग दिया अंकित धीमान ने और प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर का 1:00 को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार और 1:05 पर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला साझेदार बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: केरलम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बेंच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों में मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपने अपने विचार लिखे हैं और खुश भी हैं कि आज थोड़ी सी तब्दीली उन्हें अच्छी लगी है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज के संगीतकार चित्रगुप्त हैं, उन्होंने अपनी हर एक फिल्म को अद्वितीय ढंग से मेलोडी प्रदान की थी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज हम आपके साथ रहेंगे, अभी हमारा मन कुछ उदास सा है, क्यों भाई? तो लिखने का मन नहीं है, पर हाँ, आज के पेपर को सरल कहें या कठिन समझ में नहीं आ रहा है। ये ज़रूर है कि यदि हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो पेपर सरल हो ही जाएगा, और अगर साथ में आप हैं तो इतने काबिल श्रोताओं का तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। वैसे भी हम सब विविध भारती की पाठशाला में रोज़ इतना कुछ पढ़ते हैं कि सवाल के जवाब न भी दे पाएं, ऐसा हो नहीं सकता, ज़रूर देंगे आपके प्रश्नों के उत्तर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज ये जो रोचक परिवर्तन किया गया है, इससे श्रोताओं को आसानी हुई है और उनकी दिलचस्पी भी बढ़ेगी। अब किसी को एग्जाम का अनसीन पैसेज हल नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, दो गायिकाएं तो लता मंगेशकर और आशा भोसले ही हैं, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी शंकर जयकिशन में से एक लग रहे हैं, बाकी श्रोता अपना दिमाग लगाएंगे। इस परिवर्तन से मैं आज खुश हुआ हूं और विविध भारती का आभारी हूं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज एकदम अनोखा, निराला और अभिनव प्रयास किया है आपने, जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। कार्यक्रम में विविधता ही उसकी पहचान बनती है, जो बरबस श्रोताओं को खींच लाती है और श्रोतागण भी आनंद पूर्वक हिस्सा लेते हैं। इस कार्यक्रम में हमेशा विविध भारती अव्वल रही है, याददाश्त और दिमागी कवायद सभी की शुरू हो चुकी होगी। देखें किन किन सौभाग्यशालियों के हाथ बटेर लगती है। दिलचस्प कार्यक्रम का बेकरारी से इंतजार रहेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के गाने संगीतकार चित्रगुप्त के संगीत से सजे लग रहे हैं। तेरी आंखों में प्यार मैंने देख लिया, गौरी तू लाख छुपा, आपने कई गानों का यहाँ जिक्र किया है, तो सुनिएगा आज की गीतमाला आपकी गीतमाला से मिलती है कि नहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर लगता है बहुत आसान है पर बहुत कठिन है। मुझे ज्यादातर गानों के बारे में पता चल गया। एक बात बता दूं, सभी गानों के संगीतकार चित्रगुप्त हैं, अब गाने और फिल्मों के नाम भी इन्होंने बताए हैं, तो आप देखिएगा आपकी जो ये प्लेलिस्ट है उससे हमारी प्लेलिस्ट कितना मेल खाती है, बताइएगा और लिखिएगा, हमें इंतज़ार है। ठीक है, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज थोड़ा अलग सा दिमाग की परीक्षा लेने वाला सुरीला सफ़र है। ये अंदाज है कि आज चित्रगुप्त जी के संगीत निर्देशन से हमारा सुरीला सफ़र तय होने वाला है। आपने भी कुछ गीतों के नाम लिखे हैं और उनका जिक्र किया है, तो पता लगाइए आज हमारी पसंद क्या आपकी पसंद से मिलती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीला सफर में आपका तहे दिल से स्वागत है। इस भीषण भरी गर्मी में विविध भारती के नीचे मधुर गीतों के जरिए शीतलता मिलेगी और ये सफर सुहाना होगा, बिल्कुल सुहाना होगा ये सफर इस गीत के साथ। और इस गीत के बाद मैं आपसे दो सवाल पूछूंगी जिसका उत्तर भी आपको तैयार रखना है। उषा मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें हैं, फिल्म का नाम है नई जिंदगी, प्रेम धवन के बोल और चित्रगुप्त का संगीत।

तो ये गीत आपको कैसा लगा? सुंदर गीत लगा ना, बहुत ही खूबसूरत गीत था। और हमारे श्रोता अपनी बात लिख रहे हैं, आप लिखते हैं कि संगीत का ये सफ़र वाकई बहुत सुरीला और दिलचस्प है। आपने जो सुराग दिए हैं, एक ही संगीतकार, दो महिला गायिकाएं और ये 12 विशिष्ट शब्द, ये सीधे तौर पर भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम यानी गोल्डन एरा की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन शब्दों और शर्तों को जोड़ने पर जो नाम सबसे ऊपर उभरता है वो है संगीतकार ओपी नैयर साहब का या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। जी नहीं, आज हम आपको एक ही संगीतकार जो कि चित्रगुप्त साहब हैं, उन्हीं से जुड़े गीत सुनवा रहे हैं। यानी चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में आज जिन दो महिला गायिकाओं ने जुगलबंदी की वो गीत हमने आपके लिए चुने हैं। फिर भी आपने प्रयास किया, सबसे बड़ी बात यह है। आप लिखते हैं कि आशा भोंसले और गीता दत्त की जोड़ियां हैं, इस तरह के बहुत सारे सदाबहार गाने हैं जिनका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और आपने कुछ गानों का जिक्र किया भी है। देखिए आपके गाने हमारे गानों से कितना मेल खा रहे हैं, गौर कीजिएगा और हमें लिखिएगा ज़रूर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चित्रगुप्त सिर्फ एक संगीतकार नहीं थे, वे उस सुकून, ठहराव और मेलोडी का नाम है जो आज भी रेडियो पर बजने पर हमें एक खुशनुमा ज़माने में वापस ले जाते हैं। महान संगीतकार चित्रगुप्त भारतीय सिनेमा के वे अमर गायक शिल्पी थे जिन्होंने बिना किसी भारी भरकम वाद्य यंत्रों के शोर के अपनी सादगी और दिल को छू लेने वाली धुनों से संगीत को नवाजा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीतकार तो चित्रगुप्त हैं और प्रत्येक गाना दो फीमेल सिंगर्स का गाया हुआ है। आपने भी कुछ गाने लिखे हैं? बिल्कुल, आपके गाने हमारे कुछ गानों से बिल्कुल मेल खा रहे हैं। देखिए कौन कौन से गाने हैं, बताइएगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज विविध भारती के सुरीले सफर में इबारत से कुछ चीज़ें स्पष्ट करके आसान किया है आपने, जैसे एक ही संगीतकार और दो महिला गायिकाएं, बस अब शब्दों के गानों पर दिमाग लगाते हैं और गानों का निर्णय हो ही गया, समझो। अरे वाह, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है, सरल नहीं कठिन है आज की गीतमाला, आपके दो प्रश्नों से ज्यादा भी कठिन है। अरे अभी तो दो सवाल हमारे आए ही नहीं है, कैसे कठिन हो सकती है? आज तो हमने आपको शब्द दे दिए थे और साथ ही बता दिया था कि एक ही संगीतकार पर केंद्रित है ये शब्द और दो गायिकाओं पर, मतलब दो जो जुगलबंदी है महिला गायिकाओं की जुगलबंदी होगी, कितना सारा तो बता दिया था आपको और हमारे कई श्रोताओं ने पकड़ भी लिया है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज का सुरीला सफर ने दिमागी तापमात्रा बढ़ा दी है, संभावित गानों का शब्द अनुरूप कयास लगाना कष्टप्रद है, इन्हें ढूंढने में श्रोता बंधुओं के कमेंट्स कारगर सिद्ध हो रहे हैं। आज श्रोता बंधुओं के लिस्ट के अनुसार ही हम भी चलने वाले हैं। चलिए तो आज के दो सवाल, वैसे दो सवाल नहीं है लेकिन इन्हीं सुरीले सफ़र से जुड़े ये सवाल हैं। चूँकि आज आप सुन रहे हैं कुछ गीत, तो इनसे इतर आपसे कुछ पूछ लिया जाए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी पसंद के महिला जुगलबंदी वाले गीत कौन कौन से हैं। जैसे मुझे एक गीत बहुत पसंद है, जब जब तुम्हें भुलाया तुम बहुत याद आए, है ना ये गीत, जहाँ आरा फिल्म का लता मंगेशकर और आशा भोंसले की जुगलबंदी है। तो इस तरह के और भी गीत जो हैं महिला जुगलबंदी वाले गीत, वो आपको कौन कौन से गीत पसंद हैं या याद हैं, उसका जिक्र ज़रूर करें। और एक सवाल हमारा ये है कि संगीतकारों के बारे में बताइए, ऐसे कौन से संगीतकार हैं जिन्होंने महिला युगल गीत गवाए और वो गीत आपको पसंद हैं, जैसे कि आज हमने चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में ये जुगलबंदी गीत लिए हैं। ऐसे बहुत सारे संगीतकार हैं जिन्होंने बहुत सारे गीत गवाए हैं, आप बताइए कौन से ऐसे संगीतकार हैं जो आपको पसंद है या उनके गाने आपको याद हैं। आगे बढ़ते हैं सुरीले सफर के इस गीत की ओर। चित्रगुप्त साहब का संगीत पंडित भरत व्यास के बोल हैं, सुमन कल्याणपुर और कमल बारूट की आवाजें हैं इस बार। फिल्म का नाम है महाभारत।

ट्राइबल गीत गवाए और वो आपको याद हैं वो गाने, या वो गाने आपको बहुत पसंद हैं। जैसे आज हम चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में ये जो महिला जुगलबंदी वाले गीत लेकर आए हैं, ठीक उसी प्रकार और भी संगीतकार हैं जिन्होंने बहुत सारे ऐसे गीतों की रचना की है। बताइए वो कौन कौन से गीत हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि 1 बजे जब सुरीला सफर शुरू होगा तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, और श्रोता दिमाग पर कम जोर डालें, सुरीले गीतों का आनंद लें और गीत भी पहले से अधिक बजेंगे। धन्यवाद विविध भारती, धन्यवाद मुझे। अरे बिल्कुल सही कहा आपने, दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है कि हमें बुरा लगे या हमें गुस्सा आ जाए या हम तनावग्रस्त हो जाएं। बिल्कुल मनोरंजक कार्यक्रम है ये, आपके मनोरंजन के लिए इसका आनंद उठाइए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज ये बहुत अच्छा नया प्रयास है, शब्द आपने दे दिया और हिंट भी दे दिया है, तो कोशिश भी हमारी बनी रहेगी। और वहीं आपने कुछ गीतों का जिक्र भी किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि लगता है आज आपने यू टर्न मार दिया है, सुरीला सफर का ये पैटर्न भी अच्छा है, अब फिर परीक्षा होगी, जानकारी बता पाएंगे, चलो चलें सुरीले सफर पर मंदाकिनी जी के साथ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज जो गेंद आपने डाली है वो गुगली जैसी लग रही है, लेकिन यॉर्कर भी हो सकती है या फिर वाइड हो सकती है, बाहर निकल जाएगी, ज़्यादातर बल्लेबाज असमंजस में है। अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, आज तो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं आप लोग, देखिए ना फटाफट हमारे कुछ श्रोताओं ने तो बिल्कुल सही गाने चुने हैं। अब हमारे पास वक्त नहीं होता उन सभी गानों का जिक्र यहाँ करने का, वरना आपको बताते कि आज बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने सही चुने हैं। एक श्रोता ने लिखा है आज शायद यही गाने बज पाने वाले हैं, बेहद अच्छा, आज शायद यही गाने बजेंगे, आपने कुछ गानों का जिक्र किया है, बेहद हिम्मत वाला काम है, अगर ऐसे गाने शामिल होंगे तो कार्यक्रम की रोचकता बनी रहेगी और कुछ हर रोज़ बजने वाले गानों से अलग सुन सकेंगे, बेहद नायाब चयन है, आपने हमें धन्यवाद दिया है। और बिल्कुल आपके कुछ गीत तो हमारे प्लेलिस्ट से बिल्कुल मेल खा रहे हैं, शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आपको, आप सभी श्रोताओं को जो आज की जो सुरीला सफर की ये प्लेलिस्ट है उसमें आप शामिल हो गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीतकार चित्रगुप्त मखमली धुनों और सादगी के मसीहा थे, भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग में जहां एक तरफ शंकर जयकिशन, नौशाद साहब, एसडी बर्मन जैसे दिग्गजों का दबदबा था, वहीं एक ऐसा संगीतकार भी था जिसने बिना किसी तामझाम के बेहद सादगी और गहराई से भरपूर संगीत दिया, उनका नाम था चित्रगुप्त। चित्रगुप्त श्रीवास्तव हिंदी सिनेमा के उन अनमोल रत्नों में से एक हैं जिनके गीतों की मिठास आज भी कानों में मिश्री घोल देती है। बिल्कुल सही कहा, और वही मिश्री घोलने वाले गीत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगला गीत राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ है, इस बार आवाजें हैं गीता दत्त और उषा मंगेशकर की, और ये फिल्म है माँ बाप।

जी कितना खूबसूरत गीत था, है ना। अच्छा, इस गीत को आपने पहले कभी सुना था बताइएगा। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वे आज तो भैया इस भरी गर्मी में थोड़ी सी भी यदि ठंडाई की बात करूं तो वो है विविध भारती, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में अच्छा मैं आई हूं तो गानों की बौछार होगी। गानों की बौछार तो हमेशा ही होती है और मन आनंदित होगा। सचमुच कल की गीतों भरी कहानी सुनी जिसमें एक ऐसा प्रसंग आया जहां मुझे रोना ही आ गया था। धन्य विविध भारती जो ऐसे प्रसंग लाती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहला गाना एकदम अनसुना सा था, यहां तक कि सिनेमा का भी नाम नहीं सुना था। तूफान में प्यार कहां, सिर्फ विविध भारती के पास ही ऐसा कलेक्शन हो सकता है। एक श्रोता लिखते हैं कि आपका कार्यक्रम सबसे अलग होता है, इस महारथी आपको ये महारत आपको हासिल है। अच्छा, मुझे बहुत शानदार सुंदर, क्योंकि सुने कौन सा संगीत, गीतों से हम भीषण गर्मी में ठंडक महसूस कर रहे हैं, मस्ती और आनंद आ रहा है। बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं देते हैं आपको मुझे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती परिवार और सभी मित्रों को बहुत बहुत शुक्रिया। आज परीक्षा में पेपर अनुमान से ज़्यादा आसान आ जाता है तो खुशी के मारे जो याद किया था वो भी भूल जाते हैं। दूसरे आसान पेपर की मार्किंग भी हार्ड होती है। श्रोताओं में बहुत से शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, वे सब मेरी बात का समर्थन करेंगे। अब नंबर देना आपके हाथ में है, देखें आप कितना लिबरल रहती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने आज सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक सुरीला सफ़र की पोस्ट का इंतज़ार किया, फिर मैं अपनी नौकरी के लिए निकल गया। 10:30 बजे नौकरी पर पहुंचकर कुछ घंटे काम किया, उसके बाद 12 बजे मैंने सुरीला सफ़र की पोस्ट देखी, फिर श्रोता मित्रों की पोस्ट देखी, तब मालूम पड़ा आज सुरीला सफर महान और अमर संगीतकार चित्रगुप्त जी पर केंद्रित है, साथ में 2 गायिकाओं पर भी। दुकान पर पहुंचकर गीतों को शब्दों को पढ़ा, मेरे लिए समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। वहीं एक श्रोता ने हमारे सवाल का जवाब देते हुए बहुत सारे गीत लिखे हैं, गोरे गोरे और बांके छोरे, लता मंगेशकर और समाधि फिल्म का आपने ये गाना लिखा है, बिल्कुल सही कहा आपने, और साथ में प्रेमलता हैं इनके, जिसका जिक्र आपने नहीं किया है। वहीं एक श्रोता ने दूसरे गाने लिखे हैं, लता मंगेशकर और आशा भोंसले की आवाज़ में जो जुगलबंदी वाला गीत है, लिखते हैं ये गाना मेरा फेवरेट है, फिल्म उत्सव का, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा और मेरे महबूब में क्या नहीं अपलम चपलम, ये सभी गीत मुझे बेहद अच्छे लगते हैं। बहुत सही आपने गीतों का चयन किया है। जी हाँ, तो हमारे श्रोता बताएं कि कौन से ऐसे गीत हैं जुगलबंदी वाले, महिला जुगलबंदी वाले जो उनको पसंद हैं, उनका जिक्र वो करें, साथ ही उन संगीतकारों के बारे में बताएं जिन्होंने अपने संगीत निर्देशन में ये महिला जुगलबंदी वाले गीत लिए हैं और संगीतबद्ध किए हैं। जैसे आज हमने चित्रगुप्त साहब को इस कार्यक्रम में शामिल किया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्रेम धवन का लिखा ये गीत सुनते हैं। चित्रगुप्त साहब की संगीत रचना है, सुमन कल्याणपुर और उषा मंगेशकर की आवाजें हैं। ये फिल्म है गेस्ट हाउस।

हमारे श्रोताओं ने अपनी अपनी पसंद हम तक पहुंचाई है। एक श्रोता लिखते हैं कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा लता जी और कमल बारोट की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में है। वहीं मन क्यों बहका लता जी और आशा जी की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। और ऐ काश किसी दीवाने से हमको भी मोहब्बत हो जाए, अच्छा ऐ काश किसी दीवाने को है हमसे भी मोहब्बत हो जाए। आपने से और को का थोड़ा सा अंतर कर दिया है। और ये गीत भी आपको पसंद है, लता मंगेशकर और आशा भोंसले का गाया हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ है। वहीं आप लिखते हैं तुमको पिया दिल दिया और कजरा मोहब्बत वाला और तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, ये सभी गीत आपको बेहद पसंद है। बहुत सुंदर गीतों का चयन आपने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि दिन रात जले अखियां परदेसी, उषा मंगेशकर और आशा भोंसले, ये गीत हमें बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय बहुत निराला है और बहुत बढ़िया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो आपने कमाल की गुगली फेंकी है। अच्छा आपने, हम तो क्लीन बोल्ड हो गए, आज हमारी बत्ती गोल डब्बा गोल है। आप तो बस मधुर गीतों का रसा स्वादन कराइए और हम मधुर गीतों का आनंद लेने वाले हैं, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमें सफ़र में तो सफ़र सुरीला कैसे नहीं होगा अगर आप हैं हमारे साथ, तो आज आप आई प्रोग्राम में तो गीतों की बहार आ गई है। आप लिखते हैं कि ओ गोरे बांके छोरे गीत पसंद है, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, कजरा मोहब्बत वाला, ये सभी गीत हमें बेहद पसंद है जो दो गायिकाओं द्वारा गाए गए हैं। साथ ही आपने लिखा है एक श्रोता ने कि मनभावन के घर गाए जाए गोरी घूंघट में शर्माए गोरी, लता जी और आशा जी की आवाज़ में, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया गीत बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपकी गीतों की चॉइस कितनी बड़ी है, मन बहुत खुश हुआ। अच्छा शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफ़र बहुत ही बढ़िया है, दो फीमेल गायिकाओं के गीत कितने बढ़िया और कितने ताल सुर में, परदेसी का गाना सुन के बहुत ही बढ़िया लगा, चित्रगुप्त जी का संगीत बोले तो बहुत मधुर संगीत, क्या कहने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपकी थीम कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ भी हो हम आपको विविध भारती ज़रूर सुनेंगे, इस तपतपाती गर्मी में गानों के जरिए ठंड का एहसास हमें थोड़ा तो होगा। आप इतनी शिद्दत और प्यार के साथ हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं, सराहते हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से आभार। चलिए अगला गीत सुनते हैं, चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में, इसे आर कृष्णा ने लिखा है, इस बार स्वर है गीता दत्त और उषा मंगेशकर के और ये फिल्म है कंगन। हमने शब्द दिया था लिख पढ़, वही है ये गीत।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अभी जो गीत हम सुन रहे थे फिल्म गेस्ट हाउस का सबसे शानदार गाना शीला वाज और अन्य अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। कितनी खूबसूरत और गहरी जानकारी आपने हमें दी है, इसके लिए शुक्रिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप चाहे मना करें, मैं आपकी तारीफ करूंगा और धन्यवाद भी करूंगा कि आज यादों की महफिल में मेरे तीन पसंदीदा गाने एक साथ सुनवाए गए। कुछ दिल ने कहा जीत ही लेंगे बाजी हम तुम और मैं ये सोचकर जा रहा था। बिल्कुल, ये गाने तो बहुत ही खूबसूरत थे और कैफी आजमी की रचनाएं थी, तो पसंद तो होंगी आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पसंदगी के महिला युगल गीत में एक इन्होंने कुछ गानों का जिक्र किया है, सखी रे सुन मोरी पपीहा उस पार। अच्छा, फिल्म मिस मैरी का ये गाना आपको बहुत पसंद है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिस देश में गंगा बहती है का क्या बात तू मुझे क्या बताइए गाना पसंद है। गर्जत बरसत सावन आयो रे और बरसात की रात फिल्म का जो एक जमाने में उसका अंश संगीत रचना के परिचय धुन में शामिल था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो मैडम काफी खुश हैं और काफी हंसमुख लग रही हैं। अच्छा और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि एक परिवर्तन से ही कार्यक्रम में श्रोता फ्रेंडली हो गए हैं, आगे गीतों के लिए दिलचस्पी और उत्सुकता बढ़ गई है और आज का ये कार्यक्रम चित्रगुप्त साहब और दो गायिकाओं तक ही सीमित है, इससे हम बड़े खुश हो गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अपलम चपलम और मन भावन के घर जाए गोरी ये गाने बहुत पसंद है हमें। वहीं एक श्रोता ने मन क्यों बहका रे सखी ये गाना पसंद किया है, चुपके कौन आया मेरे अंगना काश किसी दीवाने को और आएगा हमारे गांव कोई आएगा, इन सभी गीतों को पसंद किया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे ज्यादा पसंद है मन क्यों बहका रे बहका और हुजूर आला जो इजाजत हो, ये युगल महिला गीत वाले जो स्वर गीत हैं ये हमें बेहद पसंद आते हैं। जी, तो आज के सुरीला सफर में हमने आपके सफर को थोड़ा सा आसान कर दिया और आप लगभग हमारे साथ दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आइए सुनते हैं अगला गीत, ये है आशा भोंसले और उषा मंगेशकर की आवाजें, अनजान के बोल हैं, चित्रगुप्त साहब का संगीत है और ये फिल्म है ज्वाला दहेज की।

जी तो हमारे श्रोता कह रहे हैं कि मेरे पास करीब 20,000 गानों का संग्रह है और लगातार पुराने गीतों को ढूंढकर संग्रह को मैं और बढ़ा रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ताथैया करके आना मेरे जादूगर, ओ सैया, गीता दत्त, लता मंगेशकर, इकबाल कुरैशी, फिल्म पंचायत का गीत और कौन रंग मुंगवा लता मंगेशकर और सुधा मल्होत्रा का, संगीतकार रोशन साहब और रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, ये गीत इन्हें बेहद पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये गीत तो पहली बार सुना है, वैसे मुझे डोला रे डोला फिल्म देवदास का गीत बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि वाह वाह, मेरा एक गीत मैच कर गया है, निकला है गोरा गोरा चांदरे। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि कचरा मोहब्बत वाला आंखियों में ऐसा डाला शमशाद बेगम और आशा भोंसले की गायकी बहुत पसंद है। युगल गायिकाओं में कुछ लोगों ने अपलम चपलम, हंसतावा नूरानी चेहरा, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर, मन क्यों बहकाई सभी गीतों को पसंद है किया है। वहीं एक श्रोता ने कहा है, आपने पूछा कि कौन से युगल गीत पसंद है, फिल्म शिकारी का युगल गीत तुमको पिया दिल दिया, फिल्म पारसमणि का गीत हंसतावा नूरानी चेहरा, उत्सव का गीत मन क्यों बहकारी का हमें बेहद पसंद आता है। चलिए तो आपकी पसंद को हम धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी पसंद इतनी लाजवाब है। और अब कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पर हम आ गए हैं, जहां सुनते हैं लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर को फिल्म हम मतवाले नौजवान में। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है, चित्रगुप्त का संगीत।

तो दोस्तों आज का सुरीला सफर यहीं तक, और अब इस सफर से मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। आज लाखों करोड़ों की भीड़ में भी कई बार इंसान अपने को अकेला पाता है। आधुनिकता के इस दौर में छोटे होते जा रहे परिवार के कारण अकेलेपन की समस्या आम बात हो गई है। ऐसे में अगर हम अपने लक्ष्य पर, अपनी प्रगति पर ध्यान देंगे तो हमारा अकेलापन हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी शक्ति बन जाएगा। देखिए ना, चांद रोज रात को आकाश में अकेला ही अपने सफर पर निकल पड़ता है, बिना थके, बिना हारे।

अपने लक्ष्य पर ध्यान देने के अलावा अकेलापन दूर करने का एक सरल उपाय है। अपने जीवन में किसी को अपना हम ख्याल बना लें, हम सफर बना लें, ऐसा प्रयास करके तो

लेकिन आज के जीवन की आपाधापी में कोई आपका साथ न दे, कोई आपकी पीठ न थपथपाए, आपकी सफलता पर तालियां न बजाए, तो फिक्र की क्या बात है। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका सच्चा हितैषी तो ऊपर वाला होता है। ऐसे में अपनी क्षमताओं पर विश्वास कीजिए। आप अकेले ही पूरी दृढ़ता के साथ प्रगति के पथ पर बढ़ सकते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शब्दों में, ज्योति तो डाक शून्य के उनाशे तबे एकला चलो रे।

दोस्तों, जब हम सकारात्मक सोच के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं तो अकेलापन हमारी शक्ति बन जाता है। आज त्रिवेणी का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निकम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और IPL क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
2: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत iGOT प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज

0: उपलब्ध है। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
1: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरला में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। CBSE ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
1: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1,100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
1: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
4: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थ या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का ये था पहला गीत। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम था जन्म जन्म के फेरे। गीतकार थे पंडित भरत व्यास और धुन बनाई थी SN त्रिपाठी ने।

0: साहिर लुधियानवी की लिखी यह कव्वाली अभी आपने सुनी। मोहम्मद रफ़ी, बलबीर और साथियों की आवाज़ें थीं। एन दत्ता का संगीत था और फिल्म का नाम था साधना।
1: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
3: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना। विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
4: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी।
5: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आशा भोंसले, शमशाद बेगम और साथी फिल्म का नाम हम पंछी एक डाल के। गीतकार हैं पी एल संतोषी और संगीतकार एन दत्ता।

0: कोई मारे कोई किसी को,
1: ना कोई खाए मांस किसी का,
0: ना कोई पीवे खून किसी का,
1: ना कोई रोके सांस।

0: हम आएंगे तुमको वहाँ बचाने को।
1: हम आएंगे,
2: हम आएंगे, हम आएंगे, हम आएंगे।
3: लेकिन सब में था होशियार एक बूढ़ा सा सियार, बोला अपनी दुम फटकार।

लीजिए कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज और ये फिल्म है मधुमति। शब्दकार शैलेंद्र और संगीतकार सलिल चौधरी।

मधुमति फिल्म का गीत अभी आपने लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में सुना। आइए अब सुनते हैं फिल्म हावड़ा ब्रिज का गीत, आवाज आशा भोंसले की, शब्द हसरत जयपुरी के हैं और धुन ओपी नैयर की है।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण की रचना सुनिए। गायिकाएं हैं आशा भोसले और गीता दत्त, और ये फिल्म है अदालत।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का ये है आखिरी गीत। हेमंत कुमार का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वर हैं। फिल्म का नाम है चंपाकली।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर दिन के 3 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया और कहा कि अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व के कई देशों के साथ साझेदारी भी कर रहा है, जिसका मकसद देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाना है। आज 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। ये रोजगार मेला पूरे देश में 47 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया था। पूरे देश से चुने गए ये नए कर्मचारी रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग जैसे कई अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में अपनी सेवाएं देंगे। प्रदेश में 3 चरणों में 26, 28 और 30 को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर है। 26 मई को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए सक्रिय चुनाव प्रचार 24 मई को समाप्त हो जाएगा। प्रदेश में 28 व 30 मई को दूसरे और तीसरे चरण के पंचायती राज चुनाव होंगे। इस बीच राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज चुनावों के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन तीनों चरणों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के विभिन्न पदों के लिए मतदान होगा। चुनाव आयोग ने पूरे प्रदेश में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। प्रदेश पुलिस चिट्टे के खिलाफ 5 जून को शिमला में एंटी चिट्टा व स्वच्छ पर्यावरण जागरूकता मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन करेगी। प्रदेश पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने शिमला में कहा कि इस दौड़ का उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं और आमजन को नशे के विरुद्ध एकजुट करना और उन्हें पर्यावरण संरक्षण, फिटनेस और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करना है। 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस भी है। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि इस वर्ष प्रदेश पुलिस ने एंटी चिट्टा अभियान के तहत नशा उन्मूलन और स्वस्थ समाज निर्माण के संदेश को जोड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश पुलिस चिट्टा के खिलाफ अभियान तेज करेगी। अशोक तिवारी ने कहा कि यह अभियान प्रत्येक प्रतिभागी को नशे और पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता का दूत बनाने का प्रयास करेगा। राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों में समय पर वेतन न मिलने से नाराजगी बढ़ती जा रही है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आज निगम के कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर चालक परिचालक यूनियन के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि अगर 1 जून तक निगम के कर्मचारियों के बैंक खातों में वेतन नहीं आया तो कर्मचारी हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे। वर्कशॉप कर्मचारियों ने भी वेतन न मिलने पर टूल डाउन की चेतावनी दी है।
2: अन्य कर्मचारियों की तरह एचआरटीसी का कर्मचारी भी चाहता है कि उन्हें भी 1 तारीख को सैलरी मिले, लेकिन क्या कर्मचारी को कभी समय से वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर ये निर्णय लिया है कि यदि 1 तारीख साय 5 बजे तक कर्मचारियों का वेतन उनके खातों में नहीं डाला गया तो रात 12 बजे से सभी लोग जो है अपना कार्य बंद कर देंगे और जब तक हमारी सैलरी हमारे खातों में नहीं डल जाती तब तक हम कार्य नहीं करेंगे।
0: प्रदेशवासियों को एक बार फिर जोरदार गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने 26 व 27 मई को राज्य के 6 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर के अलग अलग स्थानों पर हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमानों के अनुसार 25 मई तक राज्य के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती रहेगी। विभाग ने इस दौरान प्रदेश के मध्यम व ऊंचाई वाले अलग अलग स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी की संभावना जताई है। इस बीच बीते रोज राज्य के अधिकांश स्थानों पर हुई वर्षा और अधिक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर बर्फबारी से प्रदेशवासियों को चिलचिलाती गर्मी से हल्की राहत मिली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचारों के बाद लीजिए पेश है कांगड़ा जिला की चिट्ठी। लेखक हैं विपिन शर्मा और वाचक स्वर राकेश शर्मा का है।
0: जिला कांगड़ा में शिक्षा, संस्कृति, खेल, प्रशासन और लोकतांत्रिक गतिविधियों को लेकर बीते दिनों कई महत्वपूर्ण आयोजन हुए। पालमपुर स्थित चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के 2 दिवसीय 19वें राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने किया। दीप प्रज्वलन तथा महर्षि वाल्मीकि और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। राज्यपाल ने कहा कि ऐसे सम्मेलन सामाजिक संवाद को मजबूत करने और समाज को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने समाज में एकता, सद्भाव और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामाजिक समरसता और समावेशी विकास अनिवार्य है। शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने 10वीं और जमा 2 कक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। जमा 2 परीक्षा का कुल परिणाम 92.2% रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर है। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों संकायों के परिणाम एक साथ घोषित किए गए। वहीं 10वीं कक्षा का परिणाम 83.87% दर्ज किया गया। कांगड़ा जिला की छात्राओं और छात्रों ने दोनों परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन किया। 10वीं में कांगड़ा की छात्रा अनमोल ने 700 में से 699 अंक लेकर प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया। जमा 2 आर्ट्स और साइंस स्ट्रीम में भी कांगड़ा के विद्यार्थियों ने शीर्ष स्थान पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लाइव मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू की गई और नकल के मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज हुई। न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत जिला कांगड़ा के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा द्वारा आयोजित इस लोक अदालत में 10,000 से अधिक मामलों को सुनवाई के लिए रखा गया, जिनमें से 5,429 मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से निपटारा हुआ। विभिन्न मामलों में 5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अवार्ड पारित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने यह भी जानकारी दी कि आगामी अगस्त माह में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत आयोजित होगी, जिसमें समझौते योग्य मामलों का समाधान संवाद और सहमति के आधार पर किया जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में शैक्षणिक और वैचारिक गतिविधियां लगातार जारी हैं। पत्रकारिता, जनसंचार और नव मीडिया स्कूल तथा विश्व संवाद केंद्र शिमला के संयुक्त तत्वावधान में देवऋषि नारद जयंती के अवसर पर विशेष अभियान व्याख्यान आयोजित किया गया। कुलपति प्रोफेसर सत प्रकाश बंसल ने कहा कि देवर्षि नारद विश्व के प्रथम संचारक थे, जिनका उद्देश्य सदैव लोकहित और सत्य आधारित संवाद स्थापित करना था। उन्होंने आधुनिक पत्रकारिता में मूल्यों और नैतिकता के महत्व पर बल दिया। इसी क्रम में विश्वविद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण एक अंतर सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य विषय पर विशेष व्याख्यान का आयोजन भी किया गया। वक्ताओं ने मानसिक स्वास्थ्य के वैश्विक और भारतीय दृष्टिकोण पर चर्चा करते हुए योग, आयुर्वेद और सांस्कृतिक जीवन शैली के महत्व को रेखांकित किया। उच्च शिक्षा और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत NIT पुडुचेरी के 48 छात्र और 5 फैकल्टी सदस्य हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय पहुंचे। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान छात्र हिमाचल की संस्कृति, पर्यटन, तकनीकी विकास और सामाजिक जीवन को नजदीक से जान रहे हैं। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने कहा कि भारत की विविधता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है और ऐसे कार्यक्रम युवाओं के बीच भावनात्मक जुड़ाव मजबूत करते हैं। खेल जगत में भी जिला कांगड़ा के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र धर्मशाला की खिलाड़ी निकिता चौहान और सिमरन कंबोज ने चीन में आयोजित 6ठे एशियन बीच गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। धर्मशाला लौटने पर दोनों खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। खिलाड़ियों ने अपनी सफलता का श्रेय धर्मशाला केंद्र की आधुनिक सुविधाओं, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग और प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया। स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में जिला कांगड़ा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा के अनुसार जिला की लगभग 850 पंचायतों में 12 लाख से अधिक मतदाता मतदान करेंगे। चुनाव 3 चरणों में आयोजित होंगे। प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। वहीं नगर निगम धर्मशाला की चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए, जिसमें 60% मतदान दर्ज किया गया। महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक रही। नगर निगम पालमपुर में भी मतदान प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हुई, जहां लगभग 69% मतदान रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही कांगड़ा जिले की चिट्ठी संपन्न हुई। नमस्कार।
4: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। दिन के 3:10 हुए हैं। हमारे केंद्र से अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म अनामिका में। अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। आप हैं पलसीकर कॉलोनी इंदौर से धनेश मटाई, राकेश मटाई, उमेश, जिम्मी, अमिता, हनी, दियाना, जियांश मटाई, करनाल हरियाणा से गुरविंदर सिंह पांधा, मनविंदर सिंह पांधा, और ये खत आया है हैदराबाद से कनुगुला गोपाल, महेश्वरी, प्रावलिका, विष्णुवर्धन और विघ्नेश का। हम आप सभी से ये अनुरोध भी करते हैं कि कृपया अपने नाम थोड़ा सा साफ सुथरा लिखें ताकि हमें पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो और हम आपके नामों का उच्चारण सही ढंग से कर पाएं। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म लैला मजनू का गीत। गीतकार साहिर लुधियानवी हैं और संगीतकार मदन मोहन हैं।
1: तेरे दर पे आया हूँ।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, अनजान के बोल, लता मंगेशकर की आवाज़ है और फिल्म का नाम है अपने रंग हजार। सुनने वाले हमारे श्रोता हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर दुर्ग से, आप हैं छत्तीसगढ़ से अनंत जैन, हंसित जैन, प्रीति जैन, और छत्तीसगढ़ से ही हैं देवरी भटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर एस, अश्विनी कुमार और गणेश राम। लीजिए आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर। आप हैं लिखने वाले गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोधले, आरती जोधले और इनके परिवार वाले। ये खत हमें मिला है छत्तीसगढ़ से, जिला धमतरी से, चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम सावित्री साहू। यानी ये खत है इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से। हमें उम्मीद है आपने अपना नाम सुन लिया होगा। और ये खत मिला है गाजियाबाद से, नंदग्राम गाजियाबाद से, बाबूराम आनंद, बीना आनंद, खुशी आनंद का। और वनुजा तांडा से सानिका राठौड़, एस आर टेलर, जय राठौड़, सुनील राठौड़, इंदुबाई राठौड़ और कुमार आशीष का। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले को फिल्म परवाना में। गीत को कैफी आजमी ने लिखा है और संगीत मदन मोहन का है।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अमर प्रेम का गीत, आवाज किशोर कुमार की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने। इस गीत को सुनने के लिए आपने हमें खत लिखे। आप हैं बोडूसरा नेला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली, प्रियांशु साहू। और ये खत आया है खमहरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रदीप कुमार का। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: किशोर कुमार की गाय फिल्म अमर प्रेम के इस गीत के साथ ही आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
1: मनचाहे गीत।
2: मनचाहे गीत।
1: मनचाहे गीत।

रवि शर्मा लिखित नाटक सुनिए विजयमाल।

0: आपकी सेवा में प्रेषित किया है।
1: मंत्री जी, अन्नदाता, पत्र का भावार्थ व्यक्त कीजिए। अन्नदाता, राणा हाड़ा जी अपनी अतीत सुंदरी कन्या का विवाह हमारे वीर सामंत चूड़ावत से करना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए आपकी अनुमति मांगी है।
2: यदि चूड़ावत जी को यह प्रस्ताव स्वीकार है तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है?
1: महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं इस विषय में कुछ निवेदन करूं।
2: आज्ञा है मंत्री जी, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं।
1: महाराज, सरदार चूड़ावत हमारे वीर सेनापति हैं। राणा हाड़ा ने उन्हें अपनी सुंदरी कन्या के लिए मांगकर बुद्धिमता का परिचय दिया है। पर मेरी सम्मति में तो वीर चूड़ावत की जीवन संगनी कोई वीर कन्या ही हो सकती है, हाड़ी कुमारी नहीं।
2: महामंत्री जी, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हाड़ी कुमारी छत्राणी नहीं है? क्या उसकी रगों में पूर्वजों का रक्त प्रवाहित नहीं हो रहा?
1: महाराज,
2: हम आपकी शंका का कारण समझने में असमर्थ हैं।
1: महाराज, जहां तक मुझे ज्ञात है, हाड़ी कुमारी में वीरोचित गुणों का अभाव है। सामंत चूड़ावत का बचपन तो तलवारों की खनखनाहट में पला है और यौवन युद्ध क्षेत्र में पल्लवित हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इस उगते हुए सूर्य को ग्रहण लग जाए। विद्वानों ने कहा भी है, भार्या रूपवती शत्रु, यूं भी नारी का रूप और यौवन पुरुष की सबसे बड़ी दुर्बलता है। जानबूझकर इस दुर्बलता को गले की माला बनाने की सलाह मैं नहीं दे सकता।
2: चूड़ावत जी,
3: महाराणा,
2: आपकी इस विषय में क्या सम्मति है? क्योंकि वीर राजपूत केवल अपने ही विचारों और अपने ही भुजबल के विश्वास पर आगे बढ़ता है, इसलिए निसंकोच आप अपने विचार व्यक्त कीजिए।
3: महाराणा, हाड़ी कुमारी के अद्भुत रूप और लावण्य की चर्चा सुनकर भी मैंने कभी भावुकता का आश्रय नहीं लिया, पर मैं इतना अवश्य कहूंगा कि रूपवती भार्या को चाहे शत्रु कहा जाए अथवा उसे पुरुष की दुर्बलता की संज्ञा दी जाए, पर इन सब के साथ साथ वो पुरुष के जीवन की एक महान प्रेरणादायक शक्ति भी है, वह शक्ति जिसके अभाव में शिव भी शव के समान हो जाता है। आज एक नारी के सौंदर्य ने मेरी वीरता और पुरुषत्व को चुनौती दी है। यदि महाराणा की आज्ञा हो तो स्वीकार कर लूं इस चुनौती को।
2: हम आपको ये चुनौती स्वीकार करने की अनुमति देते हैं। मलखान सिंह
4: जी, महाराज,
2: राणा हाड़ा को ये शुभ संदेश दे दो कि हमें ये संबंध स्वीकार है। महामंत्री जी,
1: जी महाराणा,
2: सामंत चूड़ावत के विवाह का आयोजन राजकीय सम्मान से अतिशीघ्र किया जाए।
1: जो आज्ञा महाराज।

Yeah.

0: भैया भाभी बहुत ही सुंदर हैं।
1: सच
0: सच भैया, देखोगे तो पागल हो जाओगी।
1: तनिक अपनी भाभी को हमें भी तो दिखा दो।
0: इतने उतावले क्यों हो रहे हो, थोड़ी देर और ठहर जाओ ना। और हाँ, मेरे मुंह दिखलावनी।
1: ये लो।
0: कितनी अच्छी है ये माला।
1: अब बोल कहाँ है तेरी भाभी।
0: अरे तारा, कहाँ चली गई? सब भाभी को ही घेर कर बैठी हैं।
1: अच्छा,
0: कोई सुनता ही नहीं। तारा, तारा
2: आई।
0: देख तारा, जरा भैया को ऊपर वाले कमरे का रास्ता दिखा देना, बेचारे थक गए हैं।
2: आइए सामंत, ऊपर जाकर विश्राम कीजिए, और प्रतीक्षा भी।
1: प्रतीक्षा? प्रतीक्षा किसकी?
2: चंद्रोदय की। आज आपके शयन कक्ष में पूर्ण चंद्र का आगमन जो होने वाला है।
1: ओह, अब समझा, तुम बहुत नटखट हो।
0: आओ भाभी, इधर आओ, यहाँ बैठो। हाँ, ऐसे
3: यहाँ। यहाँ क्या करना होगा मुझे?
0: ये हमारी कुल देवी हैं, सौभाग्य और यश की देवी।
3: अच्छा,
0: नववधु इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर ही पति के दर्शन कर सकती है। आज के दिन वधु जो कुछ इनसे मांगती है वो उसे अवश्य मिलता है।
3: अच्छा
0: भाभी, मांग।

0: जो भी इच्छा हो।
1: मैं केवल यही मांगती हूँ कि मेरे पति पर कभी भी किसी भी प्रकार का कलंक न लगे, यश और सौभाग्य की वर्षा होती रहे उन पर।
0: धन्य हो भाभी, तुमने वही मांगा जो मांगना चाहिए था।
1: इसके सिवा और मैं मांग ही क्या सकती थी।
0: भाभी, तुम्हारे ये विचार तुम्हारी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। और हाँ भाभी, अब रात अधिक हो रही है, हम सब तो आज रत जगा करेंगी। तुम ऊपर जाओ, आज तुम्हारी मधु यामिनी है ना।
1: ना ना, मैं भी तुम लोगों के साथ रत जगा करूंगी।
0: रत जगा तो करोगी ही, पर ऊपर, यहाँ नहीं। भाभी शर्माओ नहीं, ऊपर जाओ। नहीं जाती? अच्छा ठहरो, मैं भैया को बुलाती हूँ, तुम्हें गोद में उठाकर ले जाएंगे। हाँ,
1: अरे अरे,
0: बुलाओ भैया।
1: मैं जाती हूँ।
0: तारा सुन जी, भैया ऊपर के कमरे में ही है ना।
2: जी हाँ, सामंत तो वहाँ पहले से ही हाड़ी रानी की प्रतीक्षा में बैठे हैं।
0: बस अब खूब मजा आएगा।
1: कितना सुंदर कक्ष है ये, पलंग, गुलाब की पंखुड़ियां, फूलों के पर्दे और ये तलवार अवश्य मेरे स्वामी की है। और वो चित्र किसका है? ओह स्वामी, प्रियतम, कितना तेजस्वी मुख है। आज मेरी चिर संचित अभिलाषा पूर्ण हुई। अब मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे। जब तुम सामने आओगे तब तो शायद लज्जा के मारे में कुछ बोल भी नहीं सकते। कौन?
3: स्वागत है।
1: ओह, आप यहाँ?
3: हाँ प्रिय, मैं यहाँ कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। पर ये घूंघट किस लिए? मैंने तो तुम्हारे रूप की एक झलक भर देखी है, हृदय नहीं भरा। अच्छा, तो मैं ही इस चंद्रमुख पर से इन घूंघट रूपी बादलों को हटाए देता हूँ। ऐसे
1: ना,
3: हाँ
1: ना।
3: अब ठीक है, देख रहा हूँ रूप का सागर, विधाता के हाथों खड़ी हुई सौंदर्य की प्रतिमा, पवित्रता और कोमलता की प्रत्यक्ष देवी मीनाक्षी, सुहाग बिंदिया और शशि मुख पर ये मोती की नथ, मानो साक्षात भगवती का ही पदार्पण हुआ है मेरे घर में। मेरा अपनापन, मेरा व्यक्तित्व जैसे तुम में विलीन होता जा रहा है। मैं नहीं हूं, मैं और तुम।
1: स्वामी, मेरे देवता,
3: सच
1: मैं तुम्हारी पुजार।
4: सभी प्रजाजनों को सूचित किया जाता है,
3: तुम सच मुगल बादशाह सुंदर हो,
4: नगर की राजकुमारी
3: चंद्रमुखी, जी चाहता है कि एक तक तुम्हें देखता ही रहूं।
4: नगर के राजा ने
1: स्वामी
4: हमारे महाराणा से
1: पागलपन
4: सहायता की
1: प्रार्थना की
3: है। महाराणा के तुम कुछ कहती जाओ और मैं सुनता रहूं। मेरी रानी, मैं तुम्हारे सौंदर्य सागर के यौवन रूपी भंवर में फंस गया हूं।
1: स्वामी,
3: कमल के कोमल संपुट में बंद भ्रमर की तरह हैरान हूँ, मुक्त हूँ।
1: सुना आपने?
3: इधर
1: स्वामी।
3: प्रिय,
1: छोड़िए, छोड़िए मेरा हाथ।
3: प्रिय, मुझसे क्या अपराध हो गया है जो तुम इतनी प्रसन्न हो और अचानक दूर खड़ी हो गई?
1: स्वामी सुनिए नगाड़े की ध्वनि, राजपूत तो इसका मतलब अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए मैं पीछे हट गई।
3: ओह मेरी हाड़ी रानी, मेवाड़ भूमि वीरों से शून्य नहीं है, और फिर मेरे लिए तो राणा जी का विशेष दूत आएगा।
1: जानती हूँ,
5: पर देश की आन पर मर मिटने वाले किसी की प्रतीक्षा नहीं किया करते।
3: प्रियतम,
5: मेरी प्रार्थना है कि आप किसी की प्रतीक्षा न करें और तुरंत अपने कर्तव्य का पालन करें।
3: प्रिय, जीवन में प्रेम का महत्व किसी भी वस्तु से कम नहीं। कम से कम इस मधु यामिनी को तो बीत जाने दो। विधाता भी कैसा क्रूर है, जीवन के इस मधुर हास्य में कठोरता का अठास और संगीत की मधुर लहरी में ये भयानक चीत्कार जैसा क्षण मेरे ही भाग्य में था। तुम्हें जी भर कर निहार भी न सका, एक बार हृदय से लगा भी न सका। सेज पर सजी हुई गुलाब की पंखुड़ियां भी तुम्हारी प्रतीक्षा में मुरझा जाएंगी।
5: स्वामी, ये केवल आपका मोह और वासना है।
3: रानी,
5: प्रेम प्रेरणा देता है, मोह विचलित करता है।
3: रानी,
5: स्वामी विचलित हो रहे हैं क्योंकि मोह ने प्रेम को बंदी बना रखा है।
3: हाँ रानी, मैं विचलित हो रहा हूँ। मैंने अब तक यौवन के उद्दाम वेग को केवल तलवार की धार पर ही रोक रखा था, पर तुम्हारे रूप और यौवन ने उस वेग को इतना तीव्र कर दिया है कि उसे रोकना असंभव सा हो रहा है। अपने प्राणों को अब तक मैं बर्छों और भालों की नोक पर ही उछालता फिरता था, पर आज जैसी घुटन और उलझन कभी ना हुई थी। क्या करूं?
5: तो ठीक है स्वामी, आप चूड़ियां पहनकर यहां बैठिए और मैं सैनिक वेश में युद्ध भूमि में जाती हूँ।
3: रानी ठहरो,
5: आप इस पुष्पशैया पर बैठकर अपनी घुटन का उपचार करिए, मैं आपकी इस कायरता के पाप का प्रायश्चित करने जाती
3: हूँ। ठहरो रानी,
5: ये हरावंश की तलवार है जिसने हर संकट में हमारी रक्षा की है, मैं जाती हूँ।
3: रानी ठहरो।
5: नहीं
3: रानी, सुनो तुम।
5: नहीं सामन, नहीं, मैं जीते जी अपने आप पर यह कलंक नहीं आने दूंगी कि जब सहस्त्रों युवक एक अबला की सतीत्व रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहे थे, उस समय सामंत रंग महल में रंगरेलियां मना रहा था। रूप और यौवन की आंधी में सामंत की वीरता एक तिनके की भांति उड़ गई। अपनी प्रियतमा के केश पुष्पों की सुगंध में मदहोश सामंत तलवारों की खनखनाहट से भयभीत हो गया। नहीं, नहीं सामंत, नहीं, मैं आप पर एक कलंक का टीका नहीं सह।
3: रानी शांत हो और जरा यहाँ बैठो।
5: छोड़िए मुझे, मैं ये तलवार लेकर आलमगीर की सेना पर टूट पड़ूंगी। एक राजपूत बाला के लिए मैं अपने प्राणों की बलि दे दूंगी। कोई पूछेगा तो कह दूंगी कि सामन की वीरता कायरता के बंदी खाने में पड़ी तड़प रही है।
3: नहीं नहीं नहीं, ठहरो रानी, तुम चली जाओगी तो मुझे विदा कौन करेगा?
5: तो फिर शीघ्रता कीजिए स्वामी, आइए मैं आपके भाल पर रक्त तिलक कर दूं। स्वामी विजयी हो और शीघ्र लौटे, यही मेरी शुभकामना है।
3: रण क्षेत्र में भी मैं तुम्हारी मनोहर छवि न भूल सकूंगा। तुम मेरी रग रग में समा गई हो, मैं तुम्हारे इस निर्दोष अछूते और अतृप्त यौवन को देख रहा हूँ। सोचता हूँ यदि मैं जीवित न लौटा तो तुम्हारा ये रूप यौवन।
5: ऐसा न कहिए प्रियतम, यदि कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो ये दासी स्वर्ग में आपके स्वागत के लिए पहले ही उपस्थित हो जाएगी। आप ऐसे विचार हृदय से निकाल दीजिए और निश्चिंत होकर रणभूमि में जाइए।
3: अच्छा प्रिय, विदा। जय भवानी।
5: जय भवानी। विजय प्राप्त कर शीघ्र आइए, मैं विजय मान लिए आपकी प्रतीक्षा करूंगी। भवानी आपको यह शौर्य विजय दे।

कितनी सुंदर है हाड़ी रानी, कितनी मस्ती और अल्हड़पन है उसके अंग संचालन में। पात्र में भरी हुई मदिरा के समान इठलाता हुआ उसका यौवन, जैसे मदिरा की मादकता को भी चुनौती दे रहा हो। एक बार गले से भी न लगा सका, क्या करती होगी इस समय? कदाचित गुलाब की पंखड़ियों से सजी सेज पर बड़ी तड़प रही होगी। अगर मैं जीवित न लौटा तो उसका ये यौवन रूप

0: नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, किसी को भेजना ठीक होगा, कुछ निशानी भी मांग लाएगा। रण सिंह उपयुक्त है इस कार्य के लिए, उसी को भेजता हूं।
1: रण सिंह का प्रणाम स्वीकार हो रानी जी।
2: कहिए रण सिंह जी, क्या समाचार लाए हैं?
1: महारानी, सामंत बड़े विफल हैं। उन्होंने मुझे आपके पास कुछ सेनानी लाने भेजा है, साथ ही ये संदेश भी दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर जौहर व्रत करने से आप ना हिचके।
2: ओह, अभी तक प्रियतम का मोह नहीं टूटा। एक क्षत्रानी अपनी मान मर्यादा की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। लीजिए, ये मेरे पितृकुल की तलवार है। निशानी के रूप में उन्हें ये तलवार देकर कहिएगा कि दोनों वंशों की लाज अब उनके हाथ है।
1: जो आज्ञा।
2: तारा, आज 3 दिन हुए, युद्धस्थल का कोई समाचार नहीं मिला।
3: वाह रानी जी, जब रणसिंह आते हैं तब आप क्रोधित हो उठती हैं, और जब युद्ध का कोई समाचार नहीं मिलता तब व्याकुल होकर रोने लगती हैं।
2: तारा, तारा देख तो कोई आ रहा है।
3: रणसिंह जी आए हैं।
1: रानी जी, रणसिंह का प्रणाम स्वीकार हो।
2: रणसिंह, युद्ध भूमि का क्या समाचार है?
1: महारानी जी, युद्ध किसी भी समय आरंभ हो सकता है। सामंत ने मुझे अंतिम बार आपसे कुछ सेनानी मांग लाने को कहा है। उनका शरीर रणभूमि में है पर मन आपके ही पास मंडरा रहा है।
2: रणसिंह, एक अबला के सतीत्व को संकट में देखकर भी सामंत मेरे ही बारे में सोच रहे हैं। इस हार जाम की पुतली के मोह में उनकी सारी एकाग्रता नष्ट हो रही है। उनकी इस मानसिक कायरता का कारण मैं हूं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा तो फिर यही ठीक है। रणसिंह, प्रतीक्षा करो, मैं आज तुम्हें अंतिम निशानी दूंगी, ऐसी निशानी जो कभी भी किसी भी पत्नी ने अपने पति को न दी होगी। विजय मार। तारा, तारा
3: आई। आई रानी जी, आपने मुझे बुलाया।
2: हाँ तारा, मेरी प्यारी सखी, तूने मेरी बहुत सेवा की है ना, आज अंतिम बार मैं तेरी सहायता चाहती हूँ।
3: ये क्या कर रही है?
2: इधर आ, इधर आ, मेरी मांग में सिंदूर भर दे। मेरे केशों को सुगंधित पुष्पों से सजा दे, पैरों में बिछिया पहना और मावर लगा। जल्दी कर तारा।
3: रानी जी, रानी जी, मुझे छोड़कर मत जाओ।
2: पगली, रोती है, क्षत्रानी होकर रोती है। शिखा ताकर, रणसिंह मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ला, ला सिंदूर ला। अरे, तेरे हाथ कांप रहे हैं, जस्तनी ठीक से मांग तो भर दे। हाँ, ऐसे दर्पण ला, दर्पण इधर ला। अरे अरे वाह, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। जब मेरा विवाह हुआ था तब सब कहते थे कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, पर आज मैं कैसी लग रही हूँ ये तो तू ही बता सकती है। बता, बता ना। अरे फिर रोती है। ला, ला तारा, मेरे विवाह का जोड़ा और मुझे पहना दे। सुन तारा, एक बार तूने ही कहा था ना कि सामंत की विजय माल का सबसे सुंदर पुष्प मैं हूँ। हाँ, आज वही पुष्प बनने में जा रही हूँ। स्वामी के जोड़े करवोलत वक्ष पर ये मेरा शेष रूप एक पुष्प खूब खिलेगा, खूब खिलेगा। बस बस अब बहुत विलंब हो रहा है, तारा जल्दी कर ला कृपाण। ठहरिए रानी जी, मुझे आपके चरण स्पर्श तो कर लेने दीजिए। बस बस अब समय नहीं है तारा, अब समय नहीं है, मेरा भग्न शेष रण सिंह को दे देना। और कहना कहना रानी ने यह विजय मान समझ के लिए दी है, विजय मान।

0: तारा, तुम रो क्यों रही हो?
1: रण सिंह जी, लीजिए, हाड़ी रानी ने सामन के लिए ये विजय माल भेजी है।
0: ये कैसी विजय माल है जो इस तरह थाली में ढांक कर लाई हो?
1: आप स्वयं देख लें और सामन तक शीघ्र पहुंचा दें।
0: ये क्या, ये रानी के शीश की विजय माल? धन्य हाड़ी रानी, तुम्हारा ये बलिदान युग युग तक भारत के नरनारियों को प्रेरणा देता रहेगा। जाता हूं तारा।
2: अभी तक रण सिंह नहीं आया और इधर आलमगीर अपनी विशाल सेना के साथ आगे बढ़ा आ रहा है। उसे रोकने का कोई उपाय नहीं सूझता। हाड़ी रानी नस नस में बस गई है, क्या करूं?
0: सामंत, क्या मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो सकता हूं?
2: आओ आओ रण सिंह, मैं बड़ी उत्सुकता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कहो, हाड़ी रानी कुशल से तो है? मेरे लिए कुछ सेनानी दी उन्होंने?
0: हाँ सामंत, रानी जी ने आपके लिए ये विजय माल भेजी है।
2: अच्छा,
0: इसे गले में पहनकर आप झूम पड़ेंगे।
2: सच?
0: और जो भी इस अनोखी विजय माल को देखेगा वो अपने प्राणों की बाजी लगा देगा। इस विजय माल के साथ ही हाड़ी रानी ने एक निवेदन भी किया है।
2: वो क्या?
0: कि इस युद्ध में हम सब का एक ही नारा हो और एक ही लक्ष्य हो, विजय या मृत्यु।
2: हमें सब स्वीकार है, पर सेनानी तो दिखाओ।
0: आगे बढ़िए सामंत, और इस ढके हुए थाल को स्वयं खोलकर रानी की दी हुई इस निशानी से अपने वक्ष स्थल को सुशोभित कीजिए।
2: रण सिंह जी, क्या लाए हो?
3: रानी का भग्न शीश, ये क्या किया तुमने रण सिंह?
0: मैंने नहीं, आपने ही ये किया है। रानी के मोह में अंधे होकर आपने मुझे बार बार सेनानी लाने को भेजा। रानी आपकी दुविधा को पहचान गई और आप पर कोई कलंक न लगे।
3: रण सिंह, मैं समझ गया, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं ही दोषी हूं। सचमुच मेरा पतन हो गया था, रानी ने मुझे बचा लिया।
2: हाड़ी रानी, तुम साक्षात भवानी थी, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, नहीं पहचाना। इन लहराते हुए सुंदर केशों की माला बनाकर मेरे गले में पहना दो रण सिंह। मेरी प्रियतमा का शीश मेरी छाती पर लटकने दो। मेरे मृत शरीर को रानी के साथ एक ही चिता पर रखकर भस्म कर देना। अब मेरी आंखों पर से मोह का आवरण हट गया है। भूखे सिंह की तरह हम अपने शत्रुओं पर टूट पड़ेंगे। साथियों, आगे बढ़ो,
4: विजय हमारी है।
0: बादशाह की सेना उल्टे पैर भाग रही।
2: सच रण सिंह, हम विजयी हुए?
0: हाँ सामंत, सच। मुगल बादशाह भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, शायद वो भी रणभूमि छोड़कर भाग निकला। सामंत,
2: शत्रु भाग गया। जय भवानी, हम विजयी हुए, हम विजयी हुए।
0: मैं जाता हूँ,
3: मेरी प्रियतमा मेरी प्रतीक्षा में होगी।
0: मैं जाता हूँ। सामन, आप कहाँ जाने जा रहे हैं? सामन, ठहरिए, ठहरिए सामन।
3: रानी सुना तुमने? हम विजयी होकर आ गए, हम लौट कर आ गए। आओ हमारा स्वागत करो, टीका लगाओ, आरती उतारो, रानी शीघ्र आओ। तारा, ओ तारा।
1: जी सामंत।
3: रानी जी कहाँ हैं? उनसे कहो कि हम विजयी होकर आ गए हैं, विजय माल लेकर जल्दी आए।
1: सामंत, रानी जी की विजय माल तो आपके गले में पहले से ही सुशोभित है।
0: हाँ, रानी, मेरी हाड़ी रानी, मेरी विजय माल।

विजय माल। अभी आपने रवि शर्मा लिखित ये नाटक सुना, प्रस्तुतकर्ता बी डी माथुर।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को है। इस वक्त आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रमों का प्रसारण।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक युवा अभिनेता हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि युवा अभिनेता, लेखक, गायक और संगीतकार देवेंद्र अहिरवार। बहुत स्वागत देवेंद्र।
3: बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।
2: देवेंद्र, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी जो पहचान बनी है वो 120 बहादुर से बनी है।
3: जी।
2: ये फिल्म आपको कैसे मिली थी?
3: ये फिल्म के पहले एक बहुत लंबी कहानी है। इस पहचान तो ऐसे नहीं है कि इस फिल्म से बनी है, क्योंकि मैं लगातार थिएटर कर रहा था। लगभग 15-20 सालों से मैंने काम किया है। मैं काफ़ी छोटा तब से काम कर रहा हूँ और एक ऐसे बोल सकते हैं कि एक बहुत एक बड़ी ऑडियंस को जानने का मौका मिला कि इस नाम का कोई बंदा है कुछ काम करता है। तो ये फिल्म मुझे जैसे सबको मिलती है, क्योंकि हम बाहर के लोग हैं तो ऑडिशन से ही मिलती है। सो मैं ऐसे म्यूजिक में हूँ, मेरा गाने गाने का काम है, या मैं एक्टिंग करता हूँ या नाटक बनाता हूँ। तो कास्टिंग डायरेक्टर जो अनमोल आहूजा है, उनको मालूम था कि मैं गाना गाता हूँ। तो एक कैरेक्टर था 120 बहादुर के लिए, ऑडिशन हुआ कि एक गाना गाने वाला लड़का चाहिए। तो उन्होंने अच्छा। मुझे ऑडिशन लिया, पर वो उस कैरेक्टर के लिए मैं बाद में फिट नहीं बैठा, मेरा लुक नहीं जा रहा था और मेरा काम, मेरा ऑडिशन अच्छा हुआ था। तो उनको लगा कि इसको हम फिल्म में इस वाले कैरेक्टर के लिए नहीं रख सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक दूसरे कैरेक्टर के लिए टेस्ट किया जिसका नाम था बैंगन। तो उस बैंगन कैरेक्टर के लिए फिर मैं फाइनल हुआ। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, खासकर बुंदेलखंड के पूरे एरिया ने, मध्य प्रदेश के पूरे एरिया ने और पूरे देश के लोगों ने फिर बहुत ज़्यादा प्यार दिया और मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ।
2: बिल्कुल, लेकिन आपकी यात्रा यहाँ से शुरू नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि सीधे चलते हैं बुंदेलखंड की तरफ। आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका बचपन कैसा था और अपने माता पिता के बारे में बताइए।
3: जी। सो मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरे गाँव का नाम है पहरा।
2: क्या बात।
3: सो मैं बहुत छोटा था तब मैंने एक रेडियो पे गाना सुना था कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, इश्क और भी गहरा हुआ है। तो मैं काफी छोटा था और मैं सोचता था मेरे गांव का नाम फिल्मों में आता है। मेरे गांव के नाम पे गाने बने हुए हैं। हाँ। तो तभी मैंने सोचा था कि मैं, बच्चे के दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो मैं फिल्मों में जाऊंगा।
2: अरे वाह।
3: मुझे पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है, सच में ऐसा होने वाला है। तो एक ऐसी छोटी सी कहानी है। और मैं रेडियो लगातार सुनता था, विविध भारती लगातार सुनता था, छतरपुर आकाशवाणी मैं बहुत सुनता था, हेलो फरमाइश मैं सुनता था। रेडियो मेरे साथ ही रहता था, मेरा दोस्त हुआ करता था एक तरीके से, क्योंकि मेरे पापा भी गाना गाते थे तो उनको भी शौक था। देशर पटरिया के गाना और उर्मिला पांडे जी के गाने और भी बहुत सारे लोगों के गाने मैं सुनता था। तो ऐसा एक जीवन बीता। और मेरे घर के बाहर एक चबूतरा था। चबूतरे पे शाम को लोग अपने खेतों पे खाना खाने के पहले, डिनर करने के पहले वहाँ पे बैठते थे और फिर वो वहाँ पे कुछ गाने गाते थे 1-2 घंटे और फिर अपने खेतों पे जाते थे सोने के लिए कि जानवर उनके खेतों में ना घुस पाए। सो पूरा किसान परिवार, एक छोटी सी बस्ती मैं, आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। सो उन लोगों में मैं और मेरा भाई लखन भी, दो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे जो बैठते थे। और कई दफ़ा लोग हमसे इरिटेट भी होते थे कि बच्चे बहुत ज़्यादा बैठते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते नहीं हैं। तो फिर क्या हुआ कि मंडली ने सोचा कि इस मंडली को थोड़ा बड़ा करते हैं। तो उस समय ऐसा होता था कि कोई गलत करता था तो उससे वो लगाते थे, जुर्माना लगाते थे।
2: अच्छा अच्छा।
3: तो ऐसा करके होता, तो किसी ने कुछ गलत किया होगा तो उन्होंने कुछ पैसा दिए, 8-10 हज़ार रुपये उधर से आए। तो उन्होंने सोचा इस पैसे का क्या करें। हाँ। तो उन्होंने सोचा अब हारमोनियम ले लेते हैं।
2: अरे वाह वाह।
3: तो उन्होंने हारमोनियम ले लिया, पर हारमोनियम बजाना तो किसी को नहीं आता था, तो अब बड़ा असमंजस हो गया। तो रात को बैठते थे पर हारमोनियम रहता था, बजाते कोई नहीं था। हाँ। तो फिर वो हमारा घर जस्ट बगल में था तो हमारे घर में रखते थे वो हारमोनियम। तो मैं और मेरा भाई स्कूल से आके हम 2-3 घंटे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। वो ढोलक बजाता था, मैं हारमोनियम बजाता था और ऐसे बजाते बजाते बजाते बजाते सडनली थोड़ा थोड़ा गाने के आसपास में दिखने लग गया लोगों को कि गाने के आसपास से, गाने के आसपास है, कोई भी गाना गाता है तो उसके आसपास ही बजा लेता है। तो ऐसे करके मैं उस पहला जो मेरा ग्रुप था, जो मेरा पहला परफॉर्मेंस था, वो गांव के जो फोक आर्टिस्ट हैं, जो मंडली है, जिनमें मेरे पिताजी
2: चबूतरे में हुआ,
3: चबूतरे पे ही मैंने उसको एकदम से ऐसे शुरू किया और फिर स्कूल में गाने गाने शुरू किए। सो मैं ये बोलूँगा कि मेरे पिताजी भी किसान हैं, मेरी माँ भी किसान है और मैं बहुत ही प्राउडली ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। जिस तरह से हम प्राउडली बोल पाते हैं ना कि हम फौजी खानदान से हैं, ऐसे जय जवान जय किसान वाले जो पूरी बात है, अगर हम उन साथ में बोलें तो हम, बहुत सारे लोगों को एक क्राइसिस रहता है कि बोलने में कि हम किसान परिवार से, तब मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं किसान परिवार का एक लड़का हूँ।
2: कितने दूर है छतरपुर से ये गाँव?
3: छतरपुर से 24 किलोमीटर दूर है ये, बसारी पन्ना रोड पर पड़ता है, तो बसारी के आगे है पहरा।
2: ओके।
3: बहुत ही छोटा सा गाँव है सर।
2: कितनी क्लास तक वहाँ पढ़े आप?
3: मैं वहाँ पे पढ़ा 8वीं क्लास तक, उसके बाद मैं बारहवीं तक पढ़ा बसारी में। बसारी में पढ़ते हुए एक फिल्म आई थी उस समय जिसका नाम था जीजाओरे, बुंदेली फिल्म थी। उसमें एक एक्टर थे हिमालय यादव जो उसी गांव के थे, तो वो लाइक वो बहुत पॉपुलर हो गए थे उस फिल्म से। उस फिल्म को बहुत प्यार मिला, हर घर में सीडी हुआ करती थी उस समय तक, जीजाओरे की सीडी, झूमो नाचो गाओरे, खुशियां मनाओ रे, पता नहीं आ रे भैया जी जाओ रे, ऐसा कुछ गाना था उसका, टाइटल सॉन्ग था उसका।
2: अच्छा, जब ये सब बातें हो रही हैं तो मुझे ये भी लग रहा है कि वो जो चबूतरे पर गाने होते थे उसमें से कोई गाना याद है?
3: उस पे ऐसे कुछ कुछ भी गम्मतें होती थी, गाने होते थे, लाइक फागे होती थी।
2: हाँ।
3: तो उसी तरह से कि कहाँ ले आए राजा पहाड़िया मेरे, कहाँ ले आए ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, उपटा लगत उंगरिया मेरे कहाँ ले आए।
2: उपटा लगत उंगरिया, क्या बात है,
3: कहाँ ले आए राजा पहाड़िया में,
2: मतलब बुंदेलखंड,
3: लाइक कोई लव मैरिज करके किसी को डिफिकल्ट शहर में ले जाए, ये गाना मतलब इनडायरेक्ट रूप से वैसा है। ये पहाड़िया को बड़ो बड़ो चारो, ये पहाड़िया को बड़ो बड़ो चारो, लंपा लगत चुनरिया मेरे कहाँ ले आए, कहाँ ले आए राजा पहाड़िया मेरे कहाँ ले आए। सो वही है, लाइक मैं किसी लड़की को प्रॉमिस करूँ कि मैं तो बम्बई रहता हूँ और फिर मैं वहाँ छोटे से कमरे में रख दूँ, तो उसी सिचुएशन को एक अलग तरीके से कवि, बुंदेली बुंदेलखंड के जो लोग हैं, जो लोग कवि हैं, लोग गायक हैं, वो कैसे उसको कैप्चर करते हैं और कैसे उसको करते हैं,
2: तो मजा आ गया मुझे,
3: बहुत ही मजा आ गया, बहुत मजा। तो यही था फिर बुंदेली, फिर जब बसारी में पढ़ता था, हिमालय भैया से मिलना हुआ, हिमालय यादव जी से मिलना हुआ, उस समय बसारी में एक फेस्टिवल होने लग गया था, उसका नाम था बुंदेली उत्सव। तो बुंदेली उत्सव बहुत बड़ा फेस्टिवल होता, फरवरी में लगभग एक महीना 21 दिन चलता था वो।
2: अच्छा।
3: और उस समय तो क्योंकि जो वो कराते थे शंकर प्रताप सिंह बुंदेला जी, मुन्ना राजा जी कराते थे उसको, तो पूरे एमपी के फोक आर्टिस्ट सेलिब्रिटी आते थे उधर। तो वो पहली बार मैंने एक नाटक किया उस ग्रुप में जुड़ के, हिमालय भैया के ग्रुप में जुड़ के, और नाटक का नाम था ददुआ भाव दिल्ली में बर्बाद।
2: अरे
3: और मैं नाइन्थ क्लास में पढ़ता था उस समय,
2: ठीक है।
3: उस नाटक में मैं रेल का डिब्बा बना था, हम छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे हमारे, छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे, लाइक
2: तो बुंदेली में था ये।
3: हाँ, बुंदेली में नाटक था। अब मुझे कोई भी डायलॉग याद नहीं है क्योंकि मैं एक तो पहला नाटक था मेरा। तो उस ग्रुप से जुड़ गया और फिर मुझे बहुत मजा आया, और मैंने अभी आपसे बात भी किया इस तरह का, जो जो मुझे वो सर्कल में बैठते थे लोग, एक दूसरे की आंखों में बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, उस तरह का एक भाव मुझे लगता था। तो मुझे पता चला कि मैं शायद इस फील्ड में ही जाना चाहता हूँ। तो फिर ऐसे ही शुरू हुआ सर, मैं जल्दी से इसको वो कर लेता हूँ। फिर खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई, खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, हमारे घर के पास ही है खजुराहो, 30 किलोमीटर दूर ही है। सो खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई, राष्ट्रीय नाट विद्यालय NSD की एक वर्कशॉप थी, और उसको डायरेक्ट करने आए थे इश्तियाक आरिफ खान, जो कि काफी बड़े एक्टर
2: हैं, पन्ना के ही हैं,
3: जो पन्ना के ही हैं। तो वो NSD से पास होने के बाद वो वर्कशॉप के लिए आए थे, हमको पूछा गया कि खजुराहो में वर्कशॉप हो रही है। तो खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई खजुराहो, अंग्रेज आते हैं, गोरे, 5-star होटल, तो हमें उधर पहुंचना है कुछ भी करके। तो घर में बोला कि एक वर्कशॉप हो रही है, तो उन्होंने बोला क्या क्या चाहिए पड़ेगा, तो हमने बोला कि उन्होंने बोला 2-2 किलो चावल लेके चलना है, 1 किलो दाल लेके चलनी है, थोड़ा नमक लेके चलते हैं, हल्दी मिर्ची लेके चलनी है, क्योंकि वहाँ पे एक महीने रहना है। तो शिल्पग्राम में एक वर्कशॉप हो रही थी और उसमें हमने काम किया, और वो एक नाटक उन्होंने कराया इश्तियाक जी ने, इन्हें कहीं देखा है, इन्हें कहीं देखा है, तो एक ऐसे कैरेक्टर जिनको हमने कहीं ना कहीं देखा है, उसका नाटक उन्होंने बनाया था, और वो नाटक बहुत अच्छा बना, और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ कि इतने छोटे से हैं वो, क्यूट से हैं, और उन्होंने इतने 20-25 लोगों को, पूरे देश के लोगों को एक नाटक में पिरो दिया और इतना अच्छा काम निकल के आया।
2: इश्तियाक भाई की एक खासियत और है कि वो बहुत म्यूजिकल आदमी है।
3: हाँ, और म्यूजिकल प्ले था वो, और म्यूजिक में मेरा रुझान भी था, तो वो भी मेरे से काफ़ी खुश थे। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी हो जाए, उनसे पूछा कि सर आपने मैं मुझे ये करना है या मैं कहाँ सीखूँ, तो उन्होंने बोला था कि मैं NSD से पढ़ा हुआ हूँ, तुम भी NSD जाओ अगर तुम्हें करना है। तो फिर मैंने तब लिख लिया था डायरी में कि मुझे कुछ भी करके NSD पहुँचना है,
2: डायरी में लिख गया।
3: हाँ, तो मैं लिख लिया अभी मुझे पहुँचना है NSD। तो फिर वहाँ
2: आगे की कहानी थोड़ा आगे सुनाएंगे।
3: जी जी,
2: यहाँ एक फिल्मी गाने की जगह बनाते हैं।
3: हाँ जी जी,
2: तो जिस दौर में हम हैं, जिस दौर में आप ये सब कर रहे थे कि आप वो बड़े गाँव में गए और उसके बाद खजुराहो हो गए, उस दौर का कोई गाना याद आता हो तो वो गाना यहाँ बजाए। गाया जाए।
3: एक फिल्म थी वो शोला और शबनम गाना सुनता है, तू पागल प्रेमी आवारा, दिल तेरी मोहब्बत का मारा, तुझे पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे। फिर म्यूजिक आता जो आप कह रहे थे ना, ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए,
2: क्या बात है।
3: तो ये कुछ गाने जो ऐसे उस समय के याद है मुझे,
2: बिल्कुल वो एक जहन में बसे होते हैं और ये उस दौर की याद लेके आते हैं। जी जी
3: जी, हमने बहुत देखा है फिल्म को,
2: वाह
3: बहुत देखा है फिल्म को हम। मैं तो करण अर्जुन बहुत देखी, ये देखा, पता नहीं मिथुन की फिल्में देखी, टड़ी पार जैसी फिल्में देखी,
2: गुंडा,
3: जो भी सीडी पे जो भी मिलता था देखते थे, जो भी मिलता था देखते, वो हमारे लिए बेस्ट फिल्म होती थी।
2: वाह, ये गाना सुनते हैं।

0: देवेंद्र, आपसे बातें हो रही हैं और हम तकरीबन 90s के जमाने में हैं और ये वो दौर है जब आप एक नाटक करते हैं बुंदेलखंड फेस्टिवल में और फिर इश्तियाक आरिफ खान साहब से आपका परिचय होता है, जो तब तक NSD में हैं और तब तक बंबई आके उन्होंने अपने जलवे नहीं दिखाए और वो एक शिविर लगाते हैं और वहां से आपको एक राह दिखती है।
1: जी जी।
0: एक लड़का जो पहरा गांव का है और जिसको बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा जिसका परिचय नहीं है, उसका परिचय इन सब चीजों से होता है और वो अपनी डायरी में लिख लेता है कि मुझे कैसे भी करके
1: यहाँ पहुंचना है।
0: उसके आगे क्या होता है?
1: उसके आगे मैं फिर स्कूल के बाद कॉलेज में पहुंचता हूँ तो अब मुझे तो कोई लोग चाहिए कि भाई ये काम करने वाले लोग कहाँ हैं, अभी मुझे 3-4 साल और पढ़ना पड़ेगा है ना, तब जाके मैं वहां पे जाऊंगा। क्योंकि मैं वर्कशॉप के निकलने के बाद मैं दिल्ली आया घूमने के लिए कि मुझे पहले वो जगह देखनी है जहाँ मुझे पढ़ना है।
0: तो मंडी हाउस चले गए।
1: मैं पहले किसी दोस्त के साथ जो किसी बस्ती में रहता था, मजदूर फैमिली का, मजदूरी करने जाते थे उनके पिता जी, तो मैं उस दोस्त के साथ दिल्ली आया और दिल्ली में मैं ढूंढते ढांढते उस बच्चे के साथ में, और मैं खुद बच्चा हूँ अभी, मैं 9th-10th क्लास में पढ़ता हूँ, और मैं NSD की तरफ बढ़ते बढ़ते मैं वहाँ पहुँचा। उसमें मेट्रो बन रही थी और मैंने पहली बार देखा कि वो ऐसी सीढ़ी है जिसपे पैर रखते अपने आप ऊपर पहुँचा देती है। मेरे लिए बड़ा चमत्कार था। मैं घर जाके लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ऐसी सीढ़ी बन चुकी है धरती पे कि आपको चढ़ना नहीं पड़ता, आप अपने आप ऊपर पहुंच जाओगे। और मैं ऐसे हो गया। फिर मैं NSD के गेट पे पहुंचा और मैं NSD, मैंने देखा कि ये लिखा है राष्ट्रीय नार विद्यालय, मतलब ये वो जगह है। और मैंने वहां से निकलते हुए लड़के लड़कियों को देखा और वो बहुत ही फ्रेंडली है, किसी ने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है, कोई डायलॉग पहन रहा है, कोई कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा है, और मैं देखा कि भाई ये तो अलग दुनिया है, ये तो कमाल की दुनिया। तो मैं गेट में घुसने को हुआ तो एक उस समय एक गार्ड हुआ करते थे, उनका नाम था धुरंधर जी, रिटायर्ड फौजी थे वो
0: जी।
1: तो मैं घुसने लगा, उन्होंने बोला क्या हुआ, मैंने बोला कि मेरे को यहाँ पढ़ना है। बोले कौन सी क्लास में पढ़ते हो, मैंने कि मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ। तो कह रहे हैं यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कहा अरे अब तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा यार। तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। तो उन्होंने बोला कि अरे ऐसे बहुत लोग आते हैं बोलने के लिए, पहले अभी 10 क्लास में पढ़ता है, अभी तू ग्रेजुएशन करेगा फिर तेरा मन बदल जाएगा, पता चला कुछ हो जाएगा, तू नौकरी लग जाएगी तो तू नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं नहीं सर मैं आऊँगा। मैंने बोला कि मैं आऊंगा, मुझे आना ही है इधर। तो मेरे पास उस समय नोकिया 2626 फोन हुआ करता था।
0: हाँ, वो छोटा वाला
1: फोन, तो उसमें 1 मिनट की रिकॉर्डिंग होती थी।
0: हाँ।
1: तो मैंने उनसे बोला कि मुझे क्या क्या करके आना है,
0: बस
1: रिकॉर्ड कर दो, एक मिनट ही मेरे पास में, इससे ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास में।
0: हाँ।
1: तो उन्होंने मुझे बताया कि 6 नाटक चाहिए जिसमें तूने एक्टिंग की है।

0: जस्टिस किया हो, तीन बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया होना चाहिए जिनके लेटर्स लिखा होगे, जिनमें लिखा होगा कि वो तुमको जानते हैं, तुमने उनके साथ काम किया है और वो तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं,
1: अरे गजब,
0: तो तुम अनुशासित हो,
1: एक मिनट में सब बोल
0: सब बता दिया, ये करके आना पड़ेगा, तब तुम फॉर्म डाल सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग लेके, मैं रोज सुनता था मुझे ये करना है, मैं वापस आया, मैंने अपनी पढ़ाई की, कॉलेज गया, फिर मैंने सोचा यार यहाँ पे कोई नाटक ही नहीं करता उस तरह से, तो मैं ही नाटक करूंगा।
1: तो मैं कॉलेज में, इस शहर में था
0: ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में महाराजा कॉलेज, तो वहां पे मैंने एक ग्रुप बना दिया और छोटे मोटे नाटक करने लगा, यूथ फेस्टिवल में नाटक करने लगा, और पता चला कि छतरपुर में कोई इफ्टा नाम का एक संस्था है जो एक्टिव है, जो उस समय शिविन शुक्ला जी चला रहे थे, अभी भी वही संभालते हैं उसको, तो उनसे जुड़ गया, फिर उनने जो भी नाटक कराया उनमें नाटक करने लग गए, बकरी नाटक किया, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक किया, और भी नाटक जो भी वो कराते थे उससे जुड़ गए, और वो रिकॉर्डिंग सुनता रहता था कि ये तो करना ही भाई, अभी एक नाटक हुआ है, वो नाटक हुआ, फिर ये भी सोचता था कि जिस लेवल के हम नाटक कर रहे हैं, इस लेवल के नाटक के उसमें काउंट होंगे, क्योंकि हम तो कुछ भी कर देते हैं,
1: बिल्कुल
0: कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कहीं बोल दिया ये इम्प्रोवाइज करके कर दिया, बुंदेली में कुछ भी बोल दिया कर दिया। तो फिर सोचा ग्रेजुएशन के दौरान कि भाई ऐसे चलेगा नहीं, भोपाल निकलना पड़ेगा,
1: अच्छा
0: कुछ भी करके अब इस जगह से निकलना पड़ेगा, अब भोपाल जाने के लिए किसी से मिलना पड़ेगा, आपको कोई जानता हो, आपको कोई भी नहीं जानता सर, एक बंदा नहीं है जिससे थिएटर आया आर्ट फील्ड से जिससे भोपाल में किसी को जानता हो, तो एक उसी जो वर्कशॉप हुई थी इश्ताक जी वाली, उसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे हरीश भैया, हरीश विश्वकर्मा उनका नाम था, उन्होंने एक नंबर दिया कि हेमंत देवलेकर नाम के एक बंदे हैं, हेमंत भाई
1: बिल्कुल,
0: हाँ आप जानते होंगे बहुत बड़े कवि हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल, विहान ग्रुप,
0: हाँ विहान ग्रुप अभी वो चलाते हैं, कि एक मेंबर हैं वो, और उनका नंबर दिया उन्होंने, और उन्होंने बोला कि ये तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि यही सज्जन पुरुष हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनको फ़ोन करता था, वो मैं पागल कर देता, भैया मुझे यहाँ से निकलना है, प्लीज़ मुझे निकलना है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम आ जाओ, और मैं एक डायरेक्टर हैं अलख नंदन सिन्हा जी, मैं अलख दादा से उनसे मिलवा दूंगा, पर वो तुम्हें रखेंगे नहीं रखेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मैंने एक समय ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद मैं एमए के लिए मैंने अप्लाई किया था, और मैं भोपाल की बस में बैठ गया रात को, शादियों का सीजन था, बहुत बहुत ढोल बज रहे थे, बस निकल नहीं पा रही थी शहर से, और मैं बस में बैठा हूं और मेरे घुटने कांप रहे हैं, और मैं सोच रहा हूं कि मैं एक बंदे का नंबर जान है सिर्फ मेरा, उसकी शक्ल भी नहीं देखी, और वो किस तरह के होंगे, किस तरह का व्यवहार होगा उनको, और मैं उस शहर में किसी को जानता नहीं हूं, और मैं वैसे ही जा रहा हूं, मेरे घुटने कांप रहे हैं, और बारात की वजह से बस धीरे धीरे चल रही है, मैं सोचूं कहीं ये भगवान का संकेत तो नहीं है कि अभी मौका उतर ले, है ना। और मैं फिर बस से नहीं उतरा, और मैं पहुंच गया उधर 5 बजे मॉर्निंग में, और मैं 5 बजे से उनको फ़ोन कर रहा हूँ, अभी 5 बजे कोई कोई फ़ोन उठाएगा,
1: बिल्कुल
0: वो तो उठे, जब उठे 10 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि वो रोशनपुरा चौराहे पे 12 बजे मिलेंगे, मैंने कहा 12 बजे तक मैं क्या करूँगा, मैं जाके कहीं, मैंने कुछ पोहा हुआ खाया, नाश्ता वास्ता किया, और मैं डिवाइडर पे खड़ा हुआ 2 घंटे के लिए, मैंने कहा, मैं उनको बोल दिया कि मैं बीच डिवाइडर पे खड़ा रहूँगा भैया, ऐसा ना हो कि मेरा फ़ोन बंद हो जाए या आपका फ़ोन कुछ बंद हो जाए, मैं रिस्क नहीं ले सकता, तो मैं डिवाइडर पे खड़ा रहा, और फिर एक बंदा
1: रोशनपुरा चौराहे,
0: हाँ एक बंदा शरीफ सा बंदा, एक हाथ में झोला लेके एक बंदा हाँ। मेरे पास आए, और मैं वो उनको देखा मैंने कि मेरे को भगवान आ गए मेरे लिए ये मेरे को रास्ता दिलाएंगे, ये पहला इंसान है जो मुझे कहीं पहुंचाएगा, और वो मुझे मिले, मैंने उनको देखा, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैंने उनके पैर छूए, वो नहीं बोले कि पैर वैर नहीं छूते, मैंने कि बोले हमारे यहाँ तो बड़ों के पैर छूते हैं, उन्होंने बोले नहीं नहीं पैर नहीं छूते क्योंकि लोग अजीब के होते हैं, तो उन्होंने मुझे समझाया, और कट्टू फिर वो मुझे एक डायरेक्टर के घर में ले गए, अलग दादा के घर में, और हम बैठे हुए हैं, और 1 घंटा हो गया,
1: पहले हेमंत आया,
0: हेमंत दादा आए पहले, और अच्छा। उन्होंने बोला कि मेरा तो कोई ग्रुप नहीं है भाई, मैं किसी ग्रुप में काम करता हूँ, मैं डायरेक्टर को मिलवा दूंगा, और क्योंकि वो उनका ग्रुप का नाम नटबुंदी ले, और तुम बुंदेलखंड से हो तो हो सकता है तुम्हें रख ले, और तुमने बोला तुम गाने आना गाते हो तो हो सकता है तुम्हें म्यूजिक बंदों को रख ले, और मैं अतरंगी था सर, बेल बॉटम पैंट पहना हुआ है, लाल पीली कलर की शर्ट पहने हुए, बाल मेरे तेरे नाम जैसे हैं, बड़े बड़े मैंने बाल रखे हुए थे, तो मैं वहां पहुंचा लगता कि उधर ही रहते थे प्रोफेसर कॉलोनी में, तो उनके घर के बाहर हम बैठे हुए हैं, 1 घंटा हो गया 2 घंटा हो गया बैठे बैठे, पानी आया चाय आई हम पी के बैठे हुए हैं, और मैं पूछूं कि क्या हुआ, तो बोले कि दादा कुछ पढ़ रहे हैं, और मैं सोचूं कि ऐसी क्या पढ़ाई है कि लोग घर में आके बैठे हैं बंदा पढ़ ही रहा है आ ही नहीं रहा है, फिर मुझे पता चला कि लोग इतने डिसिप्लिन होते हैं कि अपना पूरा काम करके आएंगे वो, उन्हें बैठना है तो बैठो, फिर अलग दादा एक आए अंदर से, एक बूढ़ा सा आदमी आया, और उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला कि कौन है ये, उन्होंने बोला किसको लेके आ गए, कौन है, मेरी शक्ल देख के, अरे मैंने कहा सर मैं देवेंद्र हिरवार, और मैंने बहुत नाटक किए हैं छतरपुर में, मेरा बहुत नाम है, मेरे कॉलेज में पूरे लोग जानते हैं, आपके ग्रुप को मैं बहुत बढ़िया कर दूंगा सर, मैं बहुत कॉन्फिडेंस था, मेरे को ये ताकत लगा रहा था क्योंकि मैं डरा हुआ भी था, तो मुझे और ताकत लगा, मरता हुआ आदमी और हाथ पे चलाता है, तो मैं हाथ पे चला रहा था, उन्होंने बोला भाई इससे हो ही नहीं पाएगा, उनको देखे इसको भगाओ इससे हो नहीं पाएगा, तो मैंने बोला सर ये ऑप्शन ही नहीं है, मैं जा ही नहीं सकता, मुझे कहीं जाना है और मैं उसके लिए आया हूँ, मैं जा ही नहीं सकता, लौट नहीं सकता मैं, तो फिर उन्होंने मेरी जिद देखी, उन्होंने बोला कि यार ये लड़का पता नहीं, उन्होंने बोला कि देखो ऐसे लड़के जो घर से पैसे मांगते हैं उनको हम अपने ग्रुप में रखते नहीं है, और हम अपने ग्रुप में तुरंत जुड़े हुए नए बंदे को पैसे देते भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे? मैं सर कुछ भी करूंगा, मैं आप मुझे बोलो मैं कुछ भी करूंगा, आपकी रिहर्सल स्पेस साफ कर दूंगा, आपको कुछ भी कर दूंगा मैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तो हम तुमको रहने के लिए बस व्यवस्था कर सकते हैं, आपको बाकी चीज़ें आप खुद से देखनी पड़ेंगी। तो जिस रिपेटरी कंपनी में उनका सामान रहता था, हाथा एक जगह थी शामला हिल्स पे, उसमें मैं हेमंत देवलेकर भैया और एक और जितेंद्र भाई एक थे जो कि पत्रकार थे वो रहते थे। तो ये लोगों के साथ रहना हुआ मेरा पहली बार, और ये पढ़ने लिखने वाले लोग थे, भोपाल के साहित्य के लोग आते थे उस कमरे में, वहाँ पे एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी, और उनके साथ रहना, कविताएं सुनना, हेमंत भैया को सुनना, और फिर मैं हिम्मत करके मैंने बोला कि भैया एक बार मैंने बोला कि मैं भी लिखता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा अच्छा, तो एक महफिल थी, मैंने हिम्मत करके बोल दिया, उन्होंने बोला कि क्या क्या लिखा, तो तुम चाहो तो पढ़ सकते हो देवेंद्र, क्योंकि बहुत ही प्यारे काइंड थे, और मुझे लगा कि सच में वो मेरे लिए भगवान जैसे ही हैं, अभी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तब मैंने एक बुंदेली कविता लिखी थी जो कि मेरी एक तरीके से पहली कविता थी, और मैंने उनको फिर सुनाई उस महफिल में, सुनाई पहली बार। मैं इधर सुना दूं आपको?
1: जरूर।
0: तो कविता बुंदेली में ही है कि दद्दा मोखा मेला जाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने, ऊंचे ऊंचे गड़े हिड़ोरा बिचरी खूब बराई, और मेला में मिल जे है दद्दा मोखा मम्मा माई, वो पुत्रा और पुतनिया हल्के कक्का से लेबवाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने, घूमत घूमत जो दद्दा मोखा मौसी मिल जे है, कैया लेके बड़े प्यार से हल्के मुन्ना के है, मोखा अपने मौसिया से गुब्बारो लेबवाने, मोखा अपने मौसिया से गुब्बारो लेबवाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने।
1: क्या बात है।
0: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, ये उसके दोस्त हैं।
1: बिल्कुल।
0: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, जिनके संगे बड़ी रहान में खेलो गिल्ली डंडा, जो मेला ना जा पाहो उनखा आके तिनगाने,
1: वाह वाह,
0: आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने।
1: वाह वाह।
0: आखिरी बंद है कि दद्दा धीरे से मुस्काए ढीले दोई बेला, और नए तंगड़िया बंठन के गए दोई घूमबे मेला, फिर मेला में फिर दद्दा ने गड़गड़िया ले बुआई, और कंधे पे बैठा के पूरो मेला दो घुमाई, कहते हैं देवेंद्र जे बचपन हमें भूल नहीं पाने, और आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया हिलाने, दद्दा मोखा मेला जाने।
1: कहते हैं देवेंद्र
0: के बचपन उस समय ये बुंदेलखंड के कभी गानों में कभी जो राइटर होता था उसका नाम छाप बोलते थे उसे, छाप है, तो छाप लगा के ही मैंने पहली कविता लिखी थी, मेरी बुंदेली कविता थी, और वहाँ से ही मेरा साहित्य के बारे में शेक्सपियर पढ़ना शुरू किया, ब्रेक्ट पढ़ना शुरू किया, चेखव पढ़ना शुरू किया, मोहन राकेश पढ़ना शुरू किया, गिरीश कर्नाड पढ़ना शुरू किया, विजय तेंदुलकर पढ़ना शुरू किया, बादल सरकार पढ़ना, तो वो साहित्य से जुड़ना शुरू हुआ।
1: उस समय खर्च निकालने के लिए क्या करते थे आप?
0: खर्च तो मेरा कुछ था ही नहीं, मैं तो आटा तो मैं घर से ले गया था, और 10 रुपए का 5 रुपए का नमकीन का एक पैकेट आता है, भुजिया बोले ली, और रोटी बना के, और रोटी में घी लगा के, घी और ये दोनों चीजें घर से ले गया था, और रोल बना के उसमें नमकीन डालता था और उसको ऐसे खाता था, खर्च कुछ था ही नहीं,
1: बस खाना हो गया,
0: खाना हो गया, और वहां से रिहर्सल के लिए वॉक करता था, तो वॉक करके वहां पे जाता था, रिहर्सल करता था, टाइम से पहले पहुंचता था, तो रिहर्सल स्पेस साफ करता था, ये ड्यूटी थी मेरी, रिहर्सल स्पेस साफ करना है, चटाइयाँ बिछानी है, डायरेक्टर की कुर्सी लगानी है, पानी की बोतलें भरनी है। तो मैं और मेरे दो दोस्त और थे, एक दर्शित जो अभी कास्टिंग करता है कास्टिंग में, और एक मेरा दोस्त था सिद्धार्थ पांडे जो कि मेरा पहला दोस्त बना, कि उस तरह से भोपाल का पहला बेस्ट फ्रेंड मेरा बना, और हम तीन लोग जाते थे, हम पहले पहुंचते थे, हम सब कुछ काम करते थे, डायरेक्टर आते थे बैठते थे, बड़े बड़े लोग एक्टिंग करते थे ग्रुप में, और मैं देखता था भाई ये तो बहुत अच्छे पढ़ते हैं, मेरी भाषा का बहुत ख़राब था, एक नाटक कर रहे थे तांबे के कीड़े, और दादा मुझे और मेरी भाषा बहुत खराब थी, तो उसमें थे एक पत्ती एक पत्थर एक शब्द, ऐसे कुछ डायलॉग हुआ करते थे, वो भुवनेश्वर का नाटक था, एब्स्ट्रैक्ट नाटक था, और पहला नाटक ही मुझे वो करने को मिला, मैं कुछ ऐसे अजीब से नाटक करने के बाद अचानक से एक एब्स्ट्रैक्ट नाटक करने लग गया, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसमें एक डायलॉग था, ले लो कांच के बीच, तो मैं बोलता ले लो कांच के बीच, तो बोलते ले लो नहीं, वो मुझे सिखाते थे ले लो नहीं ले लो, और मैं बोलता था ले लो, और मैं बोलता था कि मैं वही तो बोलता हूँ, और मुझे इस बात पे गाली मिलती थी, और वो बोलते थे तुम बुंदेली फूर रहे हो, तो यार मैं समझ नहीं आता, मैं वही तो बोलता हूँ, फिर मेरे दोस्त मुझे समझाते थे, मुझे पता चला कि मेरे वो भाषा पे कितना काम करना पड़ेगा। सर मुझे अच्छे से याद है कि वो दादा के साथ काम करते करते ड्रामा स्कूल खुला भोपाल में, एक एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा, और मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे तो मैं पैसे मैं कमा नहीं सकता, ग्रुप में पैसे मिलते नहीं, तो मुझे अब इस इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा जहाँ पे साल में इतने सारे लोग आएंगे नाटक कराने के लिए, वो खुला ही था। तो मैंने फिर एमपी स्कूल ड्रामा के लिए एग्ज़ाम दिया, पहला राउंड में मेरा सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर वर्कशॉप में मैं गया, फिर वर्कशॉप में का एक माहौल। सो भोपाल में मैंने देखा कि

और मेरे गुरु हैं, मैं उनको बहुत प्यार से उनसे सीखा है मैंने। तो एक नाटक कर रहे थे, तो उस नाटक में हम उज्जैन में, हमारी वर्कशॉप लगी हुई थी और उज्जैन में हम एक महीने के लिए वहाँ पे थे। तो सर ऐसे मेरे सामने ही गाने बना रहे थे, हारमोनियम बजाना मुझे आता था पर मैंने गाने नहीं बनाए थे। तो उन्होंने गाना बनाया मेरे सामने ही, और वो गाना मुझे ही गाना था तो मेरे सामने बना रहे थे, क्योंकि मैम पूछती थी कि संजय क्या हुआ, तो बताते थे मैम हम कर रहे हैं। तो एक गाना उन्होंने बनाया, एक कविता थी, दिखती है आस क्यों, पाक पसारे, सही में है मन क्यों, क्यों रूठे किनारे। तो उन्होंने इस गाने को कंपोज किया सर, देखिए छोटी सी बात है पर उन्होंने मेरे सामने कंपोज किया और मैं इससे इंस्पायर हो, इनलाइट हो गया, मुझे लगा कि भाई ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो गाना ऐसा कुछ था, दिखती है आस क्यों, पाखे पसारे, ऐसे में है मन क्यों।

0: क्यों रूठे किनारे। तो ये गाना मुझे लगा कि भाई ये तो इतना बढ़िया काम है। तो फिर मैं आया उधर से वर्कशॉप के बाद, मैंने कुछ दिनों में कुछ 4-5 गाने बनाने की कोशिश की है और लिखने
1: क्या
0: भी शुरू
1: बात
0: किए,
1: है।
0: क्योंकि मैं पढ़ता था भावे में, लाइब्रेरी में पढ़ता था, बहुत सारे कवियों को मैंने पढ़ा हुआ था, तो मैंने कुछ कुछ गाने लिखने शुरू किए।
1: कंपोज करना शुरू किया या लिखना शुरू
0: लिखने
1: किया?
0: भी लिखना दिखता तो मैं कविताएं था ही, पर मैंने कंपोज किए फिर 4-5 गाने। और फिर मैंने भोपाल में आके स्कूल के बाद मैंने बोला सर से कि सर मैं एक 5-6 गानों का 7-8 मिनट का 15-20 मिनट का एक शो करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पर ये ऐसी परंपरा बनाओ कि हर सैटरडे को कोई एक बंदा परफॉर्म करेगा। तो मैंने कहा हाँ, तो सर उसकी शुरुआत मैं ही करता हूँ अगले।
1: रुको, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं, क्योंकि बहुत दिलचस्प दास्तान है। एक गाना सुनते हैं, उसके बाद ये दास्तान
0: हाँ
1: सुनेंगे।
0: ओके चलेगा
1: तो
0: सर।
1: बताओ यहां कौन सा गाना होना चाहिए देवेंद्र?
0: ओ साथी रे,
1: क्या बात है,
0: ओमकारा का गाना,
1: ओमकारा का गाना
0: ओमकारा
1: है।
0: का गाना है
1: बहुत
0: कि बहुत ही
1: शानदार
0: सुंदर
1: गाना है,
0: गाना है, बहुत ही
1: बहुत शानदार
0: सुंदर गाना
1: गाना
0: है।
1: है।

0: ये गाना हमने ओंकारा फिल्म का सुना देवेंद्र,
1: जी.
0: आप बता रहे थे कि हर शनिवार को ये परंपरा शुरू करो कि कोई परफॉर्म करेगा.
1: हाँ,
0: तो इसके आगे क्या हुआ?
1: तो मैंने कुछ गाने बनाए और मैंने परफॉर्म किया. तो वो गाने परफॉर्म करने के बाद कुछ बुंदेलवी गाने थे, कुछ ऐसे कुछ गाने थे. और वहाँ पे अगले नाटक को डायरेक्ट करने के लिए एक डायरेक्टर आए हुए थे, उनका नाम था वीके शर्मा. तो वीके सर ने मेरे को देखा परफॉर्म करते हुए, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने मेरे शो के बाद बोला कि अगला मेरा जो शो होने वाला है उसका म्यूजिक तुम करोगे. तो वो मेरा पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था. उस नाटक का नाम था अपना अपना भाग. हाँ, अपना अपना भाग का मैंने पहला गाना है. वो ऐसा कुछ गाना था, एक सुना देता हूँ ऐसे करके. सुबह का भोला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है. सुबह का भोला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है. फिर से जन्म हुआ है उसका, फिर से मिला एक मौका है. फिर से जन्म हुआ है उसका, फिर से मिला एक मौका है. मेहनत करके भाग्य जगा ले, तुझको किसने रोका है. सुबह का भोला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है. तो एक फेलियर आदमी की कहानी थी कि वो फेल हो गया था, फिर वो कैसे हीरो बन के लौट के आया है. उसके ऊपर हमने ये नाटक, और ये पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था. उसके बाद तो ये लंबा सिलसिला है, और फिर
0: म्यूजिक का सिलसिला चल
1: चालू हो गया. फिर उसके बाद मैं पास आउट हुआ, और फिर वीके सर ने बोल दिया कि भाई तू पास आउट होकर दिल्ली आ जाना, मेरे ग्रुप में काम करना.
0: अच्छा,
1: तो एक ब्रिज में लिया कि मुझे दिल्ली जाने का मौका मिल गया, क्योंकि मुझे दिल्ली ही पहुंचना है डेस्टिनेशन.
0: वो बोर्ड और
1: वो तो छूटे नहीं है, वो रिकॉर्डिंग तो छूटे नहीं है.
0: हाँ,
1: वो तो मैं मुझे जाने थे स्कूल, उधर हुआ नहीं है. जिस समय मैंने एमपी स्कूल ड्रामा के लिए ऑडिशन किया था, उस समय मैंने एनएसडी का भी ऑडिशन किया था.
0: अच्छा,
1: पर एमपी स्कूल ड्रामा मेरा हो गया. और देने गया इंटरव्यू, तो उन्होंने बोला कि भोपाल में खुद एक ड्रामा स्कूल खुला है, भोपाल में काम करते हो, तो भोपाल में आपने नहीं दिया. मैंने बोला मैंने दिया था. तो उन्होंने क्या हुआ, मैंने कि हो गया. तो उन्होंने बोला पहले वहां पढ़ के आओ.
0: अरे
1: मैंने कहा अरे यार. तो फिर मुझे पढ़ने का वहाँ पे मौका मिला, और फिर मैं जुलाई में पास आउट हुआ था. 4 अगस्त 2012 को मैं दिल्ली आ गया था वीके सर के ग्रुप में काम करने के लिए. और फिर मेरे को 14 में मेरा सिलेक्शन हुआ.
0: ओके.
1: और तो उसके बाद मैंने दिल्ली में लगातार काम किया, दिल्ली में
0: लेकिन
1: काम किया.
0: 14 में एनएसडी में सिलेक्शन हो गया. और वहीं वो
1: और वो धुरंधर जी से मिलना हुआ मेरा.
0: मिले धुरंधर जी?
1: धुरंधर जी उस समय तक थे, धुरंधर जी. पर वो मुझे भूल चुके थे तब तक.
0: हाँ.
1: मैंने बोला आपको याद है एक बच्चा आया था, आपने मुझे बोला था कि तेरा नहीं हो पाएगा. ऐसे मनगढ़ंत कहानी सुना रहे. वो प्यार करते थे, वो थोड़ा सीनियर जैसे थे ना, जैसे बुजुर्ग कैसे होते हैं, तो ऐसे थे वो. क्योंकि वो ऐसा कल्चरल ग्रुप है, एक्टिविटी है, तो वहाँ पे गार्ड गार्ड की तरह ट्रीट नहीं किया जाता जैसे दुनिया में होता है
0: जी.
1: तो वो ऐसे होता है कि अरे आप दादा हो, मतलब
0: प्यार
1: मिलता, परिवार के सदस्य हो, सीनियर सदस्य हो आप. तो उस तरह से तो धुरंधर जी से काफी लंबा समय तक उनसे प्यार रहा है. और फिर वो रिटायर्ड हो गए, तो अब मिलना कम होता है. पर मैं दुआ करता हूँ जहाँ भी हूँ, बहुत ही अच्छे थे वो.
0: एनएसडी ने आपकी दुनिया को कितना बदला?
1: सो एनएसडी में भी मैं एक्टिंग करने गया था. मैंने एक्टिंग करनी थी मुझे, और मुझे शौक था एक्टिंग करने का. और मैंने पहला एक बड़ा नाटक मैं लीड रोल किया. उसके पहले तो क्योंकि मेरी भाषा बहुत खराब थी, एमपी स्कूल ड्रामा में मैं नाटकों में रोल करता था. एक नाटक में 6 रोल करता था, और मेरे डायलॉग किसके कैसे होते थे, छोटे छोटे रोल होते थे. बंदूक किसके पास है, मैं बोलता राजगुरु के पास, मेरा डायलॉग खत्म, मेरा रोल भी खत्म. मेरा रोल भी खत्म. मेरी भाषा इतनी खराब थी.
0: अच्छा,
1: क्योंकि
0: लेकिन ये फिर भाषा पर काम कैसे किया? ये हाँ, बहुत
1: मैं बता रहा हूँ कि मैं ये कविता पढ़ते पढ़ते मैंने पहली बार शामिल बोलना शुरू किया था. शामिल बोलना शुरू किया पहले, क्योंकि मैं शामिल बोलता था, शेक्सपियर बोलता था.
0: हाँ.
1: तो लोग हंसते थे.
0: हाँ.
1: तो मुझे लगा कि अरे यार ये तो मैं बहुत बड़ा मसला है.
0: हाँ.
1: तो मैंने भाषा पे काम किया, दोस्तों ने मुझे हेल्प की. हाँ. मुझे लगातार टोका, मुझे समझाया, और फिर मैं कॉन्शियस हो गया उसको लेके.
0: हाँ.
1: मैं उसको लेके कॉन्शियस हो गया कि भाई अच्छा अच्छा मैं गलत बोलता था.
0: शक को साफ बोल रहे हो,
1: हमेशा ही बोलता था. तो पहली बार मैंने ये कविता, जो राजीव जोशी की बहुत पॉपुलर कविता है, बाद में मैंने उसको कंपोज भी किया.
0: हाँ.
1: जो हमारे बैंड का मंडी हाउस द बैंड, हमारा जो बैंड है उसमें गाना है ना.
0: हाँ.
1: जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे. तो शामिल मैंने पहली बार शब्द बोला था, जिसमें मैंने सा को सही बोला था.
0: हाँ.
1: शामिल बोला था. मेरे दोस्त चौंक गए थे कि भाई बोल दिया, यही तो बोलना था. इतने दिन से तुमसे यही तो बोलवाना चाह रहे थे हम.
0: ओके.
1: तो ये पहली बार ऐसे भाषा पे काम किया. और जब मैं पहली बार इसमें एनएसजी आया, और मैंने एक बहुत बड़ा रोल किया लोअर डेप नाटक में, दोबारा हुआ एनएसजी में, और उसमें मैंने साचिन का रोल किया, और डायरेक्ट कर रहे थे अनुरोध खुटवर सर. और मेरा बड़ा नाम हुआ उस नाटक से, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई लड़का आया, और 2-2.5 घंटे के नाटक में 1.5-2 घंटे कम से कम स्टेज पे है, और लगातार बोलना है, और कैरेक्टर बहुत डिफिकल्ट, कुछ भी चीज़ जो मैं नहीं करता था सब उसको करना है. मैनरिज्म पकड़ने की कोशिश की, और लंबे अंतराल के बाद वो नाटक बहुत अच्छा हुआ. पर जैसे ही मैं सेकेंड ईयर में गया, और उस समय मुझे समझ में आया कि यार मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, जिन लोगों से मैं बिलोंग करता हूँ, अगर मैं एक्टिंग मैंने ले ली तो उनकी कहानियाँ कौन कहेगा. तो फिर मैंने वहाँ से अपना रुझान बदला और मैंने डिज़ाइन एंड डायरेक्शन में अपने आप को कोर्स लिया सेकेंड ईयर से, आप स्पेशलाइजेशन करते हो तो वो लिया और फिर मैं उस तरफ आ गया और फिर मैंने अपनी कहानियाँ लिखनी शुरू की, अपनी बात लिखनी शुरू की, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ उस ज़मीन की सच्चाई को लिखना शुरू किया, सोसाइटी पे क्वेश्चन करना शुरू किया। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि मैंने ठीक किया, क्योंकि मैं अभी भी एक्टिंग तो मैं कर ही लेता हूँ, मेरे को लोग प्यार करते हैं और मेरे को पता ही है कि मैं डायरेक्शन के हिसाब से जो मैं डायरेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे इतना प्रेशर नहीं रहता क्योंकि मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो मैं एक्टिंग भी बहुत सरल तरीके से करता हूँ, लोग मेरी एक्टिंग की तारीफ भी कर देते इस बहाने कि भाई तुम लोड नहीं लेते,
0: बिल्कुल
1: तुम्हारी एफर्टलेस का मैं दिखती है। तो ऐसे करके शुरू हुआ पूरा पूरा।
0: तो फिर दिल्ली में कौन से बड़े नाटक इस दौर के बाद किए हैं?
1: अभी दिल्ली पहुंचा उस दौर के बड़े नाटक हुए थे, विरासत एक नाटक किया था अनुराधा कपूर मैम ने, बहुत बड़ा लेवल पे वो नाटक किया था जिसका बहुत नाम हुआ। उस समय बंसी दादा भी नाटक करते थे,
0: बंसी कॉल
1: जी भी नाटक करते थे, एनएसडी में भी उनके साथ मैंने एक नाटक किया जिसका नाम था खेल मंडी खेल, उसका म्यूजिक मैंने बनाया।
0: मुखौटा,
1: हाँ, तो वो मूवमेंट थिएटर करते थे, लार्ज एंड लाइव थिएटर करते थे और वो फार्स कॉमेडी करते थे और कन्विक्शन के साथ कराते थे, वो बहुत बढ़िया काम था। तो उनके साथ भी काम करने का मन, त्रिपुराई शर्मा जी का नाम उस समय बहुत था और बहुत उनके साथ नाटक किए हम लोगों ने और बहुत नाटक देखे उनके, और बाहर भी दिल्ली के जो ग्रुप्स थे उनके साथ भी काफ़ी नाटक देखे। एक नाटक देखा था मैंने वाटर स्टेशन जो कि साउथ का नाटक था, और उस समय भारंगम होते थे तो भारंगम से भी बहुत सारे नाटक आते थे, दुनिया के सारे नाटक, बहुत सारे नाटक उस समय
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: देखे हमने। अभिलाष पिल्लई सर के नाटक देखे थे हमने और बहुत अलग अलग तरीके के, बहुत इंटरनेशनल लोगों से मिलना हुआ, पूरे देश के अलग अलग जगह के लोगों के अलग अलग भाषाओं के लोगों से मिलना हुआ और पावरफुल लड़कियों से मिलना हुआ जो कि अपनी बात बहुत स्ट्रांगली कह पाती हैं और जो सोसाइटी में स्ट्रांगली अपनी प्रेजेंस को प्रूव करती हैं और वो दिखाती हैं कि वो किसी से कम नहीं है, इंटेलेक्चुअली और क्रिएटिवली भी वो किसी से कम नहीं है। तो उन टीचर्स से ज़्यादा हम बैचमेट्स से सीखते हैं।
0: तो वहाँ से फिर मुंबई कैसे आना हुआ?
1: मैं पास आउट हुआ 17 में और फिर मेरे पास एक कॉल आया बहुत बड़े डायरेक्टर का, क्योंकि मैंने उस समय मेरा डिप्लोमा हुआ था, डीरेल मैंने किया था, वो नाटक उस साल का बहुत बड़ा नाटक बन गया और वो थिएटर ओलंपिक हुआ उसकी क्लोजिंग में हुआ, वो इतना बड़ा नाटक था उसके 1000 लोग देखते थे और वो मैंने ही लिखा था, डायरेक्ट किया था, डिज़ाइन किया था और MP छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे वो मैंने बनाया एक नाटक कि वहाँ से एक रेल की पटरी निकलती है और वहाँ पे एक गार्ड रहता है और वहाँ पे एक फाटक है और उस बंदे ने किसी बंदे को किडनैप कर रखा है, उसकी कहानी थी पूरा ऐसे ओपन स्पेस में करता था मैं। तो उस नाटक में एक गाना था तो वो गाना और उसके काफ़ी गाने ऐसे पॉपुलर हुए और वो मैंने रिकॉर्ड किया, तो दोस्तों ने मुझसे मांगे तो मैंने दे दिए किसी को, तो कुछ पत्रकार दोस्तों को भी दे दिया, उन्होंने एक गाना किसी डायरेक्टर को सुना दिया, काफ़ी बड़े डायरेक्टर थे, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने उनके साथ फिर काम नहीं हो पाया, और उन्होंने मुझे कॉल किया कि तू बम्बई आ जा और मैं हम काम करेंगे। वो बहुत बड़ा नाम था वो डायरेक्टर का और मैं ऐसे चमक गया। रात का टाइम था 12 बजे के आसपास, NSG से पास आउट होने के पहले की बात है, कुछ दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं और मेरे पास एक कॉल आता है, कुत्ते भौंक रहे हैं, हेली रोड पे मैं चल रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ में और एक कॉल आया, उन्होंने बोला कि मैं फलाना बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि मैं सर मैं समझा नहीं हूँ, उन्होंने बोला फलाना फलाना बोल रहा हूँ, फिर सर वे कुत्तों की बहुत भौंकने की आवाज़ म्यूट हो गई है, मेरे दोस्त आगे निकल चुके हैं और मैं वहीं खड़ा हुआ हूँ, कुत्ते मेरे आसपास पहुँच रहे हैं, मैं सुनाई देना बंद हो गया मुझे, मैंने कहा अरे हाँ सर, अरे सर मैं तो मर जाऊँगा सर, क्या हो गया सर, मैं आप बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो आ जाना मुंबई और अपन मिलते हैं कुछ काम करते हैं। फिर मैं आया मुंबई, उनसे मिलना हुआ पर वो काम नहीं बन पाया, अभी तक मैंने उनके साथ काम नहीं किया पर उम्मीद है कि कभी ना कभी काम करेंगे। पर फिर ऐसे में मुंबई आ गया
0: और यहाँ से फिर मुंबई में काम का सिलसिला शुरू हुआ।
1: हाँ, मुंबई में काम का सिलसिला तो सर ऐसे शुरू होता कि 3 महीने तो मैं समंदर पे जाके बैठा क्योंकि पहली बार समंदर देखा था और पता ही नहीं रहता था जाना किधर है, पर ये बताता कि वहाँ हर हाल में पहुँचना है जहाँ जाने का ख्वाब देखा है, तो उसी तरफ बढ़ने की कोशिश करते थे, निकलते थे। फिर एक नाटक बना लिया क्योंकि कोई काम नहीं देगा तो क्या करोगे, फिर मैंने एक नाटक बना लिया कांजी हाउस जो मैंने ही लिखा था और वो भी उसी बुंदेलखंड पृष्ठभूमि पे, वो शुरू ऐसे होता था एक आकाशवाणी का छत्र वो केंद्र है।
0: अच्छा।
1: हाँ, वो क्योंकि रेडियो का बंदा था तो रेडियो पे कोई न्यूज चल रही है और आज शाम को 4-7 बजे उसका मैंने अनाउंसमेंट ऐसे बनाया था, इतने बजे नाटक होने वाला है जिस इस पृष्ठभूमि पे है ऐसे करके, उसमें ये अभिनेता काम कर रहे हैं, ये उसमें इस तरह के गाने, इस तरह का म्यूजिक है। तो कांजी हाउस उसको बहुत प्यार मिला, मैंने उसके 25 शो किए और वो फिर कोविड लग गया, हम पृथ्वी करने ही वाले थे, कोविड लग गया, फिर वो पूरा का पूरा बंद हो गया नाटक। फिर अभी बहुत समय बाद मैंने एक बड़ा नाटक, मतलब कम लोगों के साथ में एक बड़ा नाटक बनाने की, बड़ी बात के साथ बनाने की कोशिश की है जिसका नाम है बहुत जोर से प्यार लगा है, जो अभी लगातार हो रहा है।
0: और उसका एक गाना सुनाओ यार,
1: उसका टाइटल सॉन्ग सुना दूंगा मैं आपको।
0: बिल्कुल
1: सुनाता हूँ मैं आपको, उसका एक गाना है जो टाइटल सॉन्ग है, मैं एक इसकी छोटी सी अभी बात आ देता हूँ कि एक छोटा सा सेंटेंस जिस उम्र में मैं पढ़ता हूँ, छोटी उम्र में, लाइक मैं अगर 13-14 साल का हूँ, 12-13 साल का हूँ, उस समय कोई एक कोई इंसान, ऐसा इंसान जिसके होने से आप चमकते हो, जिसके होने से आपको खुशी होती है, जिसके बगल से गुजरने से आपको कोई आपका क्रश है, और वो कोई एक ऐसी बात कह दे, एक सेंटेंस ऐसा बोल दे, उस सेंटेंस का असर कितना समय रहता है और वो सेंटेंस आपकी पूरी दुनिया कैसे बदल सकता है, वो एक सेंटेंस की कहानी है ये एक तरीके से। अगर वो नहीं होता तो ये लड़के की जो जिंदगी है, जो गुड्डू नाम का जो कैरेक्टर है, उसकी जिंदगी कुछ और ही होती। उस घटना ने उसकी जिंदगी बदल के बदल दी। उस पर एक कहानी है। हर किसी की जिंदगी में ऐसा होता है। एक संवाद कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, भाषा में कितना पावर है, और अगर वो मीन करके, अगर वो सच में इंटेंसिटी के साथ बोला गया सेंटेंस है, संवाद है, तो वो क्या बदल सकता है, वो तबाही ला सकता है। तो वो कहानी है। अब ये गाना तो थोड़ा कमर्शियल गाना है क्योंकि हमारा नाटक भी कमर्शियल है, पर बात वही है कि वो फोक से शुरू होकर ऐसे कमर्शियल की तरफ बढ़ता है क्योंकि वो कैरेक्टर भी ऐसे छोटे गाँव से निकल के कहाँ कहाँ पहुँचता है, उसकी कहानी है। सो गाना है, अब कंट्रोल नहीं होता, अब बर्दाश्त के बाहर है, इसको कोई रोक सके, किसमें इतना पावर है, सीने के इस पार से लेके सीने के उस पार लगा है, बहुत जोर से प्यार लगा है,
0: क्या बात है,
1: पे पे बहुत जोर से प्यार लगा है, पे बहुत जोर से प्यार लगा है, सीधे लड़के के हाथों में इनलीगल हथियार लगा है, बहुत जोर से प्यार लगा है,
0: क्या बात है।
1: जहन की हर एक चोट थी गायब, उन होठों में होठ थे गायब, हाथ थे गायब, बात थी गायब, दुनिया की औकात थी गायब, गायब पूरा बदन हुआ था, मैं तो उसका कफन हुआ था, बचने को बस सांस बची थी, फिर भी आधी रात बची थी।
0: वाह।
1: सुबह उठा तो कान के नीचे गर्दन पर स्कार लगा है, बहुत जोर से प्यार लगा है, बहुत जोर से प्यार लगा है।
0: क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया गाना।
1: जी जी जी।
0: कैसा रिस्पॉन्स है इस नाटक का?
1: सर, जो भी देख रहा है उनको बहुत पसंद आ रहा है, और क्योंकि म्यूजिकल है तो लोग उससे और जुड़ते जा रहे हैं, और अभी हमने लगातार 5-6 शो किए हैं, हाउसफुल शो किए हैं, और हमें भी बहुत शो करने हैं, पूरे हिंदुस्तान घूमना है। तो जो भी श्रोता जो सुन रहे हैं हमें, अगर वो चाहें तो हमें बुला सकते हैं, और दो परफॉर्मेंस हम लगातार कर रहे हैं। एक तो हमारे मंडी हाउस बैंड है जो कि ऐसे गाने हैं, वो सारे गाने ओरिजिनल गाने हैं, इतने बड़े बड़े गाने हैं जो आपने फिल्मों में भी नहीं सुने होंगे, और रोहिणी ने ऐसा बोला हुआ है, मैंने नहीं बोला हुआ है। तो बहुत अच्छे गाने हैं और बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, और इसे कम्यून ने प्रोड्यूस किया हुआ है, और हमें इसे बहुत करना है, और अभी हम कर रहे हैं, अभी आगे हमारे शो है, हम पृथ्वी में भी करने वाले हैं, NMACC में भी कर रहे हैं। तो अभी बहुत प्यार की उम्मीद है, अभी बहुत प्यार चाहिए सर, बहुत नाम चाहिए, क्योंकि एक ऐसी जगह से निकलना है ताकि बहुत सारे लोगों को ताकत मिले और एक थोड़ा एग्जाम्पल बने कि हाँ, कहीं से भी सपने देखे जा सकते हैं।
0: अभी वेब सीरीज आई थी बैंड वाले,
1: जी जी,
0: वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? स्वानंद है उस वेब सीरीज,
1: जी जी, स्वानंद दादा हैं, और अंकुर तिवारी जी ने को डायरेक्ट किया है, को क्रिएटर है वो, और अक्षय वर्मा जी ने उसको डायरेक्ट किया। उसमें मेरे कैरेक्टर नाम है जिगी। जिगी एक कैरेक्टर है जो एक लड़की को प्यार करता था, पर वो लड़की प्रोफेसर की बेटी थी, इसलिए प्रोफेसर को पता चला कि मेरी लड़की को के पीछे पड़ा हुआ है ये, तो उस लड़के को अपने घर बुलाया राखी वाले दिन, और उससे राखी बनवा दी। तो वो जिगी कैरेक्टर ऐसा है कि वो राखी भाई बना हुआ बेचारा। अब वो क्या करे, उसके दिमाग में बहुत है, वो प्यार भी करता है पर उसको बहन मानता है वो। अब उसको वो पीछे घूमता रहता है 24 घंटे, वो अपनी थार से उसके पीछे घूमता है। बहुत मतलब लोगों ने मुझे बहुत उसके लिए प्यार इसलिए दिया क्योंकि लोग उसमें कह रहे हैं कि तुमने उसमें बिल्कुल एक्टिंग नहीं की। क्योंकि मेरे को लगा कि मैं उसमें क्या ही एक्टिंग करूंगा। मैंने उसको समझा बस कैरेक्टर को, क्योंकि समझाने वाले लोग भी अच्छे थे, स्वानंद दादा भी थे, अंकुर जी भी थे, अक्षय वर्मा जी भी थे, और आसपास के लोग, रोविंद सर उसमें काम कर रहे थे, हमारे गुरुजी रोविंद सर काम, आशीष विद्यार्थी जी उसमें काम कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग उसमें थे। तो उसमें बहुत ही अच्छा था, और उसमें मेरा एक गाना भी था, मैंने गाने बनाने के लिए पहले उससे जुड़ा था। गाना उसमें सब मोह माया नाम का एक गाना मैंने बनाया था।
0: सुनाओ ना।
1: अच्छा, वो गाना कुछ ऐसा था, वो देखो सब लूप में फंस गए, सभी लिटिल विट चूक में फंस गए, रोटी से परहेज किया है, पिज्जा बर्गर सूप में फंस गए, वो देखो सब लूप में फंस गए, बुजुर्गों ने फरमाया है प्यारे सब मोह माया है, अरे टैटू भी गुदवाया है डूड सब मोह माया है, काफी ऐसे फन सॉन्ग है, आम आदमी का गाना है कि बेचारा क्या
0: बिल्कुल,
1: चाय चढ़ा के दूध में फंस गए,
0: वाह वाह,
1: पी के कहीं तो भूख में फंस गए,
0: वाह,
1: पिचकारी से खेल रहे थे नजरों की बंदूक में फंस गए,
0: क्या सुन
1: उसके लिरिक्स ऐसे हैं मतलब,
0: वाह वाह वाह। देवेंद्र बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सबसे अच्छी बातें वो होती हैं जिनमें आगे के लिए हमेशा गुंजाइश छोड़ दी जाए,
1: जी जी जी,
0: तो फिर कभी मिलेंगे और
1: प्रेंसर
0: आगे और बहुत सारी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती,
1: बहुत बहुत शुक्रिया, रेडियो का मेरी जिंदगी में बहुत ही योगदान रहा है, और आप यकीन नहीं मानोगे मैंने बहुत सुना है विविध भारती, मैंने सुनता था आकाशवाणी का टाइम खत्म होता था फिर बोलते थे आप विविध भारती से कनेक्ट करते हैं,
0: हाँ।
1: कर दिया जा रहा है आपको, फिर वहां से आप सुनते थे प्रोग्राम लगातार,
0: बिल्कुल,
1: और बहुत ही एक सादगी है, एक सरलता है, एक मोहब्बत इतना नहीं एक रेडियो में,
0: बिल्कुल,
1: और मैं बड़ा मिस करता हूँ इसको, और मैंने तो सुना ही, मैंने बताया कि वो रेडियो के गाने मेरे जहन में चलते रहते थे, बैरन होगी जिंदगी मैं कहाँ से कहूँ जैसे गाने मैंने सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ मैं। सो मेरे साथ एक बड़ी खासियत जुड़ जाती है मेरे साथ कि मैंने थोड़ा म्यूज़िक और जो लोक है जो फोक है वो काफ़ी मैंने जिया है और मैंने उसको महसूस किया है, और दूसरा मैं शहर भी रहा हूँ तो मैंने हर तरह की शहर से होके पानी पी के आया हूँ, तो मेरे लिए ये काम कर जाता है, और रेडियो का मेरे लिए बड़ा योगदान है कि वो
0: क्या
1: गाना
0: बात
1: नहीं
0: है,
1: सुनता जब जब प्यार पे पहरा हुआ है तो मेरे ख्याल ही नहीं आता दिमाग में, और मैं आज
0: वहां
1: आपके
0: से
1: साथ बैठा
0: यहां
1: हुआ
0: तक
1: था,
0: का
1: और
0: सफर है।
1: हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है अच्छे लोगों से बात करके, और आपको तो मैं पढ़ता आया हूँ, मैं आपकी किताब भी पढ़ी है शैलेंद्र के ऊपर, और मुझे स्वानंदादन दी थी वो पढ़ने के लिए, तो मैं उसको भी पढ़ता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपसे लगातार जुड़ा रहूंगा, आपसे बात करता
0: बिल्कुल,
1: रहूंगा, विविध भारती से जुड़ा रहूंगा,
0: शुक्रिया,
1: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।

आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा, पहले हिंदी में और 5:05 पर अंग्रेजी में। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित थे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। वे आज अमेरिका से कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने मशीनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया और मदर टेरेसा की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है। श्री मोदी ने कर्मचारियों को आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का अथक प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। वहीं कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। हालांकि भारत दुनिया की एकमात्र ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में रुकावट के शुरुआती 76 दिनों के दौरान खुदरा ईंधन की कीमतों को लगभग अपरिवर्तित रखा है। सूत्रों के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध और हॉर्मुज जल डमरू मध्य के बंद होने के बीच भारत वैश्विक तेल संकट का असर स्वयं पर लेता रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है। लखनऊ में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi and U.S. Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the India-U.S. Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Secretary Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Teerth in New Delhi this afternoon. Prime Minister Modi said in a social media post that India and the U.S. will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jaishankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio briefed Prime Minister Modi on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. Secretary Rubio shared the U.S. perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. Mr. Modi reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. The Prime Minister requested Secretary Rubio to convey his warm greetings to U.S. President Donald Trump and said that he looked forward to their continued exchanges. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and

जी हाँ, सायकालीन भजनों का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अब आइए सुनिए दो आंखें बारह हाथ फिल्म से ये भजन।

श्रोता, इसी के साथ सायंकालीन भजनों का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। शाम के 5:30 हो चुके हैं। अब आप सुनेंगे युवा मंच कार्यक्रम।

युवा साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के युवा मंच कार्यक्रम

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।
2: April just turned up the heat with exciting offers among the Nexa range.
3: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
2: With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
3: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
2: Yes, Rs. 6.70 lakh, valid till 30th April only.
3: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
2: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.

जी हाँ युवा साथियों, बने हुए हैं आप 103.4 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी धर्मशाला पर, जहां आप इस वक्त सुन रहे हैं युवा मंच कार्यक्रम। और आज का युवा मंच है मेरी पसंद पर आधारित। जी हाँ, आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अपनी पसंद के कुछ प्यारे प्यारे से गीत। और देखिए ना, हर किसी का म्यूज़िक का अपना टेस्ट होता है, हर किसी की गानों की सिलेक्शन जो है वो चॉइस अपनी अपनी रहती है। तो कोशिश यही है कि हम जो भी गीत आपको सुनवाने जाएं वो आपको पसंद आए। कार्यक्रम में ये गीत आप सुन रहे हैं अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म से, जिसे गाया है आतिफ असलम और अलीशा चनोई ने।

हाँ जी, हल से आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं युवा मंच कार्यक्रम, और आज के इस प्रोग्राम में आपके लिए प्ले कर रहे हैं हम एक से बढ़कर एक बेहतरीन से म्यूजिकल नंबर।

जी हाँ, इसी बेहद ही प्यारे से गीत के साथ आज का युवा मंच कार्यक्रम हम यहीं पर संपन्न करने जा रहे हैं। कल इस कार्यक्रम को आप इस वक्त सुनना ना भूलें।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त शाम के 5:55 हो चुके हैं और ये समय रहता है आप सभी को जानकारी देने का हमारे केंद्र से आज रात्रि में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनके प्रसारण समय का। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। इसके अलावा शाम 7:45 पर भी प्रादेशिक समाचार सुने जा सकते हैं। सदाबहार फिल्मी गीतों का आनंद आप ले पाएंगे 6:06 पर। 6:30 पर हम आपको सुनवाएंगे मौजा ग्राइंडिया कार्यक्रम और किसान बागवान श्रोता किसानवाणी कार्यक्रम सुन पाएंगे 7:10 पर। समाचार हमारे केंद्र से सुने जा सकते हैं 7 बजे हिंदी में, 7:05 पर अंग्रेजी में, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, रात 9 बजे News@9 और सभा के अंत में रात्रि 11 बजे ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

रात्रि 8 बजे हम आपको सुनवाएंगे विविध गीत संगीत का कार्यक्रम सबरस और 8:30 पर सुनेंगे कुछ देशभक्ति गीत। रात 9 बजे हम आपको सुनवाएंगे हिमदर्शन कार्यक्रम जिसे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 9:30 पर सुनिएगा विज्ञान भारती कार्यक्रम, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज रात्रि में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनके प्रसारण समय की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार चिट्टा मुक्त हिमाचल के संकल्प को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में कहा कि सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी से इस चुनौती का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जहां अपराधियों पर कानूनी शिकंजा कस रही है, वहीं नशे से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए भी कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार के चिट्टा मुक्त अभियान के साथ अभी तक राज्य में 2,34,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। ये लोग सरकार की आंख व कान बनकर नशे के कारोबार करने वाले की सूचना पुलिस तक पहुंचा रही है, इससे दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हो पा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने चिट्टे का सेवन करने वालों और नशा तस्करों की पहचान सुनिश्चित बनाई है। प्रदेश भाजपा मीडिया संयोजक कर्ण नंदा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार के जन विरोधी फैसलों के कारण हिमाचल देश का सबसे महंगा राज्य बन गया है। कर्ण नंदा ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वायदे पर सत्ता में आई थी, लेकिन अब पहले से मिल रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली को बंद कर दिया गया है। यही नहीं, बिजली के दाम लगभग 5.5 रुपये प्रति यूनिट वसूले जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से इस बढ़ोतरी को तुरंत वापस लेने की मांग की है।
1: कांग्रेस सरकार अपने जन विरोधी निर्णय लेने में पीछे नहीं है और एक के बाद एक प्रदेश में बिजली बिलों के झटके यह कांग्रेस सरकार आम जनता को दे रही है। सरकार जब सत्ता में आई, प्रदेश में यह लोग 300 यूनिट बिजली देने की बात की थी और वो भी मुफ्त की। हिमाचल प्रदेश में मुफ्त बिजली तो गॉन, पर एक यूनिट बिजली भी अगर किसी की चलती है तो उस पर भी पैसा देना पड़ेगा। अगर 0 से 125 यूनिट जो बिजली मुफ्त मिल रही थी, अब उसके ऊपर 5.44 रुपए वो प्रति यूनिट के हिसाब से बिल आ रहा है।
0: कर्ण नंदा ने प्रदेश सरकार पर चुनाव

0: आचार संहिता के उल्लंघन का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में कई लोक लुभावन निर्णय लेकर पंचायत चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास किया है। उन्होंने चुनाव आयोग से इस संबंध में तुरंत कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के 26 मई को होने वाले पहले चरण के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां कल 24 मई को अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी। इन सभी पोलिंग पार्टियों को आज राज्य में अलग अलग स्थानों पर तीसरे व अंतिम चरण का प्रशिक्षण दिया गया। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में खंड विकास अधिकारी अंजलि गर्ग ने कहा कि इस ब्लॉक में पहले चरण में 10 पंचायतों में चुनाव होगा।
1: ब्लॉक नाहन में आज हमारी तीसरी रिहर्सल करवाई गई प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की और पोलिंग ऑफिसर्स की। तो इसमें लगभग हमारी 73 टीम्स की हमने आज ट्रेनिंग करवाई, तो कल हम उनको रवाना कर देंगे अपने अपने स्थानों के लिए।
0: प्रदेश में तीन चरणों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के विभिन्न पदों के लिए मतदान होगा। चुनाव आयोग ने पूरे प्रदेश में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। चुनाव ड्यूटी में करीब 35,000 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस बल की भी पर्याप्त तैनाती की गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिनों में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि की गई है। ये वृद्धि ईरान संघर्ष और हॉर्मूज में व्यवधान के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बीच हुई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। इस बीच पेट्रोल व डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी से आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। लोगों का कहना है कि बढ़ती कीमतों ने उनका बजट बिगाड़ दिया है।
2: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो आम जनता के लिए तो बहुत मुश्किल की बात है, कहां से अपने पैसे पूरे करेंगे। तो मेरी विनती है कि पेट्रोल के दाम ना बढ़ाएं, इसको कम करें।
3: अब मैं एक टेम्पो चलाता हूं, टेम्पो में डीजल डलता है तो डीजल कम से कम 5 रुपया बढ़ गया है पर लीटर, तो इसमें मैं क्या कमाऊंगा। तो यही है कि डीजल थोड़ा कम हो।
0: प्रदेशवासियों को एक बार फिर जोरदार गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने 26 व 27 मई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर सहित राज्य के 6 जिलों के अलग अलग स्थानों पर हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमानों के अनुसार 25 मई तक राज्य के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती रहेगी। विभाग ने इस दौरान प्रदेश के शिमला सहित मध्यम व ऊंचाई वाले अलग अलग स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी की संभावना भी जताई है। इस बीच बीते रोज राज्य के अधिकांश स्थानों पर हुई वर्षा और अधिक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर बर्फबारी से प्रदेश वासियों को चिलचिलाती गर्मी से हल्की राहत मिली है। आज भी राज्य के अनेक हिस्सों में दोपहर बाद से हल्के बादल छाए हुए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार,
0: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग। मेरे

0: कहानी। छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: जी हाँ, ट्यून इन है आप आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ, जहाँ पर हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं सदाबहार फिल्मी गीत। आज के सदाबहार फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे जानी दुश्मन फिल्म के इस गीत के साथ। आप ऐसे ही प्यारे प्यारे से गीतों का आनंद लेने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर।

0: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: श्रोताओ, आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत। कार्यक्रम में अगला जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म हिमालय की गोद में, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। तो चलिए आप सभी को सुनवाते हैं यह बेहद ही प्यारा सा गीत।

सदाबहार फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और कमल बरूट की आवाजों में। फिल्म है पारस मणि।

आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत। शुद्ध पुराने फिल्मी गीत बीते दौर में ही नहीं बल्कि आज भी हमें हर गली हर कूचे में कहीं ना कहीं पर गूंजते हुए सुनाई देते हैं। तो चलिए ऐसा ही एक और प्यारा सा गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं आजाद फिल्म से। आवाजें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की है।

श्रोता सदाबहार फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में अभी बस इतना ही। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 6:30 हुए हैं, अब आप सुनेंगे मौजा ग्राएं दिया कार्यक्रम।

0: मौजां ग्राइंदियां कार्यक्रम सुना करते सारे किसान बागवान भाई भैणा जो लंबरदार की तरफ से राम राम कने किसान साथियों अज टियाले पर मेरे कन्ने साथ दिया दे ने चुन्नी ताई जी तुहानू मेरी तरफ से राम राम
1: राम राम जी कन्ने सारे श्रोतां दे दो हाथ जोड़ के राम राम
0: बिल्कुल
1: तुसां दिखा कि प्रधानमंत्री साढ़े ने बड़े आह्वान किए हुए
0: जी
1: जियां कि तेल की बचत पेट्रोल की बचत ईंधन की बचत सोने चांदी के जड़े आभूषण है तिना बुल घट तो घट एक साल तो हम मत ही लिया कने जड़ियाँ खादा हैं कैमिकल खादा हैं उन्होंने उपयोग मत करा कने विदेश यात्रा करने के बजाय तो स्वदेश ही यात्रा करा
0: बिल्कुल तुम ठीक लाया भाई किसान साथियों साढ़े प्रधानमंत्री ने अपने देशवासियों ने आह्वान किया है इसी यह गल समझी कि चल रहा जी एक टब्बरे च बड़ा आदमी हों सह अपने परिवार को गलांदा भी थोड़ा हथ तंग है कने भी थोड़ा थोड़ा चीज़ा जड़ियाँ सह बरतनी हो तो सही हिसाब अज साढ़े प्रधानमंत्री जड़े सह साढ़े प्रदेशवासियों देशवासियों आह्वान करा करते कि अहाँ कुछ समय तक इस चीज़ा जड़ा सह कटाई दे ताकि साढ़ा देश जड़ा सह स्वावलंबी है तो है लेकिन तिस विच बने रहने ताई भी तिस ताई कोशिश जड़ी सह जारी रखना पौंदी तो अहाँ कोशिश इस कोशिश च प्रधानमंत्री ने कंधे ने कंधा मिलाई के इस कमे अहाँ अगे बधांगे कने अपने देश जो जड़ा है अपने आत्मनिर्भर होने के पथ पर अगे बधांगे तो ये जरूर अहाँ अपने किसान साथियों ने खास करके जड़ी भी काम शुरू होंदा है सह हम ये बोल के भी खेतीबाड़ी ते शुरू होंदा है क्योंकि अगर हाड़ी

0: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूं एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: किसान साथियों, संजय दिए बिलाए संदेश कने प्यारा दे लोक गीत जो पसंद आया होना। इस लोक गीत के बाद अगर गल करिए अपनी खेती बाड़ी की, तो अजकल दिखा भी हौली हौली जड़ा ऐसा कम रफ्तार लगा है पकड़ना। कने आसा जड़ी ऊरी पानी है धाना की, तिदी भी तैयारी, अपने बीज बूज जड़े से तैयार कर लिया, तीसी बैबस्टिन है जिया वैज्ञानिक दसते हैं कि उपचारित करना चाहिए, सह भी तुह कर सकते हैं। कने कई तरह के अहाँ जैविक तरीके भी इस विच अपनांदे हैं चुन्नी ताई जी, भी अपने बीजे शुद्ध बनाने ताई, तां तुहां जरूर इसकी तैयारी जी शुरू रखा। वैज्ञानिक दसा करते हैं कि लगभग असा बोलीए कि भी 20 मई के बाद कने 7 जून के बीच बीच जरा सह तुसा जो ऊरी जी सह धाना की पाई देना चाहिए, तो इस गला का जरूर तुसा ध्यान में रखने। कने अजकल साढ़े जोड़े वैज्ञानिक हैं जी धाना दिस्म दसते हैं, सह RP 24 21 सुकरा धान 1, HPR 10-68, कने कस्तूरी बासमती HPR 26-12, एदी किस्म जड़ियां सह तुसा अपनी खेतीबाड़ी च लगाई सकते हैं ताकि अच्छा उत्पादन तुहानू जड़ा सह मिली सके। इस कने कने चुनी ताई दिखा भी जड़ी अहां बोलदे ना कुकड़ी बोलदे साढ़े चंबे च मक्की दा है ना जी, छलिया दी मतलब बिजाई भी होआ करदी है। साढ़े कुछ अगेती साढ़े किसान भाई बीजते हैं, इसे ना भी बीजी ती है, लेकिन कुछ हल्ले बीजने की तैयारी भी करा करदे हैं, तो अहां तिन्हें भी गलाना चाहेंगे कि इसकी भी बिजाई का जरा कार्यक्रम है इस शुरू रखा। कने अपना बीज वगैरह जरा अहां बोलते पे जगाना पौंदा, तो सह जगाई लैना सवेला सवेला है ना जी, तो यह वाली चीज़ा। कने दूई गल आउंदी है साढ़े खेत अपने पशुधन जो हरा चारा उपलब्ध कराने की, चाहे चरी बाजरा जरा ऐसा इसका भी बाहने का समय जरा लगा करता, तो हाँ जितनी जल्दी ये वाली चीज़ा अपनी मतलब बिजाई करेंगे उतनी जल्दी साढ़े पशुधन जो हरा चारा जरा सा उपलब्ध हो सकता। तो इन चीज़ों का अगर अहम ध्यान रखे तो समय पर अपना पशुधन कने अपनी खेतीबाड़ी जो जरा सा उन्नत बनाई सकते हैं। तो यह गलबात अहम चुनी तो गांह भी जारी रखे, लेकिन उससे पहले एक सुना दे कोर प्यारा दिया लोकगीत।

0: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: किसान साथियों, संदेश कन्नै इस प्रिपेयर दे लोकगीत ते बाद हुण फिर ते तुहाड़ा मौजां ग्रहिणियां दे चरण च स्वागत है। कन्नै जियां कि अजकल ग्रां दा माहौल चलिया है, चुन्नी ताई तुहां पुछा मत भई दीवारां जिहड़ा रंग बदलिया है ना, भी जिस हिसाब ने चुनाव लग्यो है ना, ते इयां ना होवे साड़ी पिट्ठी पर भी कोई पोस्टर लाई जा है तब भी इहदी मारो मार पई होवे। भ्यागा दिखा दे तां साफ सब कुछ, कन्नै जैलू भ्यागा तड़का होआ करदा ना इयां, तां सारा इलाका जिहड़ा सा इयां लग्गा करदा भई नौयां पोस्टरां नै भरोई गया
4: है ना। महिला उम्मीदवार भी बड़ी चढ़ के भाग लिया दे।
3: बिल्कुल, ये तो दिखा भी साढ़े प्रधानमंत्री बोला करते भी लगभग इन्हें भी पूरा हक है कि भी हूँ तो जरा इस चुनाव योगी इस विच ये दस दिया करता कि ये पंचायत जड़ियाँ ने प्रधान पद या सरपंच या जिला परिषद जड़े ने महिला ताई रिक्त हैं है ना जी, तो साड़िया सारिया महिला जड़ियाँ ने बड़ी चढ़ी के भाग लिया कर दया। कने और क्या गलाना भी घर वाले की भी
4: रजामंदी
3: है, नहीं रजामंदी गलाइए भी घर वाले की भी सह बोलते ना भी खरी रगड़ाई होवा करती है।
4: महिलाएं भी अच्छी पढ़ी लिखी हैं, इनका सब कुछ कर सकती हैं, सशक्त भारत का निर्माण कर सकती हैं।
3: नहीं वैसे तो बिल्कुल तो ठीक लाया, पर भी बरकरिया च जड़ा मैं सह गल करा करदा पे रात जड़ियां सह जड़े ला करदे ने साढ़े युवा साथी कने भी सारे की भागीदारी ने जड़े साड़ियां महिला जड़ियां सह अग्गे आउणियां। कने दूई तो गल ये है कि भी बड़ी अच्छी गल है, मैं तो यह गलाना चाहूँगा बिल्कुल जात पात के उपर उठ के सानू ये चाहिए कि अपना एक ग्राएं का सानू पता है कि कौन पढ़िया लिखे आदमी है मेरे ग्राएं का जड़ा उत्थान कराई सकता है। सिर्फ इस सोची कन्नै सानू तिसियो ही वोट पाना चाहिए, कन्नै वोट का जड़ा वोट जरूर पाना चाहिए कोई भी साथी
4: ऐसा है।
3: जी जी बिल्कुल, भाई जिसी वोट का अधिकार है सै अधिकार जड़ा सै बेकार ना जाए, हरेक व्यक्ति जड़ा सै बड़ी चढ़ी के इस विच भाग लै। कने जाति पाति ते उपर उठी के कि इं है कने तिसी वोट पाना चाहे सै नलायक है चाहे लायक है, पर एक गल सोची के अगर तुह अगले 5 साल अगर अपने ग्राएं उपर उठाना चाहते हैं तो पढ़े लिखे आदमी हो, कने जड़ा तुहानू लगता कि जुझारू हाड़े ग्राएं दे बारे च अगे चली के लड़ी सकता है, तिसी वोट पा, ना कि तिसदी शकल या तिसदी जाति पाती दिखी के ए कोई भेदभाव तुह नहीं रखना है, सब हाँ भारतीय हैं, अगर हाड़ा ग्रां उठता है तो हाड़ा देश उपर उठता है, तो इस विच जरूर तुह सहयोग देना है। ये बड़ा बड़ा एक पर्व है जड़ा साड़ी नीम जो पक्का करता है, साड़ा ग्रां पक्का होगा ता ही साड़ा देश जड़ा सा पक्का हो सकता है, तो जरूर साड़े किसान साथी सारे मिली जुल के कोई भी ढिल ना बरत है, हरेक एक दूए जरूर प्रोत्साहित करा कि अग्गे उठी के सह वोट पाना अग्गे हो, तो यह गलबात जरूर साढ़े किसान भाइयों गठी बननी है। कने अपनी किसान महिला जड़ियाँ ने सह भी बड़ी चढ़ी के अग्गे आन, कने अपनी किसान भैनों अग्गे बधान। इस गलबात के बाद हूँ एक संझा का बेला, एक प्यारा दिया लोक भजन जरा सा किसान साथियों तक पहुँचाना चाहेंगे, तो आओ सुनते प्यारा दिया लोक भजन।

0: inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: किसान साथियों, इसी प्यारे दे लोक भजन कने संदेश के बाद मौजा ग्राइनी कार्यक्रम इतनी संपन्न हो करता है। संपन्न करने से पहले तो दसीए कि इस कार्यक्रम च सू तकनीकी सहयोग दिता सुरेंद्र कपूर ने, कने इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं जितेंद्र पाल सिंह, इसी कने ट्याले दे लंबरदार,
4: कने चुनिता अनुमति।
3: अच्छा जी, जय हिंद जी।

अभी आपने सुना मौजा ग्राइंडिया कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने को है थोड़ी देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, पहले हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्म योगियों पर भरोसा जताया है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। नवनियुक्त 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इसी कार्यक्रम में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
1: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
0: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ती कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानों भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी ने आज कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिनों के अंदर विस्तृत कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने आरोपियों की गिरफ्तारी, जांच, पीड़िता की सुरक्षा, परामर्श और पुनर्वास उपायों सहित तत्काल सख्त और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने केरलम में बुधवार तक अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त करते हुए 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को 27 मई तक केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटवर्ती इलाकों में ना जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi and U.S. Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the inter-U.S. Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on the Prime Minister Modi at Seva Tirth in New Delhi this afternoon. Mr. Modi said in a social media post that India and the U.S. will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and NSA Ajit Dobhal were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio briefed Mr. Modi on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defense, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education, and people-to-people ties. Mr. Rubio shared U.S.'s perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of citizens. He made these remarks while addressing the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. The Prime Minister highlighted the world is eager to be part of India's growth journey. He said that the country is also partnering with various countries of the world aimed at providing opportunities, employment and global exposure to the youth of the nation.
3: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग-अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ-साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: The center has asked Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by the 5th of next month, citing that the land was required for strengthening defense infrastructure. An order issued by the Land and Development Office under the Housing and Urban Affairs Ministry yesterday stated that the land is essential to fulfill urgent institutional needs, governance, infrastructure,

0: किसानवाणी कार्यक्रम सुना करदे सारे किसान बागवान भाई भैणा जो लंबरदार दी तरफ ते राम राम कने मेरे कन्ने बैठे हन चुन्नी ताई जी तुहानू भी मेरी तरफ ते राम राम
1: राम राम जी कने दोनों जो दोनों हाथ जोड़ी के सारे श्रोतां जो एक बारी फिरी ते जेड़े टियालियां पर बैठे हन या घरां च बैठे हन रसोई च बैठे हन तिन्हां सारयां जो बड़ी ज्यादा राम राम।
0: बिल्कुल तुहाडी राम राम जिहड़ी सकबूल होई कने अज दसा पिया अज टियाले पर कम्मे दी गल क्या करा करदे हन।
1: हुन तुसां दिखा कि गर्मियां ज़्यादा पवदियां
0: ने
1: कने पहाड़ां दा तापमान भी काफ़ी बढ़ गया तो यह तो जरूरी है कि जल स्रोतों से पानी घट हो जाता कन्ने कन्ने खड्डा नालों च भी पानी घट हो जाता इसका सीधा असर हर कुसी के जीवन पर पौंदा है तो खास करके किसान भाइयों की कन्ने बागवानी कन्ने खेतीबाड़ी पर सीधा असर दिखने जो मिलता है। तो तुम समझिए हमने अहां कुछ विषय पर गल करनी है असा जी गल करनी है सह है जल संरक्षण तकनीकों के बारे च कि यानी कि पानी जो बचाने का ही अहां क्या क्या उपाय कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल ठीक लाया भी जल है तो कल है बोलिया।
1: हाँ जी हाँ जी कने जल ही जीवन है
0: जी।
1: इतिहास भी गवाह है जिथु जिथु पानी होए उथु ही इंसान दी बस्तियां कने सभ्यता बसियां कने इतिहास बने। बड़े पते दी गल है कि खाने दे बिना इंसान कुछ दिन जिंदा रह सकदा पर पानी बिना जिंदा नहीं रह सकदा।
0: जी जी
1: हुण तुसां दिखा कुछ खास तकनीकां जिहड़ियां बड़ियां साधारण उन्हां जो अपनाई कने असां पानी सीमित रख सकदे। यदि अहां नलकियां जो खुला ज्यादा देर नहीं रखन ता पानी बच सकता बरखा का पानी जोड़ी के रखन ता पानी बच सकता ज्यादा तो ज्यादा पेड़ लगान ता पानी बची सकता कने घर कने दफ्तर च पानी की बचत करन कने खास करके बच्चा जो स्कूले च अध्यापक ये सिखान कि पानी वो कियां बचाई सकता
0: है। जी बिल्कुल
1: कने सीधा पानी के बजाय सीधा पानी देने के बजाय थोड़ा ड्रिप सिंचाई किसान भाई करन या बूंद बूंद प्रणाली विधि जिसो बोलते हैं उसको अपनाई के सस्ते कने आसान तरीके कने काफ़ी ज़्यादा पानी बचाई सकते हैं। बरखा का पानी संचन करके छोटे तालाबा या गर्मियों दौरान पानी के भंडारण से काफ़ी आपूर्ति हो सकती है। तला खूह बावड़ियाँ उन्हों का सुधार कर सकते हैं कने जड़े साडे जल स्रोत हैं उन्होंने संजोई के रखा चैक डैम भी बनाना काफ़ी वधिया विकल्प है। उद्योगिक स्तर पर पानी जो रिसाइकल करके रिट्रीट करके पानी का पुनः उपयोग कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल तो ठीक लाया चुन्नी ताई ये तो एक ऐसा मैं तो यह बोलगा भी धन है साढ़े ताई कि अहाँ दिखा हिमाचल से ऐसे स्वर्ग रूपी जगह पर रहा करते हैं भी कुथू नाड़ू कने कुथू मतलब पानी की उपलब्धता नहीं है। परम पिता परमात्मा ने दिखा पता नहीं कुथू तो जमीन से निकली के पानी साढ़े तक पुजा करता बौड़ियों के माध्यम ने खूहों के माध्यम ने या नाड़े जड़े बगा करते थे ना दे माध्यम करने आज भी तुसा दिखा भी जितू प्राकृतिक स्रोत है तिना पर पीने ताई लोग दूरे दूरे दा पानी गर्मियों च कड़ोलू च लिया करते कने इस विच औषधीय पानी है कई तरह बीमारियां खत्म करने की ताकत है। तो ये बोलना चाहेंगे कि भाई एक तो इन्हों की रक्षा करा उपरे तो क्या इन्हें साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा। दिखा किसान साथियों भाई जड़ा साढ़े ये जड़े जल स्रोत हैं इन्हें बचाने ताई इन्हें बधाने ताई जड़ा है सांझो बोलते हैं। दिखा चुन्नी ताई जी भाई हिमाचल की जवानी कने पानी बोलिया बेकार ही चली जाता है ना जी। जिस हिसाबे कन्नै सांझो साढ़ा जवानी की गल करिए दिखा भाई हाड़ी खेतीबाड़ी इतों उद्योग धंधे घट है तो साड़ा युवा वर्ग जरा असर नौकरियां करने ताई मतलब पदरे इलाकों चली जाता चाहे पंजाब हरियाणा दिल्ली इतों चली आ करते है ना जी। कने पानी की गल करिए पानी जलू बरखा होंगी छल छल करता पानी निकली जा करता तिसते सू कोई फायदा नहीं होगा।
1: दूसरी गल है कि खाने के बिना आदमी रह सकता पर पानी बिना एक दिन भी कड़ना मुश्किल हो जाता।
0: बिल्कुल
1: साढ़े वास्ते नहीं इंसान पशु पक्षी पेड़ पौधे इन सारे वास्ते नष्ट हो जाते हैं।
0: जी बिल्कुल कने इन्ह स्रोतों का अगर अहां जल स्रोत बचाई के रखना चाहते हैं तो हाँ जो चैक डैम जड़े हैं सह बनाना चाहिए। बरसाती का पानी जड़ा अज भी वन विभाग जड़ा सह कई जगह जंगलों च बड़े बड़े खड्डे जड़े सह बनवा करता ताकि तिना च पानी जड़ा है सह रुकी रहा कने रुकी के पानी जमीन के अंदर चली जाए। तो इस तरीके इन तरीकों लाई कने असं ये कर सकते भी जो साड़ा पहाड़ का पानी इं बेकार निकली जा करता तो रोकी रोकी के जरा सह अगे उतारना है ताकि ये पानी हौली हौली जरा सह रिसी के जमीन के अंदर जाए कने साड़ा भूमि जल स्तर जरा सा बधे है ना जी। अज समस्या आने वाले टाइम में किसान साथियों कई तरह के युद्ध हुआ करते कोई कैस ताई कोई कैस ताई आने वाले टाइम में पानी ताई भी युद्ध शुरू होने कुछ जगह च तो हो ही भी गए हैं लेकिन सांझो अपना स्रोत जड़े इन सब बचाने हैं इन्हें साफ सफाई युवा साथियों पर बड़ा हाँ ये कर गए कि भाई सह जरूर जलू भी समय लगे तो अपन बौड़ियाँ अपने नाड़े अपने खूहें जड़े तिने साफ सफाई पर पूरा ध्यान देन ता ताकि ये जल स्रोत जेहड़े सब बची सकन। कने किसान साथियों ने तो यही है जियां हिमाचल की जेहड़ी खेतीबाड़ी है सब लगभग 70-80% जेहड़ी सब बरखा पर निर्भर है, बड़ी घट खेतीबाड़ी है जेहड़ी कि सिंचाई पर निर्भर है। तो इस विच भी आज तुहां दिखा भी हिमाचल के पानी कने पूरा पंजाब हरियाणा कने राजस्थान तक जेहड़ा जितू कुछ नहीं उगता था तो अज भी तिथू करोड़ों दी फसलां उगा करदियां। तो यह पानी जेहड़ा है इसे बचाना कने इसकी सेजी के रखना इसका सही तरीके कने इस्तेमाल करना ये बड़ा जरूरी है। कने खास करके अहां भैणां ने आग्रह करगे कि साड़ियां किसान भैणां जिहड़ियां ने इस च पूरा सहयोग दिंगियां। कने ये पानी जेहड़ा सा अमृत तुल्य पानी है इसे बचा कने इसे बधा, है ना जी। तो इस गलबात के बाद हूँ दिखा भाई रौनक का टाइम है, कने अहां अपने किसान साथियों सुनाने एक प्यारा दिया लोक गीत।

0: किसान साथियों इसी प्यारे दे लोग भजन करने अहां तो दसीए भी इस कार्यक्रम विच असा तो जो किसानों ने भी मुलाकात कराते रहते कने तिना किसानों के माध्यम कने अहां अपनी खेतीबाड़ी जो भी उन्नत करी सकते तिना तजर्बे तिना तरीके अगर अहां जो मतलब समझ आओ तो अहां तिना तरीके कने लगी कि अहां भी अपनी खेतीबाड़ी जो उन्नत बनाई सकते। तो अज असा तो कने एक उन्नत किसान मिला करते हैं आवा करते हैं कने गलबात भी क्या है अपने तजर्बे साढ़े कने साझा करा करते हैं।
1: साथियों साड़ी ये कोशिश होंगी कि असा ट्याले पर तुहांजो नित नई जानकारी पुजाइए और इस वास्ते कदी कदी असा अपने ट्याले पर कृषि विशेषज्ञां जो विज्ञानिकां जो और कदी कदी अपने अनुभवी किसानां जो ट्याले पर सद्दी लैंदे न। तां अज असां दे ट्याले पर एक उन्नत किसान आए हन आवा जानदे न इन्हां दी खेतीबाड़ी दे बारे च। हां जी नमस्कार जी।
2: नमस्कार जी।
1: जी अपना नां दसने कने कुत्थों दे रहने वाले ने तुसीं?
2: मेरा शुभ नाम राम सिंह जी, गांव मेरा समीरपुर है जी, पोस्ट ऑफिस समीरपुर, तहसील डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जी, मतलब जिले समीरपुर ग्रां च। अहां दुबारी अपनी जमीन कुंजा कराली साड़ी तीन भरा दी सहदी है। इक मैं डुग्यारी मतलब एक ना जमीन लग मुल लियो जहाँ च मैं मतलब सब्जी वगैरह उत्पादन रखिया, मशरूम प्लांट लगाया
1: जी,
2: कन्या डिंगरी का काम भी कर दे, बगीचा भी लगाया, तीन टैंक में मछलियां भी बनाई, मच्छी तालाब भी बनाया जी, उसके बावजूद सब्जी वगैरह लगाते, कणक भी थोड़ी बहुत बाही दे। इबे पूरे पूरे एरिए बीह कनाल च मैं सरसों बाही हुआ है। तो 27 कनाल का जो प्लॉट मेरा डुग्यारी, मैं ज्यादातर तिथि रहा।
1: राम सिंह जी तुह अपनी जमीन के बारे सू दसा कि देखा 27 कनाल जमीन थोड़ी
2: मेरी
1: डुग्यारी कुंजा करनाल जमीन जी थोड़ी समीरपुर च
2: है।
1: इतनी सारी जमीन च सारी खेतीबाड़ी करदे, मतलब सारी बीजी होंदी, कोई खिल्ला तां नहीं पाया?
2: खिल्ला नहीं पाया जी,
1: मतलब कोई खेतर खिल्ला नहीं है, कने सारी जड़ी ऐसे तो हां जुताई
2: जुताई कर
1: कीती हो, कने सारियां च फसलां लगाईयां, बड़ी बाकी गल है सारी जमीना च जड़ा ऐसे खेतीबाड़ी करा करदे
2: जी जी।
1: क्योंकि कई बारी असां देखदे न आंदे जांदे रस्ते च तां कई लोकां जड़ियां ऐसे अपनियां जमीनां खिल्लियां पाई थियां।
2: हां जी हां जी हां जी। और मेरा विचार ही इस तरीके थी कि खेतीबाड़ी करिए, अभी उते ही दुबारी मतलब जमीन वगैरह लीयो, कने दुबारी खेती करा दे, सब्जी उत्पादन नहीं करा दे, बाकी अहां मशरूम दा भी कर दे, डींगरी दा भी ऑर्गेनिक है, केमिकल वगैरह इस्तेमाल नहीं करते। हां जी
1: राम सिंह जी, तुहां खेतीबाड़ी दी गल करा दे तां जिहड़ी तुहां इह जमीन डुग्यारी च है, इह पानी लग है?
2: हां जी पानी लग है, पर हाँ अपने टुल्लू पंप भी लगाए, मोटर भी लगाई है, इंजन अच्छा, भी रखे मैं,
1: मतलब सिंचाई दी जड़ी ऐसा
2: अपनी पूरी फैसिलिटी है दिवाली
1: मतलब। बिल्कुल बढ़िया जी।
2: हाँ जी हाँ जी।
1: तो इस वक्त साग सब्जियां दी यहाँ गल करा दे, ता साग सब्जियां च क्या कुछ लगाया तो हाँ?
2: इस टाइम मूली लाई है, गाजर लगाई है, मटर लगाया जी, हल्दी लगाई है मैं ऑर्गेनिक ऐसा भी जी, अरबी लगाई है, अरबी दे लाई, बाकी कोई 20 कनाल च मैं सरसों बाई है, उसके अलावा दिवाली मतलब बाकी तरली है, तरली मैं पूरी बाउंड्री च लगाई है, सारी जितनी भी जमीन है साड़ी, ते जे साइड च मैं जो वृक्ष वगैरह लगाए न, कहीं कुछ और भी दिवारी कुछ सैतूत वगैरह के बूटे भी हैं मेरे अल, तिना दे टक्का टक्का मैं तरली पूरी बाउंडी च लगाई दा 27 कनाल च। अच्छा। इबे भी मैं तरली 180 रुपये पर के जी के हिसाब से।

0: बारी मेरी तड़ी बिकी गई, तकरी मैं कोई 50-55 हज़ार की तड़ी भी बेची जी। बे
1: अच्छा
0: मशरूम डेली जी ऐसा सारा डेली दर डेली चली रहा। हाँ दोबारे इस टाइम 600 की बैग रखे है जी।
1: अच्छा
0: हाँ जी इस बिच ये है कि डिंगरी दे भी बनाए, हाँ कोई 25-30 बैग डिंगरी दे बनाई छोलन ते। हाँ ट्रेनिंग भी की थी मशरूम भी ते थोड़ी बहुत दोबारी, मतलब जिस टाइम खाद बनाते उस टाइम तो यूरिया वगैरह कने बाकी और चीज कुछ पाते सह दोबारी ते खाद बनाने वास्ते। पर डिंगरी एक ऐसी चीज है जेडे कि हाँ सिर्फ पानी सेड़ना होंगे तूड़ी जो, या दालों की तूड़ी सेड़ लीजिए, या दोबारी छलियां गुलमां पर भी बनी जाती डिंगरी, या किसी भी किस्म की दाल हो तीरी तूड़ी कितने भी डिंगरी बनी जाती। इस बीच दालां वगैरह भी लगाते, कुल्थ वगैरह भी लगाते हैं जिस तरीके अपनी जमीन डिंगरी का मशरूम का। बाकी कैंचुआ खाद प्लांट लाए हो मैं ऑरगेनिक खादा दबारी जी गन जीवा अमृत वगैरह, जीवा अमृत वगैरह ये भी अहम अपने खुद ट्रेनिंग का कीती हैं।
1: जी राम
0: जी
1: सिंह जी
0: जी
1: तुहां बड़े अच्छे खेतीबाड़ी च काम करा दे, कने इतना सब कुछ जड़ा ऐसा अपना खेतीबाड़ी च लगाया, कने कने तो हम मशरूम उत्पादन डिंगरी उत्पादन दे बारे च भी गल करा दे।
0: जी जी
1: तां राम सिंह जी तुहां सांझो ये दसा थोड़ा दिया कि भई ये जड़ा मशरूम उत्पादन है या डिंगरी उत्पादन है
0: जी जी
1: इस दे बारे च तुसां यो जड़ा ऐसा है कुतु ते प्रेरणा मिली कि भई इस विच जड़ा ऐसा है अगर अहां खेतीबाड़ी करदे ने इसकी तो ज़्यादा मुनाफा हो सकदा, कने कियां तुहां सोलन पुजे ट्रेनिंग लेने ताएं, कियां तुहां विभाग कने जुड़े, ये सारा जड़ा ऐसा अपने
0: विभाग
1: अनुभव।
0: कन्नै के वी कांगड़े च ये सांझो प्रोग्राम हुंदा था, के वी कांगड़े वाले सांझो सद्दे रहिंदे, महाविश्वविद्यालय वाले जी पालनपुर वाले भी सद्दे रहिंदे सांझो, कि एग्रीकल्चर वाले ब्लॉक रैत पाउंदा रैत वाले भी सद्दे रहिंदे, हॉर्टीकल्चर वाले भी सद्दे रहिंदे। जिस टाइम जायका वाले का कम चलिया हा अफगानिस्तान की 13 आदमी की टीम आई थी,
1: अच्छा
0: दिल्ली की मीडिया की टीम आई, जापान दे दबारी मेरे 3 बारी आई चुके, मतलब 5-5, 6-6 आदमी कहते थे प्रोग्राम, किसान मेला भी करते रहे, मेरे हल्ते थी आएगी।
1: राम सिंह जी थोड़ा दिया तो हाँ अपने प्रशिक्षण दे बारे च दसने हो।
0: सर्टिफिकेट भी लंदे जी,
1: अच्छा जी
0: मैं 2 बारी मैं पालनपुर की थी, पोलियो हाउस भी लगाए मैं पहला, 4 पोलियो हाउस 1,000 स्क्वायर मीटर पोलियो हाउस भी लगाए थे,
1: जी
0: फिर बाद मैं पोलियो हाउस उखाड़ लिए हुए। अजकल जितनी ज्यादा तादाद भी रखिए कमाने तो ज्यादा कमाए सकते, पर गल एक मार्केट च बिकना भी चाहिए, तो हाँ क्या करते कि हाँ दुकान दुकान च सप्लाई करें दे, या हाँ अपने मोटरसाइकिल पर घर घर जाए कि भी बेची
1: ठीक है
0: लेंदे।
1: जी।
0: हाँ तरीके
1: राम सिंह जी अहाँ गल की मशरूम दी डिंगरी उत्पादन दी
0: जी जी
1: खेतीबाड़ी दी साग सब्जियां दी अहाँ गल कर ली,
0: जी
1: इसके अलावा हाँ अगर बाग बगीचे दी गल करिए
0: हाँ
1: तां
0: जी
1: बाग बगीचे भी होने तुहाड़े अल।
0: हाँ जी इस टाइम मेरे हल कोई 35 अमरूद चले हो जी, 8 मेरे हल इस टाइम जापानी फल न, 15 की मेरे हल अखरोट चले हो, उसके अलावा आड़ू न 12 बूटे आड़ू दे थे, पलम थे मेरे हल को 15 की बूटे पलम दे थे, इसके अलावा नींबू भी अन लगाए मैं जी, सेब लगाए मैं हाँ जी, तो 60 बूटे मैं सह लाए हे, तो 2 बूटे टिके रहे बाकी तो खत्म हो गए, कीवी लाया हम
1: नहीं
0: इसलिए।
1: राम सिंह जी तुसा कदी अपनी जमीना दी मिट्टी दी जांच भी करवाई?
0: जांच तो नहीं करवाई मैंने
1: का जी अपनी जमीना दी मिट्टी दी जड़ी जांच ऐसे जरूर करवाई लेना चाहिए, कने तिस्ते ही सांजो पता लगदा कि साड़ी जमीना च किन्ना तत्वां दी जड़ी ऐसा कमी है
0: ठीक है
1: और
0: जी।
1: कौन
0: हाँ जी
1: तत्व जड़े ऐसे सांजो जरूरत है ना।
0: ठीक है
1: तो
0: जी
1: इस तरह अगर अहां अपनी जमीना दी जड़ी मिट्टी है तो इसकी जांच करवाई के खेतीबाड़ी करदे ने
0: जी जी
1: तो मुझे लगता है कि जेडे तुहाड़े पेड़ पौधे सूखने की जड़ी समस्या है ये शायद खत्म हो सकती। जापानी फल भी हैं कने अमरूद भी हैं तो इन्हों की जड़ी ऐसा कितनी एक पैदावार होंगी?
0: इन्हें पैदावार काफ़ी हो जाती जी, मतलब ठीक लगते इन्हें कुछ बूटे जो मेरे हाल ऐसे ऐसे 12 मासी भी हैं शायद अजकल भी लगे हैं।
1: राम सिंह जी इसके अलावा अहां गल करिए पशु पालन की तो पशु पालन च भी होना कुछ ना कुछ,
0: पशु पालन च भी है गाय रखी है, मतलब जी
1: कितनी गाइया?
0: 3 गायें जी।
1: अच्छा
0: हाँ जी
1: सुइया ने के
0: हाँ जी 2 सुइयां इस बीच
1: दूध दध।
0: दूध इस्तेमाल करते, परिवार च इस्तेमाल करते, थोड़ा बहुत बिकी भी आंदा।
1: इसके अलावा और जड़ा तुहां अनुभव बाहर सीखी के आए कोई ट्रेनिंग ले के आए सै तुहां साढ़े ने साझा करना चाहते हो ना?
0: हाँ जी भाई जो ट्रेनिंग दिखा एग्रीकल्चर च ले दे, एग्रीकल्चर वाले समझो मतलब जिस तरीके ने दबारी मतलब महाविश्वविद्यालय से पालनपुर गए, तो पालनपुर वाले असाई मशरूम की ट्रेनिंग दी, मशरूम के बाद दबारी मैं पशु पालन विभाग वाले की भी ट्रेनिंग की, सर्टिफिकेट भी दी इतना साझो, मतलब
1: जी
0: 5-5 दिन की ट्रेनिंग, कभी 3 दिन की ट्रेनिंग, छोलन गए हाँ 2 बारी गए, 1 बारी डिंगरी की ट्रेनिंग करने वास्ते गए, 1 बारी मशरूम की, 1 बारी मतलब फिर यहाँ एक स्टाका मशरूम की ट्रेनिंग की।
1: जरा मछली पालन
0: हाँ
1: वास्ते
0: जी
1: तुहां टैंक भी बनाए हो ना
0: हाँ जी
1: ता ये मछली पालन कितना क्या तुहाड़े वल?
0: मछली पालन मेरा पिछली बारी भी कम से कम 400 क्विंटल इतना 1.5 लाख रुपया सब्सिडी भी देती मुझे मछली पालन भी लगा लिया। हाँ जी
1: राम सिंह जी इसके अलावा तुहां गल करा दे है कि भई समीरपुर च तुहाड़ी पुश्तैनी जमीन है ना
0: जी
1: जी,
0: जी
1: ਤਾਂ ਤਿਸ ਵਿੱਚ
0: ਤਿਸ ਚ ਹਾਂ ਕਣਕ ਦਾਨ ਵਗੈਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਬਜ਼ੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਜੋਗੀ ਮਤਲਬ।
1: ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨਾ
0: ਜੀ ਜੀ,
1: ਤਾਂ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ
0: ਜਿਹਾਂ ਸਰਸੋਂ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਸਰਸੋਂ ਕੇ ਵੀ ਕਿਆ ਲੈਂਦੇ ਤੀਹ ਮੀ ਜੋ ਵੀਹ ਕਨਾਲ ਜੋ ਜੀ ਵੀਹ ਕਨਾਲ ਦੁਬਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸਰਸੋਂ ਕੇ ਵੀ ਕਿਆ ਲੈਂਦੀ ਲਾਈਓ, ਕਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਨਪੁਰ ਤੇ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਮਾਪਿਸ ਦੇ ਆ ਲੈਂਦੇ। ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੜੀ ਦਾ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਟਰ ਦਾ ਬੀਜ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਗੇਹੂੰ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖੀ ਲੈਂਦੀ ਬੀਜ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਈ ਐਸੇ ਦੁਬਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹਨ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਿਆਰ ਮਨ ਵਿੱਚ।
1: ਅੱਛਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਰੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ
0: ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਚ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਬਾਕੀ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਤਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ।

0: डेढ़ की करेट अल रुपया मेरे अल लगाने मतलब बीज का।
1: इससे भी जड़ा ऐसा काफी आमदनी मिली
0: हाँ इससे करीब मतलब 180 रुपये पर किलो बिकती रही मेरी ये तीज
1: जी।
0: मतलब अंतली
1: चलो
0: जी।
1: बड़ी बाकी गल है जी।
0: जी
1: अच्छा राम सिंह जी, ये सारा कुछ तुह संभाला देता है, इस विच तुहाड़ी कौन कौन मदद करता परिवार च भी
0: शमीरपुर ज्यादातर रहना, मैं ज्यादा लेबर वगैरह इस्तेमाल कर लेंदा
1: जी?
0: तो नहीं भी चलो रोजगार मिली जाता, सारा काम भी हो जाता मतलब।
1: इसी कड़ी च हाँ तुहाड़े ते एक संदेश जड़ा ऐसा आने वाली पीढ़ी वास्ते लेना चाहेंगे कि क्या कुछ करना चाहिए?
0: भविष्य बारे की तदबीर तकदीर जो बदली दी तो गल है मेहनत करने ते बारी हर काम हो जाता कि जेड़ा चाजा डबाई दे तुसी ओ तूफान बोलते, जेड़ा तूफान ने टकरा तुसी ओ इंसान बोलते। तो गल है नौवीं पीढ़ी जो हाँ तो यही संदेश देंदे कि सच्ची मेहनत करा, सच्ची मेहनत करके तो खेती बड़ा कुछ है, 1.5 लाख रुपये पर मंथ से बड़े आरामे ने कमाई सकते मतलब। जे नौकरी नहीं मिलती है तो अपनी एग्रीकल्चर साइड च आई या बगीचा लगाई दिया, बाकी मशरूम प्लांट बारी घर बैठे कम है, डींगरी का कम है, रेशमा दियो। तो गल है कम करने ते बारी हर काम च फायदा है, पर हुन आया तो करने ते ही।
1: जी राम सिंह जी, तुह अपने अनुभव साढ़े ने साझा किए ने, तुहां दा बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: किसान साथियों, आशा करदे भी इस जानकारी ते तुसां भी अपनी खेतीबाड़ी जो और ज़्यादा हरा भरा जड़ सा करगे। इस जानकारी ते बाद हुण हाँ अपने किसान साथियों लेके चलना अपनी गलबात दी तरफ। गलबात विच असा गल करनी जंगलां दी अग्गा दे बारे च। किसान साथियों, अज भी मैं दिखा करता था भई जड़े साढ़े धौलाधार दी पहाड़ियां च न कुथी कुथी जड़ी सै अग दुस्सा करदी थी। कने इहाए ओ अहां एह गलाना चाहंगे भी अगर प्रकृति ओ अहां नहीं बचांगे तां साढ़ा बचना भी आने वाले समय च जड़ा साढ़ियां आने वाली पीढ़ियां तिन्हां दा जिंदा रहना जड़ा सा मुश्किल है। इस विच प्रकृति जड़ी है सानू हमेशा ये आगाह करती रहती, चाहे से तो हम मौसम दिखा करते बोलते भी जी गर्मियां बधा कर दियाँ सर्दियां बधा कर दियाँ, लेकिन कित्या कराया जड़ा ऐसा इंसान का ही है।
3: पर जी हाँ, पर्यावरण जो बचाना चाहते, अगर हाँ जंगलों बचाना चाहते ता ही साढ़े जंगल हरे भरे रहने कने हवा पानी कने पर्यावरण जड़ा ऐसा सुरक्षित रह सकता। साढ़े जेड़े भी नेड़े तेड़े ग्रां हैं जंगलों के नज़दीक, इन्हों के नौजवान कने युवक जो सतर्क रहना चाहिए, उन्होंने एक टीम बनाई लैनी चाहिए कि राती दिने सदे पहरा देन कि कोई जंगलों जो अग ना लगे।
2: बिल्कुल तो ठीक लाया भी दिखा, अगर इन्होंने जंगलों से असा लकड़ी लिया करते, फल लिया करते, घा लिया करते, तो इन्होंने जंगलों अग्गी तो बचाना भी साढ़ा ही फर्ज बनता। कने थोड़े दे फायदे पिछे अगर अहां ये काम करा करदे तां ये बड़ी भारी प्रकृति ने खिलवाड़ है। कने खास करके अहां तां हुण युवा पढ़िया लिखिया युवा जड़ा ऐसा जड़े ग्रां जड़े जंगलों के बखे रहिंदे हन, मैं तां तिन्हां युवा साथियों ने आग्रह करगा कि भई इस विच दंड का प्रावधान भी है। अगर कोई तुहानू जो अग लांदा दुसदा है कि इन्नी बंदे अग लगाई है जंगले च, तुहां जरूर तिसदा ना पुलिस पर फोन करके 100 नंबर पर फोन करके तुहां तिसदा दसा कि इन्नी बंदा जड़ी से अग लगाई है। इस कम्मे विच एक तो तुहां दिखा भी यहाँ ये बोल के भी कई पशु पक्षियों की जान बचानी, कन्ने कन्ने इस प्रकृति जो बचाना, तो ये सारिया गल्लां जड़ियां ने साडे युवा साथी जड़े खास करके कन्ने साडे ग्रां दे सारे पता हुंदा कि कौन जंगल की तरफ गया था कन्ने कूदा ये काम हो सकता, तो हाँ जरूर तिन्हां ने आग्रह करके कि भई इन्हां प्रकृति को बचाने तई अपना अपना सहयोग करा। कन्ने इस प्रकृति को जितना बचांगे उतना प्रकृति सानू दया भी करती है, लेकिन हाँ फिर भी इस कन्ने व्यवहार जड़ा साडा ठीक नहीं है। सिर्फ एक इंसान रूपी जंतु ही है जड़ा प्रकृति को नुकसान पहुँचा करता। अज भी असा ये गल करिए कोई जीव जंतु मतलब प्रकृति ने इतना खिलवाड़ नहीं करा करता जितना मानव आदमी मतलब इंसान करा करता है। तो असा चाहेंगे कि भी जरूर इस कम्मे च सहयोग दिया वन विभाग जड़ा इस विच लग गया है, है ना जी। कने किले आदमी का काम नहीं है, काफ़ी लंबा चौड़ा जगह है, जमीन है जिस पर कोई भी आदमी कुथी भी शरारत कर सकता, तो ये निगरानी जड़ी है सा ग्राएं दे तरफ ते होना चाहिए। कने हाड़े युवा साथी जड़े से इस विच सहयोग दे सकते, कने कोई भी जड़ा अग लगांदा है से तिसियो पकड़वाना जड़ा सा बड़ा जरूरी काम है, ता ही ये कुछ लोग जड़े शरारती तत्व होंदे ता ही ये सुधरी सकते हैं। तो अहां ये चाहेंगे कि भी इस अपनी मुहिम च जड़ा ऐसा हाड़ा हरेक युवा साथी जड़ा सा कंधे ना कंधा मिलाई के इन्हें जंगलों में बचाए जी। बिल्कुल, तो आशा करते भी हाड़े किसान साथी जरूर इस विच सहयोग करके कने अपने जंगलों इन्हें पशुधन जो जड़े हाड़े जंगली जीव हैं इन्हें बचाएंगे। इस गलबात के बाद हूँ हाँ फिर तो अपने किसान साथियों एक पहले मौसम सुना लेंदे कि मौसम का क्या हाल रहा जरा चुन्नी ताई दसा जरा।
3: गल करिए प्रदेश के प्रमुख शहरों के अधिकतम कने न्यूनतम तापमान की, तो पिछले 24 घंटे च प्रदेश च तापमान नहीं रहा। चंबा च रहा 34 डिग्री सैलसीयस, न्यूनतम रहा 18 डिग्री सैलसीयस। धर्मशाला च रहा 26 डिग्री सैलसीयस, न्यूनतम रहा 16 डिग्री सैलसीयस। कांगड़ा च अधिकतम तापमान रहा 34 डिग्री सैलसीयस, न्यूनतम रहा 21 डिग्री सैलसीयस।

0: ऊना च अधिकतम तापमान रहे 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहा 63 डिग्री सेल्सियस, कने नाहन च अधिकतम तापमान रहे 38 डिग्री सेल्सियस, कने न्यूनतम रहा 25 डिग्री सेल्सियस।
1: जी, तो इसके बाद आवाज सुन दे प्यारा दिया लोक गीत।

0: इसी प्यारे दे लोक गीत कन्नै किसानवाणी कार्यक्रम का समय इतनी संपन्न होआ करदा। संपन्न करने से पहले तुहानूं दस्सिए इस कार्यक्रम च सांझो तकनीकी सहयोग दिता सुरेंद्र कपूर ने, कन्नै इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं जतेंद्र पाल सिंह, इसी कन्नै टियाले दे लंबरदार
1: कंचुनी ते अयुध्या अनुमति।
0: अच्छा जी, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में यानी 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश की समृद्ध बोलियों और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने पर दिया बल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश सरकार चिट्टा मुक्त हिमाचल के संकल्प को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए प्रतिबद्ध। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए तैयारियां पूरी, पहले चरण का चुनाव 26 मई को और आदर्श चुनाव आचार संहिता के बीच प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिए फैसलों की भाजपा ने चुनाव आयोग से की शिकायत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है, यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: आज 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। इस बीच भाजपा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि युवा रोजगार सृजन में केंद्र की मोदी सरकार ने 12 सालों में नया इतिहास रचा है। अनुराग ठाकुर ने आज कहा कि रोजगार मेला युवा रोजगार के प्रति मोदी सरकार की बेजोड़ प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का कार्यकाल युवाओं को रोजगार, सम्मान और आत्मनिर्भरता देने वाली सरकार के रूप में याद किया जाएगा। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश की समृद्ध बोलियों और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। राज्यपाल ने आज लोक भवन शिमला में उनसे भेंट करने आए वरिष्ठ लेखक डॉक्टर ओपी शर्मा से बातचीत में कहा कि प्रदेश की विभिन्न स्थानीय बोलियां यहां की पहचान, परंपराओं और लोगों की सामूहिक संस्कृति को प्रदर्शित करती हैं। इन बोलियों का साहित्यिक और लिखित माध्यम से संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ी रहें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार चिट्टा मुक्त हिमाचल के संकल्प को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में कहा कि सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी से इस चुनौती का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जहां अपराधियों पर कानूनी शिकंजा कस रही है, वहीं नशे से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए भी कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार के चिट्टा मुक्त अभियान के साथ अभी तक राज्य में 2,34,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस चिट्टे के खिलाफ 5 जून को शिमला में एंटी चिट्टा व स्वच्छ पर्यावरण जागरूकता मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन करेगी। प्रदेश पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने शिमला में कहा कि इस दौड़ का उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं और आमजन को नशे के विरुद्ध एकजुट करना और उन्हें पर्यावरण संरक्षण, फिटनेस और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करना है। 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस भी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिनों में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। ये वृद्धि ईरान संघर्ष और हॉर्मुज में व्यवधान के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बीच हुई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और एक निजी कंपनी कॉस्मो फेराइट्स लिमिटेड के बीच आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये MOU ग्रीन एनर्जी, एडवांस मटेरियल्स और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों के क्षेत्र में शोध और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने इसे हिमालयी क्षेत्र में ग्रीन टेक्नोलॉजी शोध की दिशा में बड़ा कदम बताया है।
2: यू हो रहा है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में और कॉस्पोम फ्राइड के बीच, ये एक हिस्टोरिकल है, एक रियल एकेडमिया इंडस्ट्री की कोलैबोरेशन हो रही है एमओयू के माध्यम से, क्योंकि कॉस्मो फ्राइट एक ऐसा चुंबकीय पदार्थ है, मैग्नेटिक मटेरियल है जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो जैसे कि हमारा ग्रीन एनर्जी सेंटर है यहाँ विश्वविद्यालय में, उस दिशा में ये जो एमओयू बहुत कारगर होगा।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने इस टिप्पणी के समर्थन के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग से स्पष्ट हो गया है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। प्रोफेसर सिकंदर ने कहा कि विपक्ष की अभद्र टिप्पणी से लोकतांत्रिक परंपराओं पर गहरा आघात हुआ है। प्रदेश में तीन चरणों में 26, 28 व 30 मई को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर है। इस बीच राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज चुनावों के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन तीनों चरणों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के विभिन्न पदों के लिए मतदान होगा। चुनाव आयोग ने पूरे प्रदेश में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। वहीं चुनाव ड्यूटी में करीब 35,000 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार द्वारा बीते रोज मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की राज्य चुनाव आयोग से शिकायत की है। इस संबंध में आज भाजपा के चुनाव प्रकोष्ठ के संयोजक जेसी शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला और मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों को चुनाव आचार संहिता की भावना के विपरीत करार दिया। प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से इस मामले में तुरंत सरकार के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में भाजपा शिमला जिला अध्यक्ष केशव चौहान भी शामिल थे। प्रदेश भाजपा मीडिया संयोजक कर्ण नंदा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार के जन विरोधी फैसलों के कारण हिमाचल देश का सबसे महंगा राज्य बन गया है। कर्ण नंदा ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वायदे पर सत्ता में आई थी, लेकिन अब पहले से मिल रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली को बंद कर दिया गया है। यही नहीं, बिजली के दाम लगभग 5.5 रुपये प्रति यूनिट वसूले जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से इस बढ़ोतरी को तुरंत वापस लेने की मांग की।
3: सरकार अपने जन विरोधी निर्णय लेने में पीछे नहीं है और एक के बाद एक प्रदेश में बिजली बिलों के झटके यह कांग्रेस सरकार आम जनता को दे रही है। सरकार जब सत्ता में आई प्रदेश में यह लोग 300 यूनिट बिजली देने की बात की थी और वो भी मुफ्त की। हिमाचल प्रदेश में मुफ्त बिजली तो गौन, पर एक यूनिट बिजली भी अगर किसी की चलती है तो उस पर भी पैसा देना पड़ेगा। अगर 0 से 125 यूनिट जो बिजली मुफ्त मिल रही थी, अब उसके ऊपर 5.44 रुपए वो प्रति यूनिट के हिसाब से बिल आ रहा है।
0: प्रदेशवासियों को एक बार फिर जोरदार गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने 26 व 27 मई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर सहित राज्य के 6 जिलों के अलग अलग स्थानों पर हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमानों के अनुसार 25 मई तक राज्य के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती रहेगी। विभाग ने इस दौरान प्रदेश के शिमला सहित मध्यम व ऊंचाई वाले अलग अलग स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी की संभावना जताई है। इस बीच बीते रोज राज्य के अधिकांश स्थानों पर हुई वर्षा और अधिक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर बर्फबारी से प्रदेशवासियों को चिलचिलाती गर्मी से हल्की राहत मिली है। आज भी राजधानी शिमला और जिला के ऊपरी इलाकों में हल्की वर्षा हुई। इस दौरान कुमारसेन और कोटगढ़ के कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि की भी सूचना है। राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों में समय पर वेतन न मिलने से नाराजगी बढ़ती जा रही है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आज निगम के कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर चालक परिचालक यूनियन के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि अगर 1 जून तक निगम के कर्मचारियों के बैंक खातों में वेतन नहीं आया तो कर्मचारी हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे। वर्कशॉप कर्मचारियों ने भी वेतन न मिलने पर टूल डाउन की चेतावनी दी है।
4: अन्य कर्मचारियों की तरह एचआरटीसी का कर्मचारी भी चाहता है कि उन्हें भी 1 तारीख को सैलरी मिले, लेकिन क्या कर्मचारी को कभी समय से वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके लिए हिमाचल पथवार निगम के कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर ये निर्णय लिया है कि यदि 1 तारीख 5:30 बजे तक कर्मचारियों का वेतन उनके खातों में नहीं डाला गया तो 12:00 बजे से सभी लोग जो है अपना कार्य बंद कर देंगे और जब तक हमारी सैलरी हमारे खातों में नहीं डल जाती तब तक हम कार्य नहीं करेंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश की समृद्ध बोलियों और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने पर दिया बल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा प्रदेश सरकार चिट्टा मुक्त हिमाचल के संकल्प को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए प्रतिबद्ध। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए तैयारियां पूरी, पहले चरण का चुनाव 26 मई को और आदर्श चुनाव आचार संहिता के बीच प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिए फैसलों की भाजपा ने चुनाव आयोग से की शिकायत। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी प्रसारित किया जा रहा था। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं देश गान।

103.4 MHz पर हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजने के हैं और इस वक्त हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं विविध गीत संगीत का कार्यक्रम सबरस। आज के सबरस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आशीष कौर और जुबिन नौटियाल की आवाज में गाए इस गीत से।

0: जी हाँ, लाइसेंस आपको अपना चैनो करार जो है वो यूं ही बेकरार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहद ही प्यारे प्यारे से गीत। प्रोग्राम चल रहा है सबरस।
1: जुड़ दे तेरे ना दे सुपने सरगी वेले नू।
0: जी हाँ, ये गीत आप सुन रहे हैं अमरिंदर गिल की आवाज।

लिसनर्स, संगीत की यही सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि उसकी कोई भी शैली हो, कोई भी आवाज़, कोई भी धुन हो, लेकिन वो सुनने पर हमेशा ही सुनने वालों को मधुर से लगने लगती है। तो चलिए प्रोग्राम में अब सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल। प्रोग्राम चल रहा है सबरस।

श्रोताओ, संगीत चाहे कोई भी हो, वो गजलें हो, नज़में हो या फिर सूफी संगीत, बस दिल को सुकून देने वाला होना चाहिए। चलिए ऐसी ही एक पेशकश हम आपके लिए लेकर आए हैं आशा भोसले की आवाज़ में।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

जी हाँ, आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं इस वक्त सबरस कार्यक्रम। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं मेहदी हसन की आवाज़ में।

श्रोता, इसी के साथ आज का सबरस कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होते हैं। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। आकाशवाणी धर्मशाला से अब आप सुनेंगे कुछ देशभक्ति गीत।

0: श्रोता, इसी के साथ देशभक्ति गीतों का यह कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा, और रात्रि 9 आप सुनेंगे News@9। कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत, और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई U23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
2: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं।

0: मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
1: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
5: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रिट्रेन करें, रिस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
2: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: विकसित भारत जीराम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल कियुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जाँच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानव से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's consistent support for peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. US Secretary of State Marco Rubio terms India as cornerstone of United States' approach towards Indo-Pacific region. Defence Minister Rajnath Singh asserts the country is becoming self-reliant in defence manufacturing, inaugurates artillery shell manufacturing plant at Shirdi in Maharashtra. Centre asks Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by 5th of next month for strengthening defence infrastructure. 90 people killed in a coal mine explosion in China. And Indian grapplers Suraj Vashishth and Sagar Singh clinch silver medals at Asian Under 23 Wrestling Championships in Vietnam. Prime Minister Narendra Modi and US Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the India-US Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Tirth in New Delhi this afternoon. Mr. Modi said in a social media post that India and the US will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jaishankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio briefed Mr. Modi on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. Mr. Rubio shared the US perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. He requested Secretary Rubio to convey his warm greetings to US President Donald Trump and said he looked forward to their continued exchanges. Secretary Rubio is on a four-day visit to India to take part in the Quad Foreign Ministers meeting on the 26th of this month. U.S. Secretary of State Marco Rubio today said that India is at the cornerstone of how the United States approaches the Indo-Pacific. Inaugurating the U.S. Embassy Support Annex building in New Delhi, Mr. Rubio said this is evident in the $20 billion that Indian companies invested in the United States and in India signing up for Pax Silica.
3: Expanded commercial ties now with more than $20 billion in investments. $20 billion in investments from Indian companies in the United States. We've deepened a security partnership through military exercises in the Indo-Pacific. And of course, as part of that, we recognize that an orderly and a secure consular system is vital to solidifying this important relationship.
2: Secretary Rubio called Prime Minister Narendra Modi and U.S. President Donald Trump as two very serious leaders who are focused on the long term.
3: Anchoring that is the relationship between the President and the Prime Minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the President had a chance to visit here, and it has carried over into the second administration, and you can just see the connection between them, and I think that's incredibly important. It is. The connection between leaders is incredibly important. These are two very

0: श्रोताओं नमस्कार। साप्ताहिक समाचार डायरी हिमदर्शन के साथ मैं ज्ञान ठाकुर। इस अंक में हम आपको जानकारी देंगे इस सप्ताह हुई मुख्य गतिविधियों के बारे में। पहले इस सप्ताह की मुख्य सुर्खियां। प्रदेश के 47 शहरी निकायों के चुनाव नतीजों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने मारी बाजी। 4 नगर निगम चुनाव के परिणाम 31 मई को होंगे घोषित। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध। अंतर्राज्यीय नाकों पर पुलिस का कड़ा पहरा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, गुणात्मक शिक्षा पर ध्यान दे रही है राज्य सरकार, भाजपा पर शिक्षा के क्षेत्र की अनदेखी करने का लगाया आरोप। और प्रदेश में लागू आचार संहिता के दौरान आयोजित की गई मंत्रिमंडल की बैठक पर भाजपा ने उठाए सवाल, चुनाव आयोग से फैसलों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग। प्रदेश में 47 शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद कांग्रेस व भाजपा दोनों ही प्रमुख दल इन चुनावों में अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। नगर निगम चुनाव के नतीजे 31 मई को घोषित किए जाएंगे।
1: मंडी जिला के शहरी निकाय चुनावों में इस बार हिमाचल की राजनीति में बड़ा संदेश दिया है। भाजपा के मजबूत गढ़ माने जाने वाले मंडी में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के बेहतर प्रदर्शन ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। सबसे बड़ा झटका भाजपा को नेरचौक में लगा, जहां कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने एक तरफा जीत दर्ज करते हुए 9 में से 8 वार्ड अपने नाम किए। वहीं सुंदरनगर में भाजपा ने जोरदार वापसी करते हुए 9 सीटों पर जीत हासिल कर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी। जिले के 6 शहरी निकायों में कुल 48 वार्डों में कांग्रेस समर्थित 23, भाजपा समर्थित 19 और 6 निर्दलीय उम्मीदवार विजय रहे हैं। उधर पूरे प्रदेश की नजरें अब 31 मई को आने वाले नगर निगम चुनाव परिणामों पर टिक गई हैं।
0: इस बीच प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए प्रत्याशी लोगों से अपने अपने पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं। इन चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए प्रशासन व पुलिस विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रदेश के सीमावर्ती जिला सिरमौर में पुलिस अलर्ट मोड पर है और 3 राज्यों के साथ लगते इस जिले में बाहरी राज्यों से शराब तस्करी की संभावनाओं पर पुलिस कड़ी नजर रख रही है। पुलिस अधीक्षक निश्चिंत सिंह नेगी ने कहा कि जिले के अंतर्राज्यीय नाकों पर पुलिस द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। उन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दौरान सिरमौर जिला में करीब 500 पुलिस व होमगार्ड के जवान तैनात रहेंगे।
2: 26, 28 और 30 तारीख को पंचायत लेवल इलेक्शन होने हैं, तो हमने जो फोर्स की रिक्वायरमेंट दी थी वो फोर्स आने वाली है और साथ साथ हमें होमगार्ड के लोग भी इसमें डिप्लूट होंगे। तो हमारे जो बॉर्डर्स हैं उसमें हमारे नाकाबंदी रहेगी, रात को पेट्रोलिंग रहेगी और जैसे हमने राजगढ़ में भी हमने 140 पेटियां शराब की पकड़ी है, तो उसी तरीके से हमारे जो प्रयास है कि बाहर की शराब या कोई जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
0: उधर कांगड़ा जिला के अति दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल में पंचायत चुनाव के लिए 26 मई को मतदान होगा और जिला प्रशासन ने इस बार विशेष मतदान केंद्र स्थापित किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा ने बताया कि मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद मत पेटियों को सुरक्षित वापस लाने के लिए हेलीकॉप्टर की सहायता ली जाएगी। उन्होंने कहा कि दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है।
3: पूरे जिले भर में 3 चरणों में मतदान की प्रक्रिया को मुकम्मल किया जाएगा। बड़ा बंगाल में भी इस बार एक हम पोलिंग स्टेशन वहाँ पर भी खोलने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार हमारा पंचायत का चुनाव गर्मियों में हो रहा है और काफ़ी लोग बड़ा बंगाल में माइग्रेट कर जाते हैं, तो वो लोग भी अपने मत के उपयोग के अधिकार से वंचित ना रहे, इस दृष्टि से ये मामला माननीय आयोग के समक्ष रखा गया था और माननीय आयोग ने निर्देश दिया कि हमने वहां पर भी पोलिंग स्टेशन एस्टैब्लिश करना है।
0: इधर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए होने जा रहे चुनाव में 10,854 पदाधिकारी निर्विरोध भी चुन लिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इनमें 85 पंचायत समिति सदस्य, 176 ग्राम पंचायत प्रधान, 286 उप प्रधान और 10,307 वार्ड सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा 131 ग्राम पंचायतें पूरी तरह से निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। आयोग ने कहा है कि निर्विरोध निर्वाचन के बाद अब इन पदों पर मतदान नहीं होगा और इससे चुनावी खर्च और प्रशासनिक प्रक्रिया का बोझ कम होगा। आयोग ने कहा है कि शेष पदों के लिए 26, 28 और 30 मई को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान होगा। पंचायतों के चुनाव परिणाम मतदान के तुरंत बाद घोषित कर दिए जाएंगे, जबकि पंचायत समितियों, जिला परिषदों और चार नगर निगमों के चुनाव परिणाम 31 मई को घोषित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में लाए गए विभिन्न सुधारों के परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब प्रदेश के बच्चों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहती है, ताकि उनमें आत्मविश्वास की कोई कमी ना रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू कर दिया गया है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोला जा रहा है, ताकि बच्चों को अपने ही क्षेत्र में गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र की अनदेखी की, जिससे प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट आई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ईंधन और सरकारी खर्च बचाने के लिए अहम फैसला लिया है। अब हाईकोर्ट के न्यायाधीश दफ्तर आने जाने के लिए कार पुलिंग करेंगे और इसके साथ ही 50% कर्मचारी सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम पर रहेंगे।
4: केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी कार पूलिंग करेंगे, यानी एक ही गाड़ी में कई न्यायाधीश दफ्तर आएंगे, ताकि पेट्रोल की खपत कम हो सके। साथ ही हाई कोर्ट के 50% कर्मचारियों को सप्ताह में अधिकतम 2 दिन घर से काम करने की सुविधा दी गई है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया ने इस व्यवस्था को तुरंत लागू करने के आदेश दिए हैं। इन आदेशों के बाद रजिस्ट्रार जनरल की ओर से आधिकारिक सर्कुलर भी जारी किया गया है। सर्कुलर के अनुसार बढ़ते खर्चों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी है। इसके तहत रजिस्ट्री की प्रत्येक शाखा या सेक्शन का 50% स्टाफ हफ्ते में अधिकतम 2 दिन घर से काम करेगा। कामकाज प्रभावित ना हो, इसके लिए बाकी का 50% स्टाफ ऑफिस में मौजूद रहेगा। रजिस्ट्रार को सप्ताह शुरू होने से पहले साप्ताहिक रोस्टर तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
0: प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार द्वारा आचार संहिता के दौरान आयोजित की गई मंत्रिमंडल की बैठक पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि पूरे प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के चलते आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है, ऐसे में मंत्रिमंडल की बैठक बुलाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में ऐसे कई फैसले लिए गए हैं जो सीधे तौर पर चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। हर्ष महाजन ने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग कर चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश बेहद निंदनीय है। उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक के निर्णय की समीक्षा कर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लिए गए फैसलों के क्रियान्वयन और प्रकाशन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की चुनाव आयोग से मांग की है। इस बीच शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बीच लागू आदर्श चुनाव संहिता के दौरान सरकार द्वारा करवाई गई मंत्रिमंडल की बैठक को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव को अब कुछ दिन बचे हैं, ऐसे में वोटरों को लुभाने के सुक्खू सरकार ने सारी सीमाएं लांघते हुए खुलेआम आचार संहिता उल्लंघन किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट बैठक में कई लोक लुभावन फैसले लिए गए हैं, जो चुनावों को प्रभावित करने का असफल प्रयास है। उन्होंने इस संदर्भ में चुनाव आयोग से तत्काल और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
5: पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बीच में मुख्यमंत्री जी कैबिनेट की बैठक करते हैं और कैबिनेट में फैसले लिए गए कि महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाए। उसके बाद मेडिकल कॉलेजेस में जो प्रोफेसर है उनकी रिटायरमेंट की एज को बढ़ाने का फैसला लिया, और फैसले जो मानदेय बढ़ाने के लिए, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर है, चाहे वो मल्टीटास्क वर्कर है, चाहे वो अलग विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के संदर्भ में कुछ फैसले लिए गए, उनको भी अनाउंस किया। पूरी तरह से चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हुआ है। चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो प्रयत्न किया गया है, इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए।
0: केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना गरीब परिवारों के लिए कारगर साबित हो रही है। इसी कड़ी में मंडी जिला के माघेल गाँव के रहने वाले एक बेहद गरीब मरीज नेत्र सिंह के लिए ये योजना किसी वरदान से कम नहीं रही।
6: आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार के लिए अस्पताल का खर्च उठाना संभव नहीं था। ऐसे में जोनल अस्पताल मंडी में आयुष्मान मित्र ने उनका गोल्डन कार्ड बनाया, जिसके बाद उनका ऑपरेशन, दवाइयां और पूरा इलाज मुफ्त में किया गया। नेत्र सिंह अचानक हर्निया की बीमारी से पीड़ित हो गए थे, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत सर्जरी करवाने की सलाह दी। मंडी जिले में अब तक 85% से ज्यादा परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और जिले के 14 अस्पताल इस योजना से जुड़े हैं। स्वास्थ्य विभाग अब आयुष्मान आपके द्वार अभियान के तहत दूर दराज क्षेत्रों में भी लोगों के कार्ड बना रहा है, ताकि हर जरूरतमंद तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सके।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार हर वर्ग के हित में काम कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी ने 25 शहरी निकायों में जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा पर लोगों के हितों को अनदेखा करने का आरोप भी लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा केंद्र सरकार से प्रदेश के आपदा प्रभावितों को एक बीघा जमीन भी नहीं दिलवा पाई।
7: ये बीजेपी को हिमाचल के लोग वोट क्यों डाले? हमें इसलिए डाल रहे हैं कि हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी, शिक्षा के स्तर में हमने सुधार किया, हमने हेल्थ में सुधार किया। हम आज किसान को अगर गेहूँ पैदा करता 80 रुपये किलो गेहूँ खरीद रहे हैं, 80 रुपये किलो जौ खरीद रहे हैं, 50 रुपये किलो मक्की खरीद रहे हैं, 63 रुपये लीटर दूध खरीद रहे हैं। हम लोगों की रूरल इकोनॉमी को विकसित कर रहे हैं। टूरिज्म सेक्टर में हम एयरपोर्ट की एक्सपेंशन कर रहे हैं, हर जगह हेलीपोर्ट बना रहे हैं, सारी जगह हम लोगों ने कार्य अच्छा कर रहे हैं, तो लोग क्यों हराएंगे?
0: केंद्रीय आयुष मंत्रालय का देशव्यापी योग 365 अभियान लोगों की दैनिक दिनचर्या व जीवन शैली का अभिन्न अंग बन गया है। 13 मार्च से शुरू हुआ ये अभियान 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संपन्न होगा। ऊना जिला में भी योग 365 अभियान को गति दी जा रही है।
8: भारत सरकार के योग 365 अभियान के अंतर्गत ऊना में जिला प्रशासन और आयुष विभाग द्वारा योग के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 13 मार्च से शुरू 100 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में गांव स्तर पर सामाजिक संगठनों, नुक्कड़ नाटकों और आयुष विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा लोगों को नियमित योग अभ्यास से सेहतमंद रहने और जीवन शैली से जुड़े रोगों के अलावा गैर संक्रमित रोगों से बचाव बारे जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा लोगों को आयुष मंत्रालय की अनूठी पहल निःशुल्क ऑनलाइन योग प्रशिक्षण सत्रों के साथ जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा हर रोज प्रसारित की जाने वाली लाइव योग कक्षाओं से लोगों को जोड़ने बारे भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
0: प्रदेश में इस बार लहसुन की अच्छी फसल हुई है और किसानों का लहसुन बेहतर दाम पर बिक रहा है। सोलन की सब्जी मंडी में बड़ी संख्या में किसान इन दिनों लहसुन बेचने के लिए पहुँच रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले लहसुन का अच्छा मूल्य मिलने से उन्हें फायदा हुआ है।
9: जयसिंह ठाकुर, बेरगांव से। मेरा लहसुन पिछले 100 रुपये था, इस बार 145 रुपये बिका।
10: सुरेंद्र कुमार, और मेरा गांव जो है बिधाड़ है। पिछले साल के मुताबिक जो इस बार जो है किसानों को अच्छा रेट मिल रहा है, तो बहुत अच्छा जो है फसल इस बार है और थोड़ा सा अच्छा रेट भी मिल रहा है उनको।
11: नाम राकेश कुमार, मैं कुन्हार से आया हूँ, और इस बार पिछले साल से लहसुन के रेट बहुत बढ़िया मिला है जिम्मेदारों को, और जिम्मेदार बहुत खुश है इस बार।
0: इसी के साथ हिमदर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुतकर्ता रितेश कपूर और प्रवक्ता ज्ञान ठाकुर।

अभी आप सुन रहे थे हिमदर्शन कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे विज्ञान भारती कार्यक्रम और 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अल्पी कुमारी।
1: और मैं संजय किशोर।
0: विज्ञान भारती में हम विज्ञान, तकनीक, शोध, नवाचार और समाज पर उनके प्रभाव से जुड़े विषयों को आप तक पहुंचाते हैं।
1: आज के अंक में हम चर्चा करेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, विज्ञान और तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका पर।
0: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और सुपर कंप्यूटर,
1: दुर्लभ खनिजों के निष्कर्षण की नई तकनीक,
0: विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और बिहार में प्रवासी पक्षियों की गणना, खरीफ फसलों के नई किस्में एवं जैविक उर्वरक,
1: साथ ही सुनेंगे विज्ञान जगत की बातें, मई माह में जन्मे और दिवंगत महान वैज्ञानिकों के योगदान तथा मई माह के प्रमुख विज्ञान दिवस।

गौरवशाली 90 वर्षों की यात्रा, इन 9 दशकों में आकाशवाणी ने केवल समाचार और मनोरंजन ही नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक के जन जागरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत होती है वर्ष 1927 से, किंतु वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई। बाद में 1957 में इसे आकाशवाणी नाम मिला। स्वतंत्रता के समय देश में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे और इनकी पहुँच लगभग 11% आबादी तक थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। वर्तमान में आकाशवाणी के 470 से भी अधिक केंद्र कार्यरत हैं, जो देश के लगभग 92% भौगोलिक सीमा और 99% जनसंख्या तक पहुंच रखते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक है। यह आंकड़ा केवल प्रसारण क्षमता का संकेत नहीं देता बल्कि यह दर्शाता है कि आकाशवाणी ने भारत के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक विज्ञान और तकनीक की जानकारी पहुँचाने में कितनी प्रभावी भूमिका निभाई है। आज FM, डिजिटल रेडियो और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से विज्ञान आधारित कार्यक्रम नई पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष केवल प्रसारण की यात्रा नहीं बल्कि ज्ञान, शिक्षा और वैज्ञानिक चेतना के प्रसार की गौरव गाथा है। स्वतंत्रता के बाद देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। कम उत्पादन, पारंपरिक खेती और वैज्ञानिक जानकारी के अभाव के कारण किसान आर्थिक कठिनाइयों में थे। ऐसे समय में आकाशवाणी किसानों का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मार्गदर्शक बनकर सामने आया। COVID-19 महामारी के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैल रही थीं। वहीं लोग वैक्सीन से डर भी रहे थे, कहीं घरेलू उपचारों को वैज्ञानिक सत्य मान लिया गया था। ऐसे समय में आकाशवाणी ने डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के माध्यम से प्रामाणिक जानकारियां प्रसारित की। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की पहुंच सीमित थी, वहां रेडियो सबसे विश्वसनीय माध्यम बना। बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा और समुद्री तूफान जैसे आपदाएं हर वर्ष लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं। ओडिशा चक्रवात, बिहार बाढ़, असम की बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाओं के दौरान रेडियो जीवन रक्षक माध्यम के रूप में सामने आया। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में आकाशवाणी ने स्वयं को तकनीकी रूप से आधुनिक भी बनाया है।

0: और गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में, उससे पता चलता था 4-6% लोगों में, कहीं 4% कहीं 6% लोगों ने इस प्रोग्राम को सुनने के बाद में इन बुरी आदतों से छुटकारा पाया। एक सबसे और अच्छी बात थी, ये अपने से छोटे बच्चों को सिखाते थे, उनमें बुराइयां बताते थे, उनको शिक्षित करते थे। दो तरह फायदे हुआ इस प्रोग्राम से, तो हम तो चाहते हैं इस तरह के प्रोग्राम और होते रहने चाहिए। सन 86 के आसपास भारतवर्ष में HIV का दौर शुरू हुआ। सन 88 में फिर मैंने HIV पर एक नेशनल फीचर, आधे घंटे का फीचर किया। उसमें हिंदुस्तान भर में जा जाकर जो उस समय के अपने एक्सपर्ट थे, मुंबई में डॉक्टर गिलाडा थे, चेन्नई में डॉक्टर सोलोमन थे, और यहाँ के उनकी पेशेंट्स के इंटरव्यू किए, यहाँ होम्योपैथिक एक्सपर्ट्स, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स, एलोपैथिक एक्सपर्ट्स, WHO, इन सबके से इंटरव्यू करके इनकी रिकॉर्डिंग करके 30 मिनट का प्रोग्राम एक फीचर किया।
1: विज्ञान जगत में किए गए अपने योगदान को याद करते हुए आकाशवाणी में कार्यरत पूर्व ADG मनोज पटेरिया ने अपने अनुभव इस तरह साझा किए।
2: मैंने नाटक भी लिखे विज्ञान पर जो ब्रॉडकास्ट हुए। समय नाम का नाटक था जो टाइम मशीन के ऊपर था, एक प्रदूषण के ऊपर था, जिसमें ये था कि किस प्रकार से प्रदूषण आने वाले समय में मुश्किलात पैदा कर सकता है।
3: अब बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और नवीन अनुसंधानों की। संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एनर्जी और बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। IIT पटना के निदेशक डॉक्टर TN सिंह,
4: यहाँ पर 3 शोध के एक नए आयाम खुले हैं जिनको हम इनक्यूबेशन सेंटर कहते हैं, TBI, TIH, इन तीनों का मैंडेट अलग अलग है और इसमें एक नए नवाचार और नए तरह की शोध करने वाले विद्यार्थियों न केवल IIT पटना के लेकिन बिहार और सुदूर राज्यों से भी आए हुए विद्यार्थी इसमें काम करते हैं। नई एक शोध हमारे यहाँ के एक शिक्षक और विद्यार्थियों ने मिलकर किया है कि डिमेंशिया की बीमारी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है और उसके तहत उनका पेटेंट भी ग्रांट हुआ है। इस तरह से हमारे यहाँ 100 से ऊपर के पेटेंट फाइल हुए हैं और बहुत सारे ग्रांट भी हुए हैं। अभी भाषिनी प्रोजेक्ट चल रहा है जो अंतर इंस्टीट्यूशनल कार्यक्रम है जिसमें कि कुछ IIT, कुछ NIT, कुछ यूनिवर्सिटी सभी मिलकर के ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें एक भाषा में यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो सुनने वाला अपनी लोकल भाषा में उसको समझ सके और उसको सुन सके और प्रश्न भी कर सके अपनी भाषा में, तो वक्ता के पास उसकी भाषा में जिसमें वो बोल रहा है उसको वो प्रश्न का उत्तर देगा। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही सफल प्रयोग है यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए और पहली बार IIT पटना से विदेश में बैटरी गई है अफ्रीकन कंटिनेंट में। बिहार में पहला सुपर कंप्यूटर IIT पटना के प्रांगण में स्थित है। हमारे यहाँ जो सुपर कंप्यूटर है ये ब्रह्मास्त्र का हम बोलते हैं, ये सुपर कंप्यूटर की टेराबाइट में इसकी स्पीड हो, टेराबाइट बहुत ही फास्ट स्पीड, त्वरित काम को निष्पादित करने का इसके अंदर जो है काम है। AI के क्षेत्र में काफी यहाँ काम हो रहा है, केवल हम भाषा तक ही नहीं, हम AI के क्षेत्र में फॉर्मेशन तक के अंदर किस तरह से 5-6G को स्पीड अप किया जाए उसके लिए भी, और क्वांटम में भी यहाँ का फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विभाग जो है वो राष्ट्रीय स्तर के जो मिशन है क्वांटम का उसके साथ जुड़े हुए हैं।
1: दुर्लभ खनिज यानी रेयर मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स, ये ऐसे खनिज हैं जो स्वच्छ ऊर्जा, विद्युत, वाहन, रक्षा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उन्नत विनिर्माण उद्योगों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर 17 खनिजों को दुर्लभ खनिज का दर्जा दिया गया है जिनकी मांग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि विश्व ऊर्जा परिवर्तन यानी एनर्जी ट्रांजिशन और हरित प्रौद्योगिकी की ओर अग्रसर है। भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन या ANRF देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए धन देने, बढ़ावा देने और रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए अनिवार्य सर्वोच्च निकाय है। ANRF ने IIT पटना के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रत हती के परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबक से दुर्लभ खनिज के निष्कर्षण के अनुसंधान को ग्रांट दिया है।
5: जो आपका दुर्लभ खनिज है और हम लोग बोलते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स है, ये है कि आपका जो हम लोग का डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होता है तो वो सब चीजों में ये दुर्लभ खनिज इस्तेमाल होता है। हर देश में किसी किसी जगह में आपका ये दुर्लभ खनिज के जो डिपॉजिट्स होता है, सो ये डिपॉजिट से अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं जो हम लोग उनको बोलते हैं कि प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी रिसोर्स, तो वो उसके जियोलॉजिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो होता है हमारे पास सेकेंडरी रिसोर्स

0: होता है। सेकेंडरी रिसोर्स ये होता है कि जैसे ई वर्ज्य होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है आपका, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो भी हम लोग डे टू डे यूज करते हैं, तो सारा चीज एक यूजुअल लाइफ पीरियड के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाता है। और ऑब्सोलीट हो जाने के बाद क्या है कि उसमें उससे हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से उसको हम लोग निष्कासित करते हैं। निष्कासित करने के लिए आपके पास तरीका जो होता है, टेक्निकल तरीका, वो बोलते हैं कि पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी एंड बायोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी में हम लोग क्या करते हैं कि आपको हीट ट्रीटमेंट देते हैं, और उससे क्या है कि अगर आप मेटेरियल प्राइमरी सोर्स पे अगर कोई मटेरियल है, प्लास्टिक्स है, तो उसको जलाया जाता है, तो उससे प्रदूषण हो सकता है। तो इसलिए दूसरा तरीका क्या होता है कि आपके पास हाइड्रोमेटलर्जी होता है। हाइड्रोमेटलर्जी में जनरली लोग क्या करते हैं कि एसिड और अल्काली यूज करते हैं। तो वो जो एसिड और अल्काली होता है वो जनरली कन्वेंशनली लोग उसका स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्काली यूज करते हैं। तो उसके बदले में अगर कुछ ऑल्टरनेटिव ये है कि अगर आप कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड यूज करें, और नाउडेज क्या है कि नोबेल जो टेक्निक आया है उसको बोलते हैं कि हम लोग डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट, उससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो हमें एनआरएफ से जो रिसर्च ग्रांट मिला है, इससे हम लोग करें सेकेंडरी रिसोर्स परमानेंट मैग्नेट। उससे परमानेंट मैग्नेट जनरली आप देखेंगे व्हीकल्स में यूज होता है, जनरली देखेंगे विंड मिल में यूज होता है। सो परमानेंट मैग्नेट जब वो ऑब्सोलीट हो जाता है, उस परमानेंट मैग्नेट से, और मेजोरिटी ऑफ द सोर्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट आपका चाइना है, तो वो सब आप एक्सपोर्ट सब बंद कर दे। जो डेवलप कंट्रीज है जिनके पास क्रिटिकल मिनरल का मेजोरिटी ऑफ द रिजर्व्स है, वो लोग इसका दुर्लभ खनिज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। जो अगर स्वावलंबी बनना है भारत को, तो इसलिए क्या है कि हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से ये सब पदार्थ और दुर्लभ खनिज निष्कासित करना है। तो इसी संदर्भ में ये जो परमानेंट मैग्नेट से क्रिटिकल मिनरल निष्कासित करना डीप यूटेक सॉल्वेंट लेके, ये एक हमारा पहल है जिसमें हम लोग काफी शोध कर चुके हैं और आगे शोध को हम लोग स्केल अप करेंगे।
1: और अब हम जानेंगे प्रवासी पक्षी के बारे में। प्रत्येक वर्ष हजारों लाखों किलोमीटर का सफर तय करके हमारे देश, हमारे शहर और हमारे इर्द गिर्द पहुंचते हैं, और इन्हीं पक्षियों के लिए 9 मई 2026 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम था, हर पक्षी महत्वपूर्ण है, आपका नजरिया मायने रखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पक्षी दो प्रमुख वजहों से प्रवास करते हैं, भोजन और घोंसले की तलाश में ये पूरी दुनिया में प्रवास करते हैं। वर्ल्ड लाइफ के अनुसार विश्व के पक्षियों की 40% प्रजातियां अब घट रही हैं। प्रवासी पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उनकी घटती संख्या जल की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति कमजोर सहनशीलता का कारण बन रही है। भारत में हर साल 370 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। बिहार में 70 से अधिक प्रवासी पक्षियों सहित कुल 260 से ज्यादा प्रजातियों के 10,000 से अधिक पक्षियों की गणना की गई है। आप ई बर्ड बिहार पर जाकर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पटना, भागलपुर या और भी जो क्षेत्र हैं, उनमें हाल ही में देखे गए पक्षियों की सूची और चेकलिस्ट को देख सकते हैं। बिहार में प्रवासी पक्षियों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर देव नारायण चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी डिपार्टमेंट, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर।
2: पिछले कई सालों से बिहार का जो वन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो और बॉम्बे की संस्था है बीएनएचएस, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इन दोनों के प्रयास से पक्षियों की गणना शुरू हुई है। 2022 से इसकी शुरुआत हुई और ये 26 लगभग 5 गणना हो चुकी, और इससे काफी अच्छे परिणाम आए हैं। हम लोगों ने बिहार के 3800 जिलों में जितने भी इम्पोर्टेंट वेटलैंड है जहाँ पर इन पक्षियों का वास होता है, ये प्रवासी पक्षी जहाँ से आकर के पनाह लेते हैं, वहाँ पर इसकी गिनती शुरू हुई। और इसमें जो भी पक्षी विशेषज्ञ थे, जो बर्डर थे, जो ट्रेनर थे, उन लोगों को इसमें लगाया गया, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑर्डिनेटर की बहाली हुई जो एक्सपर्ट के रूप में काम करते हैं। इससे अच्छे परिणाम आए, तो धीरे धीरे हर साल कुछ कुछ वेटलैंड की संख्या भी बढ़ती चली गई, उसको भी हम लोग कवर करते हैं। तो इसमें देखा गया कि एक अच्छा डाटा तैयार हो गया, और आने वाले दिनों में बिहार के पक्षियों पर एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। जो इसके पहले 2012 में ही एक बुक पब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा, बर्ड्स ऑफ बिहार, उसका जो इन्फॉर्मेशन था उससे कहीं ज्यादा इस रिपोर्ट के बाद जो ये छपेगा, तो आने वाले दिनों में जो एकेडमिक्स के फील्ड में ये एक अच्छी जानकारी साबित होगी।
1: और अब जानते हैं विज्ञान जगत की नवीनतम घटनाओं के बारे में। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाला सुपर एल नीनो 1950 के बाद सबसे शक्तिशाली में से एक हो सकता है, जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह कई क्षेत्रों में बाढ़, सूखा, हीट वेव और जंगलों में आग जैसी घटनाओं को बढ़ा सकता है। जलवायु परिवर्तन इसकी प्रकृति को और अधिक अनिश्चित बना रहा है। सुपर एल नीनो का मतलब समुद्र

0: के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की असामान्य बढ़ोतरी से है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है। खासकर दक्षिण एशिया पर इसका अधिक असर पड़ता है।
1: भारत के असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली बार सैटेलाइट ट्रैक की गई गंगा सॉफ्ट शेल कछुए को छोड़कर संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। यह संवेदनशील मीठे पानी की प्रजाति का कछुआ है, जो नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके व्यवहार, प्रवास और पर्यावरणीय खतरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए ट्रैक की जा रही है। यह पहल वैज्ञानिकों को इस जलीय सरीसृप प्रजाति के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने में मदद करेगी। इस प्रजाति को असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है। और अब स्वाद और सेहत से भरपूर बिहार की पहचान मखाना के बारे में जानते हैं। सुपर फूड बन चुका मखाना अब वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। मखाना अनुसंधान केंद्र में मखाना की नई प्रजातियों और उत्पादन तकनीकों पर कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में ICAR राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार।
2: कोरोना काल के बाद से जब स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता काफी तेजी से बढ़ी है, तो मखाना में पाए जाने वाले जितने औषधीय गुण है, इसमें पाई जाने वाली जितनी पौष्टिकताएं हैं, तो इन गुणों के प्रति, इन स्वास्थ्य लाभों के प्रति बहुत तेजी से दुनिया भर में जागरूकता हुई है। इसमें मिनरल्स काफी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम। पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे न्यूट्रिशन के लिए, जैसे आयरन, जिंक इत्यादि बहुत अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। इसके अलावा ये जीरो फैट फूड इसे मानते हैं, इसमें फैट की मात्रा बहुत ही कम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें बहुत कम होता है, मधुमेह के जो मरीज हैं वो भी बहुत सुगम से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, मोटापे की समस्या से जो ग्रसित है वो भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि फैट इसमें बहुत कम है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के माध्यम से भी एक नई प्रजाति अभी विकसित की जा रही है, और मेरा मानना है कि अगले एक वर्ष में ये वैरायटी आ जाएगी, जिसकी उत्पादन क्षमता यहां से करीब 15-20% और ज्यादा होगी। और इसके अतिरिक्त कांटे रहित मखाना के प्रविधों के विकास पर भी अभी चर्चा हो रही है।
0: हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को सीमित करने की बात कही है, ताकि खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा को प्राप्त किया जा सके। बिहार के 13 जिलों में जैविक खेती की जा रही है। कृषि विज्ञान में खरीफ खाद्यान्न की नई प्रजाति के विकास एवं ब्लू अलगी जैविक उर्वरकों के उपयोग के संबंध में बता रहे हैं डॉक्टर दिव्यांशु शेखर, कृषि विज्ञान केंद्र जाले दरभंगा।
3: जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को प्राथमिकता में रखा है कि हम रासायनिक उर्वरकों से हटकर प्राकृतिक या जैविक उर्वरकों की तरफ बढ़े, जिससे कि न कि हमारा फसल की उत्पादकता बनी रहे, साथ में ही उसकी गुणवत्ता में भी कोई ह्रास न हो। खास तौर पे धान की फसल में जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसको हम अजोला कहते हैं, उसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है या आवश्यकता है वो 10-20% तक हम उसके द्वारा कम कर सकते हैं। साथ में ही इसके प्रयोग करने से हमारे भूमि में कार्बनिक तत्वों की भी मात्रा बढ़ती है और साथ साथ जो खरपतवार होते हैं उनकी भी संख्या कम होती है।
1: और अब अंतरिक्ष की बात। हाल ही में विश्व का पहला ऑप्टो SAR सैटेलाइट मिशन दृष्टि लॉन्च किया गया। यह एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट है। अंतरिक्ष क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों के बारे में हमसे बात की भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुअनंतपुरम के कुलपति प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी ने।
4: दो चीज होता है, देखिए आप जो 100 साल से हम लोग कोडाईकनाल से सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं, ये जरूरी इसीलिए है कि वो हमारे सबसे नजदीकी तारे हैं, उसका चुंबक क्षेत्र का कुछ परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन का एक 11 साल का एक हम बोलते हैं सोलर साइकिल जैसा है, तो कभी कभी उसमें चुंबक क्षेत्र थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी कभी थोड़ा कम होता है। एंड ये जो बढ़ना और कमना का जो ऑसिलेटर पैटर्न जो है, उसको स्टडी करने के लिए एक डायनमो मैकेनिज्म को हम लोग मैथमेटिकली अब इस्तेमाल करते हैं। सोलर डायनमो एक थ्योरी है जो हमको समझने के लिए ये करते हैं कि क्यों ऐसा सूर्य में चुंबक क्षेत्र 11 साल का एक पीरियोडिसिटी क्यों रहता है। बट ये तो एक थ्योरी हो गया, थ्योरी को तो मैच करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए। ऑब्जर्वेशन जितना लंबा होगा तभी इतना अच्छा है। इसीलिए ये कोडाईकनाल में ऑब्जर्वेशन हम लोग 1904 साल से चालू किया। उसी जमाने में तो फोटोग्राफिक प्लेट होता था, फिल्म होता था, हमने वो पूरा जो आर्काइव है उसको पूरा डिजिटाइज किया है। आजकल का जमाना में तो कोई हाथ से तो कुछ करते नहीं, आपको इमेज होना चाहिए जो डिजिटल मोड है। एक्चुअली पुराना आर्काइव है उसको डिजिटाइजेशन करना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। तो ये 100 साल का पूरा डेटा डिजिटल

0: टेस्ट करने के बाद हमने अभी अध्ययन किया कि ये 11 ईयर साइकिल कैसा होता है. कभी कभी एक साइकिल थोड़ा बड़ा होता है, कभी थोड़ा छोटा होता है. जब बड़ा होगा उसमें सोलर जो तूफान वो और ज्यादा होगा, जब थोड़ा चुंबक क्षेत्र थोड़ा कम होगा तो वो भी जानकारी होना चाहिए. एक तो है कि अभी हाल ही में ये तूफान आने वाला है या नहीं आने वाला, ये जानकारी. और एक है कि पहले ऐसा तूफान होता था कि नहीं होता था. अभी सन जो स्टार वो मिडिल एज में है, वो जब बड़ा हो जाएगा, वो रेड जायंट हो जाएगा, हम तो बच नहीं पाएंगे. यहाँ अभी मिलियनेयर में नहीं होने वाला है तो अभी सोचने का नहीं है, बट ये सब जानकारी होना चाहिए.
1: मई का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद खास है. कई महानतम वैज्ञानिकों का जन्म हुआ जिन्होंने भौतिकी, चिकित्सा और रसायन विज्ञान की दिशा हमेशा के लिए बदल दी. इस महीने देश के कुछ ऐसे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञों का जन्म हुआ जिन्होंने न केवल भारत में आधुनिक विज्ञान और परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी बल्कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया. डॉक्टर राजा रमन्ना, आप भारत के परमाणु कार्यक्रम के शिल्पकार कहे जाते हैं. आपका जन्म 28 मई 1925 को तुमकुर कर्नाटक में हुआ. के आर रामनाथन, आप भारत के मौसम विज्ञान और ओजोन अनुसंधान के जनक माने जाते हैं. आपका जन्म 28 मई 1893 को पलक्कड़ केरल में हुआ. हरीश चंद्र, जो कि गणित और भौतिकी के महान सेतु कहे जाते हैं, आपका जन्म हुआ 11 मई 1923 को कानपुर उत्तर प्रदेश में. आप महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के सहायक भी रहे. आपने लाइक ग्रुप्स और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में क्रांतिकारी सिद्धांत दिए जिन पर आज भी क्वांटम मैकेनिक्स और आधुनिक गणित टिकी हुई है. हमारे अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विजय भटकर. आप भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं. आपका जन्म 11 मई 1946 को मोरंबा महाराष्ट्र में हुआ. आपके नेतृत्व में सीडेक ने साल 1991 में भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया. आगे नाम आता है प्रोफेसर डॉक्टर बलराम भार्गव का, जिनका जन्म 3 मई 1961 को हुआ था. आप भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे. पूरी दुनिया जब सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रही थी, तब भारत की वैज्ञानिक लड़ाई का नेतृत्व करने वाले मुख्य चेहरों में डॉक्टर भार्गव का नाम सबसे आगे था. और अब हम जानेंगे मई महीने में दुनिया ने विज्ञान जगत के कुछ बेहद प्रतिष्ठित चेहरों को खोया है. डॉक्टर मोनिका मोंटे फाल्कोन, आपका निधन 14 मई 2026 को हुआ. आपने समुद्री पारिस्थितिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. डॉक्टर विलियम चार्ल्स लिविंगस्टन, आपका निधन 2 मई 2026 को 98 वर्ष की आयु में हुआ. आपने सौर खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया.
2: आज विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को याद करते हुए हमारे सुधी श्रोताओं ने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए. बिहार विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार,
3: शब्द ब्रह्म के मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए देश के जन जन की आवाज एवं सूचना क्रांति के उद्घोष के प्रतीक आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के गौरवमयी चरित्र के 90 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण आकाशवाणी परिवार और इसे करोड़ों श्रोताओं को मैं प्रेम कुमार, अध्यक्ष बिहार विधानसभा, हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ. 8 जून 1936 को अपनी औपचारिक यात्रा शुरू करने वाला आकाशवाणी आज केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास का जीवंत साक्षी. स्वाधीनता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत का निर्माण तक आकाशवाणी राष्ट्र के सूत्र में पिरोने का अभूतपूर्व कार्य किया है. संकट और आपदा के समय इसकी प्रमाणिक खबरों ने हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है, जिससे इसकी विश्वसनीयता आज भी अक्षुण्य है. जन जागृति और राष्ट्र निर्माण सुदूर गांव, खेतों, खलिहानों और सीमावर्ती क्षेत्रों तक ज्ञान और चेतना का प्रकाश फैलाने में इस माध्यम की भूमिका रहती है. कृषि सुधारों से लेकर मन की बात जैसे संवादों के माध्यम से इसने जन जागृति को एक नई दिशा दी है. स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति तक सरल भाषा में पहुंचाकर आकाशवाणी ने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के संकल्प को सिद्ध किया है. मैं इस अवसर पर आकाशवाणी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं कि अद्वितीय संस्थान आदि की अपनी स्पष्टता, राजभक्ति और सेवा से देश को आलोकित करता रहेगा. रेडियो की वह मधुर पुकार आज भी दिलों में बसती है. आकाशवाणी की हर धुन भारत की आत्मा से लगती है.

0: पंचायती राज्य मंत्री बिहार सरकार दीपक प्रकाश।
1: मैं दीपक प्रकाश, मंत्री पंचायती राज विभाग। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हम सबों के सामाजिक जीवन में, देश के राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में और साथ ही साथ जो हमारा देश का इतिहास है, उन सबों में आकाशवाणी का एक विशेष रोल रहा है। आजादी की लड़ाई हो या विभिन्न कालखंडों में जन आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने का काम हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने कमेंडेबल काम किया है। हम सबों के बचपन की यादें भी आकाशवाणी से जुड़ी हैं। क्रिकेट की कमेंट्री आकाशवाणी पे सुननी हो, पुराने गाने आकाशवाणी पे सुनने हो, या सभी विद्यार्थियों के लिए टॉक शोज के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने की बात हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने काम किया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आकाशवाणी ने अपने को बदलने का भी काम किया है। एनालॉग से डिजिटल तक का सफर आकाशवाणी का विशेष रूप से कमेंडेबल है। आज के इस चकाचौंध और दिखावटी मीडिया के दौर में आकाशवाणी का एक विशेष स्थान है जो कि हमें अपने जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। आकाशवाणी का विशेष रूप से हम धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहेंगे कि आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबों के बीच किया जाने वाला मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है। एक बार पुनः आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे करने के लिए बधाई देते हुए, और आकाशवाणी हम लोगों के बीच जीवन का और हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, आज के युवा आकाशवाणी से जुड़े, इस बात की शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मेरा नाम नीलम चौधरी है, मैं एक्स IAS ऑफिसर हूं और एक कथक डांसर भी हूं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आकाशवाणी का नाम आते ही एक स्पंदन सा होने लगता है और याद आता है अपने स्टूडेंट लाइफ का वो स्टडी टेबल जहां हमेशा एक ट्रांजिस्टर रखा रहता था। चूंकि मैं म्यूजिक की फील्ड से हूं, इसीलिए म्यूजिक के लगभग सब कार्यक्रम मैं आकाशवाणी का सुना करती थी, चाहे वो शास्त्रीय संगीत का हो या फिल्मी गानों का हो, गैर फिल्मी गानों का हो, भजन हो, लोक संगीत हो, मैं सब कार्यक्रम सुनती थी और वो सारे गाने मुझे कॉन्सेंट्रेशन देते थे और मुझे पढ़ाई अच्छी मेरी होती थी। मैंने महसूस किया है कि आकाशवाणी ने समाज के हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों को अपने कार्यक्रम में इनकॉर्पोरेट किया है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र से हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र से हो, तकनीकी क्षेत्र से हो, नारी सशक्तिकरण की बात हो, लगभग सभी क्षेत्र के लोगों के लिए इसने कार्यक्रम बनाया है। बच्चों के लिए हो, शाम में 7:30 बजे अनंत सिंह का न्यूज होता था, वो तो बहुत ही लोकप्रिय था और बहुत स्पष्ट और बहुत अनबायस्ड कार्यक्रम हुआ करता था। उसके अलावा नाटक में हवा महल और लोहा सिंह का नाटक हम लोग बहुत इंतजार करते थे और सुनना करते थे। तो ये रिचनेस आकाशवाणी में शुरू से रहा है। आज भी हर वर्ग के लिए कार्यक्रम बनाना, उसे सक्सेसफुली प्रसारित करना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है आकाशवाणी की और मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से 90 वर्षों का सफर तय हुआ, उससे भी और आगे बढ़कर आकाशवाणी अपना कार्यक्रम करे, लोगों में प्रिय रहे और हर वर्ग के लोग इसमें जुड़े रहे।
3: प्रोफेसर दिनेश सिंह, पद्मश्री, उपाध्यक्ष जम्मू एवं कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद और पूर्व कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय।
4: पूर्ण रूप से अपने हृदय से बधाई दे रहा हूँ आकाशवाणी से जुड़े सारे जो हमारे सहयोगी हैं, और मैं चाहता हूँ कि इसको एक त्योहार के रूप में भारत में मनाया जाए, त्योहार के रूप में कि आकाशवाणी ने भारत के लिए क्या किया। मैं आकाशवाणी से बचपन से जुड़ा हूँ और आकाशवाणी से अमृत बरसता है पूरे देश में, विश्व में। मैंने यहाँ से इतनी रचनात्मक युक्तियों को ग्रहण किया है, इसने भारत की आत्मा को आकाशवाणी ने सींचा है। अब इसके जो एनिवर्सरी आ रही है, इसके 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हम सबको इसमें भागीदारी लेनी है और इस उत्सव को पूर्ण रूप से अपने अपनी जगह मनाना है। आकाशवाणी ने भारत का बहुत भला किया है।

0: ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे नई जानकारियों, नवीन शोध परक बातों एवं विज्ञान जगत की हलचलों के साथ।
1: तो सीखें कुछ नया, सोचें कुछ अलग। आज की विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती को तैयार करने में स्वर सहयोग रहा अल्पी कुमारी और संजय किशोर का। संयोजक थे दिलीप झा और प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार। आकाशवाणी पटना।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे विज्ञान भारती कार्यक्रम 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं श्री सीपी माधवन नंबूदरी द्वारा प्रस्तुत कर्नाटक शास्त्रीय गायन। श्री सीपी माधवन नंबूदरी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी के नाम से जाना जाता है, आकाशवाणी के ए ग्रेड वोकल आर्टिस्ट हैं और कर्नाटक संगीत में 2 दशकों से अधिक के उत्कृष्ट योगदान के साथ अत्यंत सम्मानित कलाकार हैं। उन्होंने 500 से अधिक एकल प्रस्तुतियां की है, जिनमें से अनेक में प्रसिद्ध कलाकारों जैसे डॉक्टर टी के मूर्ति, डॉक्टर उमायालपुरम के शिवरामन, श्री श्रीमुष्णम राजा राव तथा श्री मन्नारगुड़ी ईश्वरन ने संगति की है। उनके कार्यक्रम विदेशों में भी आयोजित हुए हैं, जिनमें अमेरिका, पेरिस, दक्षिण पूर्व एशिया तथा खाड़ी के देश शामिल हैं। केरल के चंगनाशेरी में जन्मे माधवन नंबूदरी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा अपने प्रथम गुरु श्री पीजी पद्म कुमार से प्राप्त की। बाद में वे स्वर्गीय टीवी शंकर नारायणन के शिष्य बने तथा उन्हें श्री पीआर कुमार केरला वर्मा और श्री कलन्यूर चंद्रशेखरन जैसे प्रसिद्ध संगीतज्ञों से उन्नत मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। वे आरएलवी संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय त्रिपोणितरा में पूर्व संगीत प्रवक्ता रह चुके हैं। उन्हें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से जूनियर फेलोशिप भी प्राप्त हुई है और मद्रास म्यूजिक अकादमी से सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का सम्मान भी प्राप्त हुआ है।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ कर्नाटिक वोकल कॉन्सर्ट बाय श्री सीपी माधवन नंबूदरी, पॉपुलरली नोन एज चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी। ही इज एन ए ग्रेट वोकल आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड a highly respected performer with over 2 decades of distinguished contribution to Carnatic music. He has presented more than 500 solo concerts, many of them accompanied by eminent maestros such as Dr. T.K. Murthy, Shri Umayalpuram K. Shivaraman, Shri Srimushnam Raja Rao, and Shri Mannarkudi Ishwaran. His performances have also reached audiences abroad, including concerts in the United States, Paris, Southeast Asia, and Gulf countries. Born at Chengannasheri in Kerala, Madhavan Nambudiri began his musical training under his first guru, Sri P.G. Padmakumar. He later became a disciple of late T.V. Shankaranarayanan and also received advanced guidance from renowned musicians Shri P.R. Kumara Kerala Varma and Shri Kalanyur Chandrasekharan, a former music lecturer at the RLV College of Music and Fine Arts, Tripunatra. He is also a recipient of the Junior Fellowship from the Ministry of Culture, Government of India, and has been honored with the Best Musician Award from the Madras Music Academy.
3: The contribution of Akashavani to the growth of artists like me is truly immeasurable. Akashavani has provided a dignified platform that nurtures talent and strengthens the cultural fabric of our nation. Best wishes to Akashavani for completing successful 90 years.
1: आज रात के प्रसारण में इनके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर विद्वान तिरुविरा विजू एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार।
2: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही विल बी अकंपनीड बाय विद्वान तिरुविरा विजू एस आनंद ऑन वायलिन, विद्वान कोटयम जी संतोष कुमार ऑन द मृदंगम एंड श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार ऑन द घटम।
1: श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अपने गायन की शुरुआत स्वाति तिरुनाल की रचना परम पुरुषम से कर रहे हैं, जो राग ललित पंचम पर आधारित है और खंडु चापु ताल में निबद्ध है।
2: श्री सीपी माधवन नंबूदरी बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विद परम पुरुषम, अ कंपोजिशन ऑफ स्वाति तिरुनाल इन द राग ललित पंचमम सेट टू खंडु चापु ताल।

0: अब प्रस्तुत है केसी केशव पिल्लई की एक कृति श्री बालकृष्ण पाहिमाम, जो राग पूर्वी कल्याणी पर आधारित है और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू श्री बालकृष्ण पाहिमाम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ केसी केशव पिल्लई इन द राग पूर्वी कल्याणी सेट टू रूपक ताल।

0: अपने गायन को जारी रखते हुए श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अब प्रस्तुत कर रहे हैं श्यामा शास्त्री द्वारा रचित रावे हिमगिरी कुमारी, जो राग तोड़ी पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: द नेक्स्ट आइटम इज रावे हिमगिरी कुमारी इन द राग तोड़ी सेट टू आदि ताल कंपोज्ड बाय श्यामा शास्त्री।

0: ये था तनियावर्तनम। मृदंगम पर थे विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
1: दैट वॉज तनियावर्तनम प्लेड ऑन द मृदंगम बाय विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार एंड ऑन द घटम बाय श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
0: श्री चंगनाश्री माधवन नंबूदरी अपने गायन का समापन पुदुकोड कृष्णमूर्ति की एक रचना श्री हरे से कर रहे हैं, जो कि राग रेवती पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री सीपी माधवन नंबूदरी कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद श्री हरे कंपोज्ड बाय पुदुकोड कृष्णमूर्ति इन द राग रेवती सेट टू आदि ताल।

0: इसके साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी का गायन समाप्त होता है। इनके साथ वायलन पर विद्वान तिरुविजा विजु एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार ने संगति की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: With that, we conclude the vocal recital by Sri C.P. Madhavan Nambudiri in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Vidwan Tiruvida Viju S. Anand on the violin, Vidwan Kottayam G. Santosh Kumar on the mridangam, and Sri Vaadapalli R. Krishna Kumar on the ghatam. This broadcast was recorded at Akashvani Tiruvananthapuram and came to you from the Delhi station of Akashvani.
2: अभी आप सुन रहे थे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जा रहा था। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को है थोड़ी देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, पहले हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह।

0: टीका के विधि
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई की।
2: प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
3: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
2: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
3: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
2: भारत ने पैक सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि यह भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांचकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एक्तुकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Nipunika Shahid. Prime Minister Narendra Modi and US Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the India-US Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Tirth in New Delhi today. Mr. Modi said in a social media post that India and the US will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jaishankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio shared the US perspectives on various regional and global issues, including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. Secretary Rubio is on a four-day visit to India to take part in the Quad Foreign Ministers meeting on the 26th of this month. U.S. Secretary of State Marco Rubio today said that India is at the cornerstone of how the United States approaches the Indo-Pacific. Inaugurating the U.S. Embassy Support Annex building in New Delhi, Mr. Rubio said this is evident in the $20 billion that Indian companies invested in the United States and in India signing up for Pax Silica.
0: Expanded commercial ties now with more than $20 billion in investments. $20 billion in investments from Indian companies in the United States. We've deepened a security partnership through military exercises in the Indo-Pacific. And of course, as part of that, we recognize that an orderly and a secure consular system is vital to solidifying this important relationship.
4: Prime Minister Narendra Modi has emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of the citizens. He made these remarks while addressing the 19th Rose Garmela through video conferencing today. The Prime Minister highlighted the world is eager to be a part of India's growth journey. In the 19th edition of Rose Garmela, more than 51,000 appointment letters to newly appointed youths in various government departments and organizations were distributed. The centre has asked Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by 5th of the next month, citing that the land was acquired for strengthening defence infrastructure. An order issued by the Land and Development Office under the Housing and Urban Affairs Ministry stated that the land is essential to fulfil urgent institutional needs, governance infrastructure and public interest project. Delhi government decided to transform all sub-registrar offices into modern technology-driven and citizen-friendly service centres. The initiative aims to eliminate delays, corruption, middlemen and unnecessary procedural hurdles in property registration services across the city. In a statement, Chief Minister Rekha Gupta said the new model registrar office will provide facilities such as digital assistant for counters, smart token systems, online appointment booking, real-time application tracking and trained staff to ensure transparent and time-bound service delivery. The centre has released more than 527 crore rupees under the National Health Mission as the first tranche for West Bengal for financial year 2026-27. Union Health Minister Jagat Prakash Nadda today reviewed the healthcare systems in the state during a virtual meeting with Chief Minister Suvendu Adhikari. The Chief Minister also announced that Ayushman Bharat scheme will start in West Bengal from July this year. In China, 90 people have been killed in a gas explosion at a coal mine in Shanxi province. The gas explosion occurred at the Liushenyu coal mine in Jinan County yesterday. The state media reported that 201 miners have so far been rescued while rescue efforts are ongoing. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief at the loss of lives in a mining accident in China. In a social media post, he extended his condolences to President Xi Jinping and the people of China on behalf of the people of India. In IPL cricket, Punjab Kings defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets at Ikana Cricket Stadium in Lucknow tonight. Chasing a target of 197 runs set by Lucknow Super Giants in Lucknow, Punjab Kings made 200 for 3 in 18 overs. Earlier, Punjab Kings won the toss and opted to bowl. Put into bat, Lucknow Super Giants posted 196 runs for the loss of 6 wickets in stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
5: एक सौ 3.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं पर समाप्त होती है। कल सुबह 5:55 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।